पढ़ो ही पांड उपजे बान को नानक पने बहरा एकोस चा सोए जितमुख सा सलाहिया भगती नानक ते मुख उजले सच।

रंग हसे रंग रोवे चुप ही कर जाए परवाह नहीं किसे तेरी बात सच्चे दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता खाए दीवाने को कर्मे का हम आत्मा में डाले लिखा पीर सुटे मार का।

उलहचु कह बारक तू हर पिता।

ਕਮਲ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ।

Allah, who's on my head? Allah, who's on my head?

اللہ

आकाशवाणी सी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्स ते तंहिंखां सवाइ तव्हां आकाशवाणीअ जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो। अॼु जुमो आहे, जून महीने जी 19 तारीख़। हिन वक़्तु भारत में सुबुह जा 6:30 थी चुका आहिनि। असांजे प्रोग्राम जो आगाज़ थी चुको आहे। प्रोग्राम जा डिटेल्स कुझु हिन रीति आहिनि। थोरी देर में तव्हां भगत कंवरराम साहब खे ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ 6:36 ते कॉमेंट्री पेश कई वेंदी, तंहिंखां पोइ 6:44 ते गज़ल पेश कया वेंदा। प्रोग्राम जे आख़िर में ख़ासि ख़ासि ख़बरूं नशर कयूं वेंदियूं। इहा त हुई असांजे प्रोग्राम जी डिटेल्स। हींअर अचो त ॿुधूं भगत कंवरराम साहब खे।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे तां भगत कवरराम साहब के बुधी रहा हुआ हिंदर पेश आहे तबसरो प्रधानमंत्री G7 समिट में भारत जे तरक्की जी कहानी उजागर कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जून 2026 ते फ्रांस जे इवियन में थींदड़ G7 समिट में सभी ला बैलेंस्ड शेयर थियल ए पायदार इक्तसादी वाधारे के बीहर जीण जे मौजू ते आउटरीच सेशन के खिताब कयो समिट जे शेयर थियल ए पायदार वाधारे ते ध्यान ॾियण जी तारीफ़ कंदे प्रधानमंत्री चयो त जॾहिं दुनिया अणॼातल हालतुनि सां मुंहुं ॾेई रही आहे पायदार वाधारे जो पैगाम दुनिया में चङी तरह तस्लीम कयो वेंदो हुन चयो त वाधारे जो मतिलबु सिर्फ़ GDP या वापार जे अंगनि अखरनि ताईं महदूद न हुजे पर इन जो हक़ीक़ी असर सभिनी जे शमूलियत ऐं भलाईअ ते हुजणु घुर्जे इन सिलसिले में हुन भारत जे इंक्लूसिव ग्रोथ जी कहाणी नुमाया कई जेका सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास सभिनी जो साथ सभिनी जो विकास सभिनी जो विश्वास ऐं सभिनी जी कोशिश जे उसूलनि ते ॿधलु आहे प्रधानमंत्रीअ नोट कयो भारत जे इंक्लूसिव ग्रोथ जे मंत्र उन जे अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव

मौके पर हिदायत दींदो आहे जीअं त जी ट्वेंटी सदारत में हिकु धरती हिकु खानदान हिकु मुस्तक़बिल जे नारे सां ज़ाहिरु थिए थो। हुन वधीक चयो त साॻियो वीचार भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC जे तसवुर लाइ पिण ॾाह ॾेखारे थो त जीअं सप्लाई चेन्स मज़बूत कया वञनि, सीड़पकारी ऐं रोज़गार जा मौक़ा पैदा थियनि ऐं इनोवेशन खे वधायो वञे। बुहरान ऐं तकरारनि जे आलमी ॾखण ते भारी असर ते ज़ोर ॾींदे हुन आलमी एकता लाइ अपील कई त उन्हनि जा बोझ घटाया वञनि। हुन तजवीज़ ॾिनी त अंतर्राष्ट्रीय माली इदारनि खे सपोर्ट मेकेनिज़म्स तयार करण घुर्जनि त जीअं विकासशील मुल्कनि खे इक़्तिसादी मज़बूती ॾेई सघिजे। हुन इहो बि चयो त अफ्रीका, लैटिन अमरीका ऐं पैसिफिक बेट जे मुल्कनि सां IMEC जे तरह कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स ते गौर कयो वञे। हुन वीज़न खे हक़ीक़त में तब्दील करण लाइ प्रधानमंत्रीअ इहा सलाह ॾिनी त इंटरनेशनल मोबिलाइज़ेशन पार्टनरशिप ठाहिजे जेका कनेक्टिविटीअ ऐं वापार खे तेज़ करण लाइ हुजे, या इम्पैक्ट जंहिंमें G7 कैपिटल भारत जे टैलेंट ऐं ग्लोबल साउथ जी मिल्कियत गॾु करे सघिजे। प्रधानमंत्रीअ भारत जे आलमी मईशत खे स्थिर, भरोसे वारी ऐं खुशहाल बणाइण जे संकल्प खे ॿीहर ज़ोर भरियो ऐं चयो त भारत जो इंटीग्रेशन भाईवारी ऐं गॾियल तरक़ीअ ते यकीनी सबबु बणियो त इहो G7 जे मेंबरनि ऐं केतिरनि ई ॿियनि मुल्कनि सां ट्रेड एग्रीमेंट जे पोयां हलियो। प्रधानमंत्रीअ उन वक़्तु फ्रांस जे इवियान में G7 समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो महफ़ूज़, तेज़ ऐं असराइतो रोल आउट यकीनी बणाइण जे मौज़ूअ ते आउटरीच सेशन में बि ख़िताब कयो। श्री मोदीअ ज़ोर ॾिनो त जॾहिं त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिकु अहिड़ी ताक़त आहे जेका इंसान जे तहज़ीब जो रुख बदिलाइण जी सलाहियत रखे थी, पर इहा माण्हुनि खे ताक़तवर बणाइण घुर्जे। हुन वज़ाहत कई त इहा वॾी सोच इन्हनि सबबनि मां आहे जो भारत ताज़ो ई AI इम्पैक्ट समिट जी मेज़बानी कई। भारत जे इंसानी मर्कज़ी या मानव विज़न खे उजागर कंदे श्री मोदीअ चयो त टेक्नोलॉजीअ खे शमूलियत, सिक्योरिटी ऐं आवामी भलाईअ जे उसूल में बदल हुजण घुर्जे। प्रधानमंत्रीअ इहा ॻाल्हि नोट कई त भारत हमेशा खां साइबर स्पेस खे आलमी अवामी सहूलियत तौर ॾिठो आहे ऐं ज़ोर ॾिनो त लोकतांत्रिक मुल्कनि खे अहिड़नि AI मॉडल्स ताईं रसाई हुअण घुर्जे जेके उन्हनि जे अहम मालूमाती ढांचे खे महफ़ूज़ करे सघनि, उन्हनि खे साइबर खतरे सां मुंहुं ॾियण में मदद कनि। हुन AI जे तरक़ीअ लाइ गॾियल रवैये जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो, जिते हिफ़ाज़त, रफ़्तार ऐं कारकर्दगी सभु गॾु संभालिया वञनि। इन हवाले सां हुन चार तजवीज़ूं ॾिनियूं। AI सिस्टम महफ़ूज़ डिज़ाइन जूं हुजणु घुर्जनि। AI डिप्लॉयमेंट सां गॾु आम मयार जाचण जा फ्रेमवर्क ऐं ज़ाब्ते वारियूं हिदायतूं हुजनि। ग्लोबल सतह ते गॾियल सहयोग हुजणु घुर्जे त जीअं डीप फेक, ग़लति मालूमात ऐं साइबर फ्रॉड खे मुंहुं ॾेई सघिजे ऐं AI जा फ़ाइदा ग्लोबल साउथ जे मुल्कनि ताईं पहुचणु घुर्जनि त जीअं हिकु शामिल दुनिया खे यकीनी बणाए सघिजे। प्रधानमंत्रीअ चयो त AI खे इंसानी सलाहियत वधाइण, इंसानी चूंड खे मज़बूत करण, इंसानी वक़ार जी हिफ़ाज़त करणु घुर्जे ऐं नोट कयो त भारत इन्हनि मक़सदनि खे अॻिते वधाइण लाइ साथियुनि सां गॾु कमु जारी रखंदो। फ्रांस जे इवियान में G7 समिट जे मौके ते प्रधानमंत्री मोदीअ अमरीका जे राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड जे ट्रम्प सां मुलाक़ात कई। प्रधानमंत्रीअ ट्रम्प जे कोशिशुनि जी वाखाण कई ऐं जंहिंजे नतीजे में ओलह एशिया में जारी तकरार खे ख़तमु करण ऐं व्यापक तौर ते इलाइक़े में अमन ऐं स्थिरता लाइ हिकु समुझ पैदा थी हुई। हुन स्टेट ऑफ हर्मूज़ में नेविगेशन जी आज़ादी ऐं बिना रुकावट जे वापार खे बरक़रार रखण जी अहमियत ऐं सामूंडी जहाज़नि जे हिफ़ाज़त खे यकीनी बणाइण जी ज़रूरत ते पिण ज़ोर ॾिनो। ॿिन्ही अॻवाननि February 2025 में Washington DC में मुलाकात खां वठी India-US कॉम्पैक्ट कैटलाइज़िंग ऑपर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी तहत हासिल कयल काफ़ी अॻुभराई जो जाइज़ो वरितो। उन्हनि डिफेंस, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़, तवानाई ऐं बेतरफ़ी वापारी खेत्रनि में अहम विकास जो स्वागत कयो। ॿिन्ही अॻवाननि ख़ासि तौर ते ख़ुशीअ सां नोट कयो त आरज़ी बेतरफ़ी तिजारती एग्रीमेंट लाइ ॻाल्हियुनि में अहम तेज़ी आई आहे। पंहिंजनि आफ़ीसरनि खे हिदायत ॾिनी त जल्द खां जल्द हिकु बैलेंस्ड, ॿिन्ही लाइ फ़ाइदे वारो तिजारी तौर ते अहम एग्रीमेंट ते कमु कनि।
अमरीका के तजारती नुमाइंदे श्री जेमिस।

ग्रेर इन हफ्ते इन सिलसिले में बारह जो दौड़ो कंदो प्रधानमंत्री मोदी ए राष्ट्रपति ट्रंप पंजी वापस तदिए के बीह वर जायो त भारत अमेरिका मुकम्मल आलमी स्ट्रेटेजिक भाईवारी के वधिक मजबूत बनाइन ए बिन्ही मुल्कन ए उन जे माण्हुन जे गडियल फायदे लाए सभिनी खेत्रन में भाईवारी के अॻिते वधाइन। प्रधानमंत्री G7 समिट जे मौके ते फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी जे चांसलर श्री फेडरिक मर्ज सां पिण मुलाकात कई। उन्हनि बिन्ही रुखनि में ॿाहिरियनि लाॻापनि जे अघ बढ़ाए जो जाइज़ो वरितो ऐं इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नई रफ़्तार ते कमिटमेंट जो इज़हार कयो। ॿिन्ही अॻवाननि मुख़्तलिफ़ खेत्रनि जहिड़ो कि वापार ऐं सीड़पकारी, डिफेंस ऐं हिफ़ाज़त, साई ऐं पायदार तरक्की, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, तैलीम ऐं मोबिलिटीअ में सहयोग खे वधाइण लाइ पंहिंजे संकल्प खे ॿीहर यकीनी बणायो। चांसलर मर्ज प्रधानमंत्रीअ खे 8 इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन IGC में शिरकत जी दावत ॾिनी, जेका हिन साल जे आख़िर में जर्मनीअ में थियणी आहे। प्रधानमंत्रीअ G7 समिट जे मौके ते यूरोपी काउंसिल जे सदर श्री अंटोनियो कोस्टा ऐं यूरोपी कमीशन जी सदर मिसिस उर्सुला वॉन डर लियन सां बि बेतरफ़ी मुलाक़ात कई। ॿिन्ही धुरियुनि ज़ोर भरियो त भारत यूरोपी यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइ ताज़ियुनि ॻाल्हियुनि जा नतीजा तारीख़ी कामयाबीअ तौर ॾिठा विया ऐं हुन जे जल्दी सही करण ऐं अमल ते ज़ोर भरियो, जेको वापार ऐं सीड़पकारीअ लाइ वॾनि मौक़नि खे खोलींदो ऐं ख़ासि तौर ते मौजूदा उथल पुथल वारे जियो पोलिटिकल सूरत हाल में सप्लाई चेन्स जे मुख़्तलिफ़ तजुर्बनि में मदद कंदो।

बजता है 9870 किलोहर्ट्ज़ पे। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ऑन एयर मोबाइल ऐप

हीअ पेश आहे प्रोग्राम गज़ल। इन्हीअ प्रोग्राम तहत अॼु तव्हां किशन हरी रामाणी महेश चंदर जी मधुर आवाज़ में गज़ल ॿुधंदा। अचो त ॿुधूं इन्हनि बहितरीन गज़लनि खे।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलो हर्ट्स से तमा गजल बुधी रहा हुआ हिंदर पेश आइन खास खास खबरों प्रधानमंत्री मोदी चयो तो भारत एक भरोसेमंद साथी तौर उभरी रो है प्रधानमंत्री मोदी चयो तो टेक्नोलॉजी सिर्फ तदे तरक्की करे सके थी जडे उनके लोकतांत्रिक बनाया वने पेरिस में विवाटेक समिट में भारत के तेज डिजिटल तब्दीलिय में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के उजागर कयो न्यू एंड

एनर्जी सेक्रेटरी संतोष कुमार सारंगी जो चवन आहे त भारत दुनिया जे लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी मुल्कन मां हिकु तौर उभरे थो जेको हिकु मज़बूत पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐं जदीद सरकारी इजादनि जे करे थियो आहे। रिपब्लिकन राष्ट्रपति रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति जे डी वेंस जो चवणु आहे त अमरीकी नेवी हिकु डज़न खां वधीक जहाज़नि खे ईरानी बंदरगाहनि ताईं पहुचण जी इजाज़त ॾिनी आहे। जंग जे ख़ात्मे जे एग्रीमेंट जे हिसे तौर नाकाबंदी ख़तम कई वई आहे। यूएई 15 सालनि खां घटि उमिरि वारनि ॿारनि लाइ सोशल मीडिया ते पाबंदी लॻाई। हॉकीअ में भारत न्यूज़ीलैंड में एफआईएच वुमेन्स नेशंस कप में उरुग्वे खे शिकस्त ॾिनी। सुभाणे सेमीफाइनल में चिले सां मुक़ाबिलो कंदो।

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहिया आहियो। हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वो साझा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र

प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारियों को कैसे सीमित किया जा सकता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वेंस ने कहा है कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी कहा कि ईरान के दक्षिणी बंदरगाहों पर जहाजों का आवागमन सामान्य हो गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 से गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप ए में मैक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं संघमित्रा चक्रवर्ती के गाए कुछ भजन। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं ललित किशोर की रचना, बोल है रे निर्मोही जब नरसिजा, स्वर संघमित्रा चक्रवर्ती का।

0: का कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संघमित्र चक्रवर्ती के गाए कुछ भजन। आपका साथ दिया था बांसुरी पर प्रमोद प्रसन्ना ने, सरोद पर दानिश असलम ने, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी, सितार पर अकील अहमद और तबले पर पंडिता महाराणा। इसके साथ ही संगीतिका कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। 7:30 हुए हैं। अब वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का, और आज के इस कार्यक्रम में आपका साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ और नवीन।
1: दोस्तों, सुबह का वक्त कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी से भरा रहता है, और ये ऐसा वक्त होता है जब आप अपनी दिनचर्या को शुरू कर रहे होते हैं, पूरे दिन भर के लिए आप तैयार हो रहे होते हैं। और ऐसे में हम आपसे यही कहेंगे कि फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, भंवरों की तरह गुनगुनाते रहिए। चुप रहने से रिश्ते भी उदास हो जाते हैं, कुछ उनकी सुनिए, कुछ अपने सुनाते रहिए।
0: सिद्धार्थ, किसी ने क्या खूबी कहा है कि वो जताता तो बहुत था मगर निभाना भूल गया, मुझे अपना तो कहता था मगर अपना न भूल गया।

0: दोस्तों, जैसा कि बात हो रही थी कि किस तरीके से सुबह का वक्त सकारात्मक ऊर्जा वाला वक्त होता है, और नवीन जैसा कि हम जानते हैं कि योग दिवस भी आ रहा है और हम सभी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह सुबह के वक्त बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम अपने मन को एकाग्रचित करते हैं, अपने स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं, और थोड़ा सा सुबह अगर हम व्यायाम कर लेते हैं या योग कर लेते हैं तो पूरा दिन हमारा अच्छा गुजरता है।
1: सिद्धार्थ, अगर आप दिन भर बिजी हैं तो शायद सुबह का वो वक्त जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आपके दिन का सबसे बेस्ट टाइम वही होता है, क्योंकि तभी आप शांत बैठ के सोच सकते हैं कि आपको आज दिल की प्लानिंग कैसे करनी है।
0: और बिल्कुल नवीन, और इसके साथ ही जब आप ये सब करते हैं, जब योग करते हैं, जब कुछ थोड़ा व्यायाम करते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आप दिन भर के लिए पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो जाते हैं।
1: और ऐसे में अगर आपके कानों में संगीत की मिश्री न घुले तो भाई ये ध्यान और ये योग

0: थोड़ा सा अधूरा तो लगता ही है। अब देखिए मैं और सिद्धार्थ आपके लिए बेहद चुनिंदा और खूबसूरत गीत लेकर आ रहे हैं जो मॉर्निंग में आपकी सुबह सुबह के ध्यान में इतनी एनर्जी डाल देगा कि आप दिन भर के लिए तरोताजा महसूस करेंगे, है ना सिद्धार्थ?
1: बिल्कुल, हम यही कह सकते हैं कि बादलों की चादर ओढ़े सावन जब मुस्कुराता है, पपीहे की मीठी पुकार में दिल का दर्द छलक जाता है, एक बूंद की चाह में जैसे पपीहा आस लगाए बैठा है, वैसे ही मन भी अपने प्रेम और मिलन का गीत गाता है।
0: और हम बात कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत की, 1971 में आई फिल्म गुड्डी के उस कालजयी गीत के जिसने हर दिल को झलकृत कर दिया था, बोले रे पपीहरा।

वाह क्या बात है। जब ही गाना बजता है ना सिद्धार्थ मुरझाए खड़े हो जाते हैं। वही जयराम की वो रेशमी आवाज और जया बच्चन का वो सादगी भरा अभिनय। मैं कुलदीप नवीन यहाँ पे अपने श्रोताओं को ये बता दें कि ये जो गीत आपने सुना है ये राग मियां की मल्हार पर आधारित गीत है और मल्हार राग का संबंध सावन बादल वर्षा और इन सब की अनुभूति से मिलकर होता है। और इस गीत के संगीतकार वसंत देसाई और गीतकार गुलजार हैं और दोनों ने मिलकर इस गीत को एक जिसे हम कालजयी गीत भी कह सकते हैं कह ऐतिहासिक गीत बना दिया जो लोगों की जबान पर हमेशा रहता है। और रेडियो से जब भी यह गीत बजता है

0: सुना तो ऐसा लगता है कि दूर कहीं से पपीले की आवाज चली आ रही है। कोदा साहब के गीत, वसंत देसाई का संगीत, वाणी जयराम की आवाज, जया बच्चन की सादगी भरा अभिनय, बहुत कुछ, इन सबको संजो के मैं और सिद्धार्थ, मैं नवीन और सिद्धार्थ आपके लिए लेकर आए ऐसे खूबसूरत गीतों का संकलन। लेकिन अभी मन की बात।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: कभी आगे बंद करके बैठिए और सोचिए, ध्यान लगाइए कि क्या पुराने दिन अच्छे थे या आने वाले दिन अच्छे हैं, या जिन दिनों को आप जी रही हैं वो अच्छे हैं। और कुल मिला के आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा जब आपके बीते हुए दिनों का जो है पीक वो सबसे ऊपर होगा, वर्तमान थोड़ा सा पैरेलल चलेगा और फ्यूचर का कुछ तो पता ही नहीं है ना सिद्धार्थ।
2: बिल्कुल, क्योंकि हमेशा हम अपने अतीत, अगर कहते हैं ना कि अगर वर्तमान हमारा अच्छा हो, अगर हम वर्तमान को बेहतर कर दें तो हमारा अतीत अपने आप अच्छा हो जाएगा और भविष्य तो होगा ही, क्योंकि आज जो वर्तमान है कल वो अतीत होगा, और वर्तमान अच्छा करेंगे तो आने वाला भविष्य भी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमें जीवन से जोड़ती हैं और इस जीवन के एक एक पल को खास बनाती हैं।
0: सिद्धार्थ, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन कहता है कि जो बीती हुई स्मृतियां हैं ना वो हमेशा अच्छी ही होती हैं, क्योंकि हमें तब पता चलता है जब हम वर्तमान में जीते हैं, अरे पुराने दिन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ आने वाले दिन भी खूबसूरत हो, इसलिए फिलहाल जो आप कर रहे हैं मन लगा के लिए।
2: बिल्कुल, जो आप कर रहे हैं नवीन, कह रहे हैं कि इसे मन लगा कर करते रहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई काम आप दिल से करते हैं, जब दिल की बात सुनते हैं ना तो वो दिल तक पहुंचती है, वो कभी गलत नहीं हो सकती। अपने दिल की बात सुनिए, अपने मन की बात सुनिए, क्योंकि कहते हैं कि ख्वाबों की उम्र छोटी सही मगर रंग गहरे छोड़ जाती है, जवानी की हर एक धड़कन जिंदगी को गीत बना जाती है।

0: जी हाँ, जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। बिल्कुल जैसा कि नवीन ने कहा कि हम फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, हम आगे की सोच रहे हैं, और हमारा वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा, इसलिए कोशिश करना हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों नवीन?
1: बिल्कुल, कोशिश लगातार करते रहिए। और इस गाने को सुनकर मुझे बहुत अच्छी सी बात याद आती है, जब भी आप पहाड़ों की तरफ रास्ता अपना रुख करते हैं, बस में होते हैं, तो ये गाना ना सबसे पहले चलता है बस में। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, कहीं भी हो लेकिन मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जिंदगी जीते रहिए।
0: बिल्कुल, और नवीन जब गानों की बात चल रही है, गीत संगीत की बात चल रही है, गुड मॉर्निंग चल रही है, तो एक और गीत का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, वो हंसनी मेरी हंसनी, याद है तुम्हें ये गीत?
1: बहुत ही जहरीला इंसान का बहुत सुंदर गीत,
0: किशोर कुमार ने इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है, आर डी बर्मन का संगीत है, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी। ये जो गीत है ये ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गीत की जो धुन है और इसके शब्दों में प्रेम की कोमलता के साथ विरह की हल्की सी कसम भी है, क्यों नवीन?
1: बिल्कुल, और उस पर किशोरदा की आवाज का वो जादू जो सीधे रूह को छू लेता है।
0: तो चलिए
1: बिना किसी देरी के और बिना किसी इंतजार के चलते हैं सिद्धार्थ।
0: बिल्कुल, और चलते चलते ये आपसे कहेंगे कि हवा के साथ उड़ चले हैं कुछ पुराने ख्वाब भी, हवा के साथ उड़ चले हैं कुछ पुराने ख्वाब भी, तेरी यादों की हंसनी आज फिर दिल में उतर आई।

0: जी हाँ, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हंसनी बनकर उड़ती हो सपनों के आकाश में, छोड़ गई हो मधुर तराने मेरे मन के विश्वास में। तेरी याद का एक पंख लिए दिल अब भी उड़ना चाहता है, जहाँ कहीं भी तुम हो प्रिय वहीं ये मन ठहरना चाहता है।
1: बहुत ही खूबसूरत कविता, लेकिन अब वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं देता। सिद्धार्थ और कहता है कि हमें इस प्रोग्राम को यही वाइंड अप करना होगा, यही अलविदा करना होगा। तो किस खूबसूरत गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम को हम खत्म कर रहे हैं?
0: नवीन एक हिंट दे रहे हैं चार लाइनों के माध्यम से कि मंजिल मिले ना मिले सफर सुहाना रहे, मंजिल मिले ना मिले सफर सुहाना रहे, लबों पे गीत और दिल में तराना रहे। जिंदगी की राहों में बस यही दुआ है, हर पल गाता रहे मेरा दिल का फसाना रहे।

0: कहेंगे कहीं भी देना, वो कहीं भी देना ये रातें, कहीं भी देना ये दिन।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ प्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन, योग स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खाते में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी

0: साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
2: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार में दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मात्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और

0: 48,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और खास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, तो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद फरहाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मुज खुला। तत्काल खत्म नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है बच्चों में कुपोषण का कुचक्र। धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। Headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
5: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
5: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime
6: Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third

0: experience would tread to tread. In Paris, Prime Minister Modi has asserted that AI, that is artificial intelligence, means all-inclusive for us and dubbed India a tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1,200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approved large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, the early morning news. Have a nice day.
0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अक्वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हरा कर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी कि तिजारत है।
2: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
0: जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवीत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियो में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन बरसों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजोर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया।

0: नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
1: Priez, monsieur Narendra, vous dites à votre coursier, oui, après Nice, Evian, Paris, mais il se fait de l'heure qui vient, soit gâte carré. France au barat qui dossier à ma raille.
0: पेश है वजीर आजम के पेरिस के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निकार की एक रिपोर्ट।
2: पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवा टेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरगर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबों में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का ऐलान भी किया। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीबात से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाज़ाब्ता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% ख्वातीन हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: मस्कुर स्कीम कारकुनों और आजिदों की बाज़ाब्ता मईशत में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की खातिर तैयार की गई है। इसके तहत पहली बार के मुलाजमीन 15,000 रूपये तक की तरकीब हासिल करने के अहल होंगे। इस तरह उन्हें अफरादी कुव्वत में शामिल होने पर अहमियत की हामिल मदद मिलेगी, जबकि इजाफी रोजगार के मौके दस्तियाब कराने वाले आजिरों को हर इजाफी मुलाजिम रखने पर 3,000 रूपये महाना तक की तरकीब मिल सकेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पिछले साल यकम अगस्त को नाफिज हुई थी। इसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने को फरोग देना और मईशत के सभी शोबों में सोशल सिक्योरिटी दायरे को वसत देना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। इसका मकसद दो साल के अरसे में मुल्क में मुलाजिमत के 3.5 करोड़ से ज्यादा मौके दस्तियाब कराना है। दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। साल 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात में इस मौसम गर्मा के सीजन के लिए 18,250 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। मंजूरशुदा सरकारी खरीद की कम अज कम इमदादी कीमत की मालियत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य

0: प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मस्कूरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहिक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक, फंडिंग और मुसावियाना इलाज और मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के दो रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज जिला पहुंचेंगी। मजीद तफसील हमारे नामा निकाज से।
1: मयूरभंज जिले में अपने क्याम के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अवामी फलाह बहबूद, देही तरक्की और कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। रायरंगपुर में सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर की जानिब से मुनाकिद एक हेल्थ कैंप पहुंचेंगे और दिल्ली इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक एक बड़े मरबूत प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए खसूसी सर्किट हाउस और नए तामीर शुदा रायरंगपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। आकाशवाणी भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के तीन रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की दूरंदेश कयादत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आज हम शिमाल मशरिक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं।
1: के तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरक को नजरअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खित्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकाबंदी और नजरअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। पिछला 12 साल में वजीर आजम ने 83 मरतबा से ज्यादा शुमाल मशरक का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। पिछले 12 साल में 8 नए हवाई अड्डे बिल्कुल नए सिरे से तामीर किए गए हैं। इससे पहले 2014 में इनकी तादाद 9 थी, जो अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान स्कीम के तहत 90 रास्ते और 12 हवाई अड्डे फाल हो गए हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एटानगर के दैरा नुतुम गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ MQ खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
2: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 3 घंटे में, 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी जो थी वो अपर्याप्त थी या सिंगल लेन हुआ करती थी, अभी 4 लेनिंग हो गई है।
1: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए गुवाहाटी के एक रिहायशी ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में रोड और फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छे से पार हुआ है और काफी सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है, तो ये काफी हम लोग खुश हैं।
1: दिल्ली से आकाशवाणी न्यूज के लिए सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों में बहरी जहाजों की आमद रफ्त पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर सभी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। सोशल मीडिया के एक बयान में अमरीका की मरकजी कमान ने यह जानकारी दी है। हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के FIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2 के मुकाबले 3 गोल से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रहनुमा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने अमरीका ईरान के दरमियान अमन माहदे पर दस्तखत किए जाने की खबर को सफे अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के सुदूर ने 14 निकाती माहदे की तौसीक की, जिसमें अबनाए हुरमुज खोलने और पाबंदियों में नरमी किए जाने का फ्रेमवर्क शामिल।

अभी आप सुन रहे थे सितार पर बजाया राग मियां की तोड़ी। कलाकार थे अमृत दिशा, तबले पर

0: आपके साथ संगत कर रहे थे बलजीत सिंह। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा अब संपन्न होता है। अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रही है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, एमडीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हम अपने सुनने वालों को बता दें, आज दिन में 1:10 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म लव इन टोक्यो के कुछ चुनिंदा गीत। आकाशवाणी दिल्ली का यह इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:15 हुए जाते हैं, आइए सुनते हैं गांधी चर्चा पर। गांधी चर्चा के अंतर्गत ये वार्ता विषय है योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। वार्ताकार है निशा जिंदल।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा।

0: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में आज की वार्ता का विषय है योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा जिंदल।
1: महात्मा गांधी के लिए स्वास्थ्य ही वास्तविक धन था, जो शरीर मन और आत्मा के संतुलन पर आधारित था। वे योग को आत्मा से जुड़ने और शारीरिक मानसिक शांति के साधन के रूप में देखते थे। वे कहते थे कि स्वच्छता पूजा के समान है। वे स्वच्छ मन शरीर और वातावरण को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य मानते थे। उनका मानना था कि स्वास्थ्य की कुंजी हमारे भोजन में है। वे कम और सादा भोजन करने की सलाह देते थे। गांधी जी के लिए स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा की शुद्धि थी। वे मानते थे कि सच्चा स्वास्थ्य स्वयं के लिए अनुशासन और प्रकृति के नियमों के पालन से आता है, न कि दवाइयों से। गांधी जी योग को केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम मानते थे। उनका मानना था कि शरीर के नियम तोड़ने पर बीमारी होती है और प्रकृति ही उसे ठीक कर सकती है। वे मिट्टी पानी और धूप की चिकित्सा को बेहतर मानते थे। स्वस्थ शरीर मन और आत्मा की सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। इस स्थिति में व्यक्ति सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त होता है और उसके सभी अंग प्रत्यंग सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में यह वह आदर्श स्थिति है जिसमें शरीर सुफूर्तिवान मन प्रसन्न और आत्मा मुदितापूर्ण होती है। स्वस्थ शरीर का अर्थ मोटा तगड़ा शरीर नहीं अर्थात इसमें पहलवानों का अतिशय दौड़ने कूदने वालों का समावेश नहीं है वरन इसका आशय व्याधि रहित शरीर से है अर्थात वैसा शरीर जो सामान्य काम कर सके और जो मनुष्य बिना थकान के रोज 10-12 मील चल सके। उन्होंने तर्क दिया कि बीमारी प्रकृति के नियमों को तोड़ने का परिणाम है तो प्रकृति ही इसे सुधार भी सकती है। उन्होंने 50 से अधिक वर्षों तक प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास किया। वे किसी प्रणाली के पक्षधर नहीं थे पर बीमारियों की रोकथाम और उपचार की शक्ति में उन्हें बहुत विश्वास था। इसीलिए वे कहते थे कि स्वास्थ्य शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है जिसका अर्थ है शरीर की सहजता। एक स्वस्थ व्यक्ति वह है जिसका शरीर रोगों से मुक्त हो और बिना थकावट के अपने सामान्य कार्य कर सके। गांधी जी कहते थे कि अपने शरीर के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है जिसके बारे में अधिकांश लोग अनभिज्ञ है। योगासनों का अभ्यास करने से शरीर में शक्ति और लचीलापन बढ़ता है साथ ही तंत्रिकाओं को आराम मिलता है और मन शांत होता है। आसन मांसपेशियों जोड़ों और त्वचा के साथ साथ ग्रंथियों तंत्रिकाओं आंतरिक अंगों हड्डियों श्वसन प्रणाली तथा मस्तिष्क को भी प्रभावित करते हैं। गांधी जी लंबी सैर के बहुत

0: भी शौकीन थे, उन्होंने एक बार कहा था कि वे प्रतिदिन 10-12 मील चल सकते हैं। वे चरखा काटना, अनाज पीसना, सफाई करना और बागवानी जैसे कार्यों को ही अपना व्यायाम मानते थे। उनके लिए मानसिक शांति शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी थी। वे प्रतिदिन नियम से प्रार्थना करते थे जो उन्हें मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करती थी। गांधी जी के लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम ही नहीं बल्कि इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करना था, जो मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के लिए जरूरी था। वो मानते थे कि बीमारी होने वाली मौतों से कहीं अधिक मौतें बीमारी के डर से होती हैं। इसीलिए मानसिक रूप से निडर होना जरूरी है। गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे स्वयं अपना शौचालय साफ करते थे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। वे गांवों को आदर्श बनाने के लिए स्वच्छता को अनिवार्य मानते थे। गांधी जी नशाबंदी के कट्टर समर्थक थे। वे मानते थे कि शराब और तंबाकू न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं बल्कि व्यक्ति की नैतिकता को भी नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रमों में नशाबंदी को प्राथमिकता दी है। गांधी जी ने भगवत गीता के निष्कपट कर्म या अनासक्ति योग को अपने जीवन का आधार बनाया। उनका मानना था कि व्यक्ति को कर्म फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। वे इसे गीता का संदेश मानते थे जिसमें कर्म करते हुए फल के प्रति निर्लिप्त रहना सिखाया गया है। गांधी जी के अनुसार योग का अर्थ आत्मा के साथ जुड़ना है। योग का उद्देश्य न केवल शरीर को स्वस्थ रखना है बल्कि मन और आत्मा को भी शांत रखना है। योग का मतलब सिर्फ हिमालय में बैठकर ध्यान करना नहीं बल्कि गरीबों की सेवा करना है। वे कर्म योग को जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने के पक्षधर थे। महात्मा गांधी के लिए योग का अर्थ था सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना। महात्मा गांधी का योग पारंपरिक आसन प्राणायाम से भिन्न एक क्रियात्मक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन था जो मुख्य रूप से अनासक्ति योग पर आधारित था। गांधी जी का मानना था कि कर्म करो लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो। यह गीता पर आधारित उनकी व्याख्या थी जिसे उन्होंने कुसानी में लिखा। वे हमेशा सीधे और स्थिर बैठते थे जो उनके अनुशासित व्यक्तित्व को दर्शाता था। अनासक्ति योग महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित एक दर्शन और जीवन शैली है जो मूलतः भौतिक संसार की किसी भी वस्तु से अनासक्ति को प्रोत्साहित करती है। अनासक्ति योग कर्मों के परिणामों से भी किसी भी प्रकार के लगाव को त्यागने का अभ्यास है। ऐसा माना जाता है कि अनासक्ति के माध्यम से दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि नियमित योग अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जिसमें हृदय स्वास्थ्य में सुधार, मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि और रक्तचाप का सामान्य होना शामिल है। योग तनाव को दूर करने में और नींद को बेहतर बनाने में कारगर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य योग के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2014 में भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने इसे मान्यता दी और 2015 से यह वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य संतुलन और एकता का संदेश देता है।
1: गांधी चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था योग और स्वास्थ्य के विषय में गांधी जी के विचार। आलेख एवं स्वर निशा जिंदल।

सामीन आदाबर्स, ये आकाशवाणी है। सुबह के 9:30 बजे उर्दू सर्विस के पहली मजलिस की नशात का आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामीन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशोनाले प्रोग्रामों पर।

नमस्कार 35 मिनट पर सुबह का ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और नमस्कार 45 मिनट पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। नौ बजकर 50 मिनट पर खबरें नशे की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अखबार जर्रे पर मबनी शम्मे फरोजा।

सस्टेनेबल प्रोग्राम में आज के फनकार हैं रानी गरुला और शब्बीर हुसैन। आप पेश करेंगे गैर फिल्मी गजलें। कलाम वामिश जौनपुरी, साहिर होशियारपुरी, जानिसार अख्तर और नजीर बनारसी का। सुबह 10:30 प्रोग्राम पेश किया जाएगा कंट्री वाइड और 10:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी नाखूनों का प्रोग्राम मेरी पसंद। फ्री गिफ्ट स्कीम जनाब वीएम आनंद का तहरीर करदाई मिजाहिया ड्रामा सुनेंगे 11:30 पर। दिन में 12:00 खबरें नशी की जाएंगी और 12:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। फिल्मी दुकानों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 1:00 तक। दौरान प्रोग्राम 12:30 तारिक साज प्रोग्राम में आज का मौजू है मौलवी इमाम बख्श सहबाई। दिन में 1:00 आलमी खबरें नशी की जाएंगी और 1:15 पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। ये था सामीन एक मुख्तसर तारुफ से मजलिस में नशर वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मान पद्मश्री से सम्मानित किया। तन्वी, कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो उनके नाम सिर्फ फाइलों में ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अवसर होते हैं जैसे मोहपात्रा के बारे में जो सदैव लोगों के दिलों में बसे रहते हैं। हिंदी के पहले मौलिक कहानीकार माने जाने वाले माधव राव सप्रे का जन्म आज ही के दिन 1871 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले में हुआ था। एक मराठी भाषा परिवार में जन्मे सप्रे जी ने हिंदी को अपना जीवन धर्म बना लिया। 1900 में उन्होंने छत्तीसगढ़ का पहला हिंदी मासिक पत्र छत्तीसगढ़ मित्र निकाला, जिसमें उनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई, जिसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी का दर्जा दिया जाता है। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रसिद्ध मराठी कृति गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए पत्रकारिता को हथियार बनाया। आज उनकी 125वीं जयंती पर हम उस कलम को नमन करते हैं जिसने हिंदी गद्य की नींव रखी। श्रोताओं, आज जन्मदिन है आशीष विद्यार्थी की और इसी मौके पर मैं आशीष विद्यार्थी का मशहूर अन्ना वाला डायलॉग जरूर सुनाना चाहूंगी आपको। मुझे तो ये डायलॉग बहुत पसंद है और शायद श्रोताओं आपने भी ये जरूर सुना होगा। आइए सुनते हैं।
1: तारीफ उस खुदा की जिसने जा बनाया, काला बना के मुझको गोरा इसे बनाया। अन्ना से बच के किधर जाने का हा? दुनिया में ऐसा कोई जगह होगा जिधर मौत नहीं पहुंच सकता, लेकिन ऐसा कोई जगह नहीं जिधर अन्ना नहीं पहुंच सकता। मेरा 2 करोड़ का माल एयरपोर्ट में पकड़ाया तू, उसका भरपाई कौन करेगा? ना
2: करेगा ना
1: तू करेगा? ये करेगा कैसे करेगा?
3: And it's also the birthday of Kajal Agarwal, an Indian actress who works in Telugu, Tamil and Hindi cinemas. So let's hear a beautiful song picturized on her from the film Special 26.
4: Naino me jaise khwab sa jo tu na ho to pani pani naino।
0: और श्रोताओं, इसी के साथ आज सवेरे में फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि ये सुबह आपके लिए सकारात्मक रही होगी। तो मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और आपके दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ कीजिए। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगी।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रूपये मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमरीका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के एफआईएच नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी कि तिजारत है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहे हैं जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवीत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियो में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाजे था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअसर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन वर्षों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजूर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम मोदी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली

के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीब से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाब्ता अफरादे कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% ख्वातीन हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने चार रियासतों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात

रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। इस फैसले को दालों और तिलहन की काश्त करने वाले किसानों के मफाद में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे कम अज कम इमदादी कीमत के फायदों को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट की कीमत के दबाव से राहत मिल सकेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। मस्कुरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहिक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक, फंडिंग और मुसावियाना इलाज व मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत ओडिशा के दो रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज पहुंचेंगी। मयूरभंज जिले में अपने कायम के दौरान सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू अवामी फलाह बहबूद, देही तरक्की और कबायली बिरादरियों को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। रायरंगपुर में सदर जमहूरिया एम्स भुवनेश्वर की जानिब से मुनक्किद एक हेल्थ कैंप में पहुंचेंगी और देही इलाकों में पाइपलाइन के जरिए पानी की फराहमी से मुतालिक एक बड़े मरबूत प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक में कानकनी से मुतासिरा 113 गांवों में पीने का साफ पानी फराहम होगा। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के तीन रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा, जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। इस दौरान नायब सदर कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वो मकामी अपनी मदद आप ग्रुपों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही नायब सदर द्रक्षा गांव के प्रोग्राम के तहत सरहदी इलाके में किए गए तरक्याती इकदाम का भी जायजा लेंगे। अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों और साहिली इलाकों में बहरी जहाजों की आमद और रफ्त पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर सभी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। सोशल मीडिया पर एक बयान में अमरीका की मरकजी कमान ने यह जानकारी दी है। इस ऐलान से एक दिन कबल सदर ट्रंप ने एक मुफाहिमत नामे पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद ईरान के साथ तकरीबन 4 महीने से जारी लड़ाई खत्म करना और खित्ते में कशीदगी दूर करना है। अगरचे नाकाबंदी हटा ली गई है, फिर भी अमरीकी बहरिया का साजो सामान समझौते पर अमल दरामद की निगरानी के लिए नजदीक के खित्ते में मौजूद रहेगा। उम्मीद है कि इस इकदाम से ईरान की आबी हदूद और उसके अतराफ बहरी जहाजों की आमद रफ्त में रुकावट पर तश्वीश दूर हो जाएगी और खित्ते में अहम आबी गुजरगाहों से जाने वाले कमर्शियल ऑपरेटर्स को राहत मिलेगी। हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के SIH नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 गोल से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय खवातीन की टीम पूले में सरे फहरिस्त रही। कल सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला चिली से होगा। फीफा आलमी कप में कल रात अमरीका के अटलांटा स्टेडियम में चेकिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला गया ग्रुप ए का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही दोनों टीमों के नॉकआउट मरहले में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरकीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमरीका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है।
और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के एफआईए

0: नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेशे खिदमत अखबारें जर्री पर मबनी शम फरोजा।
2: इस दुनिया में एक इंसान बहुत से मुहसिनीन के एहसान तले दबा हुआ है। बंदे पर उसके खुदा का एहसान, औलाद पर माँ बाप का एहसान, शागिर्द पर उस्ताद का एहसान, रिश्तेदार पर अइज्जा, अकरबा दोस्त अहबाब और पड़ोसियों का एहसान, मुल्क के बाशिंदे पर हुकूमत, पुलिस और फौज के महकमों का एहसान। गर्ज इस दुनिया में हर एक इंसान किसी दूसरे इंसान का कई रिश्तों और नातों से एहसान मंद है। अब सवाल ये है कि इंसान अपने महसिनीन के साथ कैसा रवैया और सलूक इख्तियार करे जिससे वो एक एहसान शनास इंसान कहलाए, क्योंकि जितनी अच्छी सिफत किसी पर एहसान करना है उतनी ही अच्छी सिफत एहसान शनासी भी है। एहसान शनास इंसान को कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता है, जबकि एहसान फरामोशी एक बुरी सिफत तसव्वुर की जाती है। इसीलिए एक सलीम उत्तबा इंसान अपने मुहसिन के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करता है। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा मुहसिन खुदा ताला है, जो मालिक हकीकी है, जिसने इंसान को पैदा किया, उसे अशरफुल मखलूकात बनाया। गरचे इंसान अपने खुदा के एहसानात का बदला अदा नहीं कर सकता, लेकिन उसके एहसानात की कदर करके उसके हुकूक अदा कर सकता है। और खुदा ताला के हुकूक ये हैं कि उसके बताए हुए अहकामात पर अमल किया जाए, अच्छाई को इख्तियार किया जाए, बुराई से बचा जाए और खुदा के मखलूक के साथ रहम का मामला किया जाए। खुदा ताला के बाद इंसान के मुहसिन उसके माँ बाप हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया, औलाद की हर दुख तकलीफ को अपनी तकलीफ से ज्यादा समझा, औलाद के लिए जरूरियात जिंदगी से लेकर तालीम और तरबियत तक हर तरह की जिम्मेदारी अदा की, औलाद को पढ़ा लिखा कर इस मकाम पर ला खड़ा किया जहां से वो मुआशरे में एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। औलाद का अपने मुहसिन माँ बाप के साथ हुस्न रवैया ये है कि औलाद माँ बाप के साथ हमेशा नरम कलामी से बात करे, अपने लिए माँ बाप की इताअत शियारी को लाजिम समझे और पढ़ लिख कर उनका नाम रोशन करे। माँ बाप के बाद इंसान पर उस्ताद का एहसान है, जिसने उसे पढ़ना लिखना सिखाया, जहल की तारीकी से निकाल कर इल्म की रोशनी में ला खड़ा किया। एक इंसान का बतौर शागिर्द अपने मोहसिन उस्ताद के साथ रवैया ये होना चाहिए कि वो हमेशा उस्ताद के साथ अदब व एहतराम के साथ पेश आए और उस्ताद के सिखाए हुए इल्म पर अमल करे। इंसान पर उसके पड़ोसियों, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों का भी एहसान है, जो हर खुशी व गम में साथ खड़े रहते हैं। इन अफराद के साथ इंसान का रवैया ये होना चाहिए कि वो इनके साथ खुश अखलाकी से पेश आए, वक्तन फवक्तन इनसे मुलाकात करे, कोई बीमार हो जाए तो उसकी मिजाज पूसी करे, इनमें से जो नादार हो उसका ख्याल रखे, इनके साथ हमदर्दी, रवादारी और उल्फत और मोहब्बत का मामला करे। मुल्क का बाशिंदा होने के नाते एक इंसान पर मुल्क की हुकूमत और पुलिस व फौजी महकमों का भी एहसान है। हुकूमत हमसे टैक्स लेकर ये रकम हमारे हिफाजती इंतजामात पर खर्च करती है। मुल्क के आवाम के लिए नई नई स्कीमें लाकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिश करती है। पुलिस व फौजी महकमे हमारी हिफाजत के लिए हम वक्त मुस्तैद रहते हैं। एक अच्छे जिम्मेदार और मुल्क के एहसान शनास बाशिंदे के लिए जरूरी है कि वो अपने शहर, कस्बे और

0: حسن غزل پروگرام میں آج آپ سماعت کر رہے تھے رانی گرولا اور شبیر حسین کی گائے چند غیر فلمی غزلیں. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. لیجیے سنیے پروگرام کنٹری وائڈ.
1: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड. इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति.
2: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी. देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है. श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1 लाख रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है. और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं. अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है. और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है. तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे. तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं. किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
3: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसके लिए आगे बढ़ें कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को. तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी. ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1 लाख करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है. तो वो चीजें पहली किस्त जा रही हैं. और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है. देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी. और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला हम लें, उनको भी जरूरत है. देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया. अभी एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में. उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
2: निश्चित तौर पर. और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्यवर्ग

0: भी स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1,00,000 रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है,
1: कि 1,00,000 तक के किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1,00,000 से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12,00,000 तक रुपए तक के ये जो है सो टैक्स फ्री
0: कर दिया था। बिल्कुल।
1: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1,00,000 रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1,00,000 रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है, तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भाग न पड़े तो उसको टैक्स पे किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
0: बिल्कुल। जुड़े रहिए आशुतोष जी, एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
0: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है।
2: तो अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो है, जो एम्प्लॉयर्स है, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है, उन्हें हायर करिए।
0: बिल्कुल।
2: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉइज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉर्पोरेट में गए हैं जो इम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉई 6 महीने उसके बाद जो राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे लिए एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी, तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉर्पोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
0: आशुतोष जी आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा

0: कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए।
1: अब क्या है कि दो

0: में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए।
1: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस एजेंसी योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी

0: सब लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट. जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर द करियर. मोस्ट ऑफ देम, आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, looking at their career more rather than sticking to one of the any of the organization. Abhi recently jab se ye Pradhan Mantri Rozgar Yojana lagu hui hai, isse hamare jaise employers ko kafi benefit mila hai in terms of hiring the right set of resources and making them stick to the organization. Ye ek bahut hi focused approach hai aur isko main, you know, I am grateful to the EPFO and the PM organization for rolling this out. हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो, आई बी एन एम्प्लॉयर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स द यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट.
1: बिल्कुल. तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से, जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के योग विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए.
0: जी जी. सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट एक्चुअली इनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब, एंड इट इनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इन टू द फॉर्मल वर्क फोर्स विद कॉन्फिडेंस. जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है. It actually creates a multiplier effect across families, communities, and the broader economy. Every new employee supports a household, and every household contributes towards the consumption, and every successful business contributes towards the nation building. So basically, जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग-अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें incentive देती है as an employee, as an employer. ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की कंट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है.
1: बिल्कुल. आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा. कुछ आंकड़े बड़े इम्पोर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी से जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें. और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी वुमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है. और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और वुमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
2: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था. जैसे अभी निलेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए. अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है.
1: बिल्कुल.
2: तो ये और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को.
1: बिल्कुल जी. बिल्कुल. निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें. बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की।

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कंट्री वाइड, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फेडिश पर हमारी नशियात जारी है। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश इश्क के परिंदे फिल्म के कव्वाली जावेद अली, अल्तमश फरीदी और हमनवाओं की आवाज में।

आशा जी ने मेरे सैकड़ों हिट गाने गाए हैं, जिनमें से कई गानों पर आशा जी को बेस्ट सिंगर के अवार्ड भी मिले। ये मेरी ही आशा नहीं, सारी दुनिया के अनगिनत संगीत प्रेमियों की आशा है कि आशा जी की सुरीली आवाज, इनकी गायकी, इनकी पॉपुलैरिटी इसी तरह दिन पर दिन उन्नति के शिखर पर चढ़ती जाए। आशा जी एक महान कलाकार हैं और मैं इनकी कला व इनके बिहेवियर से कितना प्रभावित हूँ ये आशा जी खुद जानती हैं, इनका मन जानता है।

काजल फिल्म का ये भजन आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। मेरी पसंद प्रोग्राम की अगली पेशकश गर्म हवा फिल्म की कव्वाली अजीज अहमद खान वारसी कव्वाल और हमनवाओं की गाई हुई कलाम कैफी आजमी का।

0: राकेश, ओ बेटे राकेश।
1: जी डैडी।
0: तुमने आज के अखबार में इश्तेहार पढ़ा है?
1: पढ़ा है डैडी, लेकिन ये भी कोई इश्तेहार है? घरेलू नौकर की जरूरत हो तो इंटरव्यू के लिए फौरन आ जाओ।
0: क्यों बेटे, इसमें क्या गलत है?
1: वाह डैडी, घरेलू नौकर का काम है कि वो इंटरव्यू देने मालिक के पास आए, या मालिक का काम है कि वो नौकर का इंटरव्यू लेने उसके घर जाए?
0: बेटे, जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है, आजकल नौकर मिलते ही कहाँ हैं?
2: हाँ बेटे, कलयुग आ गया है। कलयुग?
0: कलयुग नहीं, ये नौकर युग है। अगर हम नौकर का इंटरव्यू लेने उसके घर जाएं और वो नौकरी के लिए हाँ कर दे तो समझो हमारी लॉटरी निकल आई, वरना हमें नौकर नहीं मिलने वाला।
3: ये कहाँ का इंसाफ है मदनी, एक मालिक होने वाले नौकर के पास इंटरव्यू लेने जाए? हम मालिकों को भी तो कोई इज्जत है।
2: हाँ बेटे।
3: क्या हम मालिक इंसान नहीं है? हाँ। नौकर का खून खून है, मालिक का खून पानी है मम्मी।
0: मत रो बेटे, मत रो, हम मालिकों के दिन खराब आ गए हैं, रोने से हमारी तकदीर तो नहीं बदल जाएगी ना।
2: मत रो मेरे लाल, तुम तो हमारे खानदान में हीरा पैदा हुए हो, तुम हमारे खानदान के लाल।

0: लाल हो लाल। अरे तुम MBA हो, इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हो, फिर भी हर बार लड़की वाले तुम्हें इसलिए रिजेक्ट कर जाते हैं कि हमारे पास नौकर नहीं है।
1: बेटे राकेश, एक बात नोट कर लो, नौकर नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं, समझे?
2: मुझे कुंवारा रहने दो पापा, मैं सड़कों पर अकेले धक्के खाता रहूंगा, लेकिन मुझे मजबूर मत करो कि मैं नौकर का इंटरव्यू लेने नौकर के घर जाऊं। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा डैडी।
0: और बेटे, नौकर के बगैर अगर तुम कुंवारे रह गए तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे?
1: जिद नहीं करते बेटे, आज तक हमारे खानदान में कोई भी कुंवारा नहीं रहा। देखो, मैंने शादी की थी, मेरे पिताजी ने शादी की थी, और जहाँ तक मुझे पता चला है शायद मेरे दादाजी ने भी शादी की थी, तो तुम कैसे कुंवारे रह जाओगे?
0: अब जाओ बेटे जाओ, वक्त जाया मत करो, जल्दी से नौकर को साथ लेकर वापस आ जाओ।
1: नौकर लड़का हो, नौकर लड़की हो, जो भी हो, जितनी भी तनख्वाह मांगे उसे लेकर आओ, समझे?
2: ठीक है, जाता हूँ, लेकिन एक बात मैं साफ किए देता हूँ, मैं उस नौकर या नौकरानी के सामने झुकूंगा नहीं, गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, चाहे वो हाँ करे चाहे वो ना करे।
1: नहीं बेटे, ध्यान से बात करना उससे, उसे नाराज भी मत करना, उस नौकर के साथ तुम्हारा मुस्तकबिल जुड़ा है, जाओ भगवान तुम्हें कामयाब करे।
0: जुग जुग जियो मेरे बेटे, पहले नौकर लाओ, फिर बहू लाओ, और फिर बच्चे।
2: ठीक है, जाता हूँ।

0: Good morning, sir. Good morning, madam.
1: Good morning, good morning. Excuse me, मैंने आपको पहचाना नहीं.
0: सर, मैं अखबार जंतर मंतर से आया हूँ. आपने टेलीफोन किया था ना सर, मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर आपसे बात कर लेता हूँ. क्या बात है सर?
1: अरे भाई, कुछ हमारी समझ में आए तो तुम्हें भी बताएं. हमने तुम्हारी अखबार में इश्तहार दिया था कि हमें घरेलू नौकर की जरूरत है
0: जी,
1: इंटरव्यू के लिए आ जाना. और आपने प्रिंट कर दिया कि घरेलू नौकर की जरूरत हो तो इंटरव्यू के लिए आ जाना.
0: बस इतनी सी बात पर आप इतना परेशान हो रहे हैं सर.
1: हा?
0: सर, इश्तहार में थोड़ी बहुत प्रिंटिंग एरर तो चलती है ना.
1: क्या?
0: और फिर घरेलू नौकर की जरूरत है या घरेलू नौकर की जरूरत हो, तो इन दोनों में क्या फर्क है? इट्स ऑल एंड द सेम थिंग.
2: क्या ये एक ही बात है क्या?
0: यस मैडम. मैडम, आजकल अखबारों में इश्तिहार पढ़ने वाले इतने होशियार हो गए हैं कि वो सब समझते हैं. वो जानते हैं कि आपको घरेलू नौकर की जरूरत है. देख लेना, आपके पास नौकरों की लाइन लग जाएगी.
1: चलो चलो चलो, ये तो ठीक है, लेकिन आपने हमारे ही एड्रेस पर एक और स्टार का प्रिंट कर दिया.
2: हाँ, उसमें लिखा है कि किराए के लिए कमरा खाली.

0: किराएदार चाहिए, ऐसा एडवर्टाइजमेंट तो हमने दिया ही नहीं।
1: ओ अच्छा, वो एड। जब आप इश्तेहार बुक कराने हमारे दफ्तर में आए तो उन्होंने आपको फ्री गिफ्ट स्कीम के बारे में तो बताया होगा सर।
2: हाँ, फ्री गिफ्ट स्कीम।
1: जी हाँ सर, आज

0: या नॉन वेजिटेरियन भी?
1: मैं तो वेजिटेरियन हूँ, पापा भी वेजिटेरियन है।
2: हाँ बेटे, हम दोनों वेजिटेरियन हैं।
3: फिर वही बात,
0: मैं पूछता हूँ आप बीच में कहाँ से आ गए?
2: हाँ मैं बीच में कहाँ से आ गया?
1: पापा पापा इसे ना रिजेक्ट कर दो, मत रखो इसे, मुझे भी डांट रहा है, आपको भी डांट रहा है।
2: कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, इस नौकर को हाथ से मत जाने दो।
0: हाँ हाँ
3: हाँ, तो तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई?
1: नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई है।
3: और जल्दी शादी करने का इरादा तो नहीं है?
1: ये तुम, मेरा मतलब है ये आप क्या पूछ रहे हैं?
2: बेटे बेटे, लड़कियों से ऐसे सवाल पूछा करते हैं क्या है?
0: ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़की का क्या भरोसा, आज ये हमारे पास है, कल इसकी शादी हो जाएगी तो हमको छोड़कर चली

0: अब मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से कैसे करूं? जब मैं यहाँ आ जाऊं, रहने लगूंगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ।
1: वाह वाह वाह वाह भाई, तुम्हारे ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं।
0: क्यों नहीं, अब मैं चाहता हूँ कि जरा मकान को देख लो।
1: इसकी फिक्र मत करो, हमारा सारा मकान हवादार है।
0: अच्छा,
1: यहाँ मजे करोगे। हाँ,
2: और बाथरूम में मार्बल स्टोन है, टाइले भी है।
1: किचन में स्टील के सिंक चमचम कर रहे हैं।
2: और एक बार जब तुम बाथरूम में घुस जाओगे ना, तो सारा दिन कपड़े धोते रहोगे।
1: और किचन तो ऐसा है, बर्तन भी धोते रहोगे, साथ फिल्मी गाने भी गुनगुनाते रहोगे।
0: इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी मेरी शादी नहीं हुई।
1: क्या?
0: ये सारे काम मुझे ही तो करने हैं। अगर हंसते हुए, गाना गाते हुए करूंगा तो और भी मजा आएगा। क्या?
2: पापा, पापा, मैं तो कहती हूँ ना, पहले कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दो और इसे रख लो। हाँ पापा, नौकर यही ठीक रहेगा, सीधा साधा नजर आ रहा है पापा।
1: नहीं नहीं नहीं, पहले वाला नौकर ठीक रहेगा, वो जरा स्मार्ट है, भाग भाग कर काम करेगा।
2: नो पापा, ये नौकर ठीक है।
1: अच्छा, ऐसा करते हैं, इसे भी वेटिंग लिस्ट में रख लेते हैं।
2: पापा
1: देखो, बाद में फैसला कर लेंगे, जो तनख्वाह कम लेगा उसे रखेंगे।
2: ओके ओके ओके ओके ओके ओके पापा, ये ठीक है।
0: सर, मैं कह रहा था कि मैं मकान देख लेता तो जरा जल्दी फैसला हो जाता।
1: देखो भैया, हमने तुम्हें वेटिंग लिस्ट में रख लिया, ठीक है, फैसला हो जाएगा तो मकान भी देख लेना।

0: 글기세도 네코냐? 이 캔디데이트 어라냐?
1: बाहर वालों ने दो ऐड छाप दिए हैं. यहाँ लगता है आज नौकरों और किराएदारों की लाइन लग जाएगी.
0: पापा ये तो वेल ड्रेस्ड है, पढ़ा लिखा लग रहा है. इसका मतलब है ये किराएदार है, हमारा मकान देखने आया है.
1: लग तो यही रहा है, फिर भी पूछ ही लेते हैं.
2: अरे भाई हम आ गए, भाई आप कहे अखबार में पढ़ा तो भागते हुए चले आए.
1: एक्सक्यूज मी, कौन सा एड पढ़ा है आपने?
2: अरे भाई वही एड जी, वही जो आपने पेपर में छपवाया था.
1: अच्छा अच्छा, वो वाला एड. मैं समझ गया. चलिए मकान के अंदर चलकर पीछे वाला पोर्शन देख लीजिए.
2: भाई इस वक्त हम जल्दी में हैं, हम अंदर नहीं आ सकते, फिर कभी फुर्सत में आएंगे. मगर कहाँ है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो,
1: कौन कौन वो?
2: अरे भाई वही लड़की कहाँ है? अरे अरे अरे लड़की तो यहीं बैठी है. बताओ मैं देखो इधर उधर टूट रहा हूँ. लड़की खड़ी हो जाओ.
0: मैं?
2: अरे भाई खड़ी हो जाओ.
0: क्या कहा आपने?
2: खड़ी हो जाओ.
0: मैं खड़ी हो जाऊँ?
2: और क्यों भाई, जब तक तुम खड़ी नहीं होगी हम तुम्हारी अलग अलग एंगल से फोटो कैसे लेंगे? भाई उठ जाओ ना.
0: व्हाट?
2: अरे भाई उठो. ऐसे ऐसे खड़े जाओ. शाबाश शाबाश.
0: लेकिन व्हाट इज द मैटर, बात क्या है?
2: देखो जरा मुस्कुरा कर, हाँ कैमरे की तरफ देखो. हाँ देखिए भाई, आप खामोश रहिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है? लड़की अब ऐसा करो तुम, हाँ ऐसे ऐसे, वेरी गुड. अब सुनो, अब छत की तरफ.

0: आप खामोश रहिए।
1: हाँ तो लड़की, तुम्हारा नाम क्या है?
2: मेरा मेरा नाम सरिता है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं?
1: भाई नाम तो बदल देंगे। हाँ बोलती जाओ, ऐसे ही बोलती जाओ, पता तो चले तुम्हारी आवाज कैसी है।
2: ओह माय गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं?
1: क्या क्या प्यारी आवाज है, क्या डायलॉग डिलीवरी है,
3: क्या डायलॉग कहता हूँ, आप बता दे कौन है, कौन है आप?
2: प्लीज प्लीज सुनिए ना, हमने एक नौकर रखना था और मकान का पोर्शन किराए पर देना था, आप किस लिए आए हैं?
1: क्या डायलॉग बोलती हो, तुम्हारे डायलॉग में कसक है, सस्पेंस है, क्या अंदाज है तुम्हारे बोलने का। हमने एक नौकर रखना था और मकान का पोर्शन किराए पर देना था, आप किस लिए आए हैं? तुम्हारे डायलॉग में कॉमेडी भी है, रोमांस भी है,
0: आप चुप बैठ जाएंगे, आप
2: बंद कर देंगे। रोमांस कॉमेडी,
1: हाँ तो मिस सरिता, अब तुम्हारी हाइट कितनी है?
3: मेरी हाफ लेना है तो कमरों का ले, किचन का ले, अरे बाथरूम का ले, नहीं तो मेरा ले, मेरी बेटी का नाम क्यों ले रहा है?
1: साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक
3: भाई, मुबारक मुबारक की बात,
1: मुबारक आपकी बेटी को हमने सेलेक्ट कर लिया है।
3: सेलेक्ट कर लिया, मेरी बेटी को सेलेक्ट कर लिया, किस बात के लिए सेलेक्ट कर लिया है?
1: देखिए आप बोलते बहुत है, मैं बता रहा हूँ आपकी बेटी को सेलेक्ट कर लिया है, उसी के लिए जिसके लिए आपने एड छपवाई थी भाई। सरिता जी आप तो छा गए, छा गए, छा गए।
4: मुबारक हो सर, अरे सर मुबारक हो, मुबारक हो।
3: अरे अरे तुम भी मुबारकबाद दे रहे हो, अरे कौन हो तुम, कौन हो?
4: सर सर मैं वही हूँ जो दो घंटे पहले आया था आपके पास।
3: तुम अखबार जंतर मंतर
4: ने एक और एड छापा है,
3: एक और एड, यानी के तीसरी एड।
4: यस सर, एक खूबसूरत और स्मार्ट लड़की फिल्मों में काम करना चाहती है, फिल्म प्रोड्यूसर्स तवज्जो दे।
3: क्या अरे अरे अरे भाई मैं गई तुम्हारी गिफ्ट स्कीम, मेरी बेटी ने फिल्मों में काम करने के बारे में आज तक कभी सोचा भी नहीं था।
0: क्या बोल रहे हैं आप?
4: अरे अरे ऐसा ना कहिए सर, ऐसा ना कहिए, इतनी खूबसूरत स्मार्ट लड़की हो और वो फिल्मों में काम करने के बारे में सोचे भी नहीं,
1: ये तो हो ही नहीं सकता सर। क्यों मैडम, ठीक कहा ना मैंने?
2: लेकिन लेकिन मैंने मैंने तो कभी भी नहीं सोचा कि मैं फिल्मों का।
4: और सर

0: कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ यहाँ यहाँ साइन कर दीजिए।
1: कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूँ मैं?
0: ये मिस सरिता, यार आप चुप क्यों नहीं रहते भाई? सोचिए मत मिस सरिता, साइन कीजिए भाई। हमने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है तो समझो तुम्हारी किस्मत जाग गई है।
2: ध्यान से
0: भाई, आप चुप रहेंगे क्या? ये देखिए, ये समझ लीजिए मिस सरिता कि अब आपका मुस्तकबिल आपको पुकार रहा है। आओ आओ आओ आओ, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अब तुम्हारी पहली ही फिल्म हिट हो जाएगी, सुपर सुपर हिट।
2: बेटी बेटी,
0: चलो भैया हमारे साथ चलो,
1: हमारे साथ चलो। मेरी बात तो सुनिए पापा, देखिए नहीं मुझे ले जाएंगे। कुछ तो बोलिए
0: ना भाई। भाई इनकी बेटी फिल्म स्टार बन रही है, ये क्या बोलेंगे? अब देखो सरिता, तुम पीछे मुड़ कर नहीं देखो, आई मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के
2: नहीं।

0: अबे ओ अच्छा अच्छा तुम वेटिंग लिस्ट में हो है?
1: जी
0: ठीक है तुम दोनों अंदर चलो अंदर
1: अंदर अंदर
0: अंदर वाटा

0: அவை ஓ அச்சா அச்சா தும் வெயிட்டிங் லிஸ்ட் மே ஹோ ஹே ठीक है ठीक है तुम दोनों अंदर चलो चलो अंदर
1: अंदर अंदर किस लिए
0: अंदर और क्या अरे देखते हैं मेरी बेटी फिल्म स्टार बन गई है अब उसे दो दो नौकरों की जरूरत पड़ेगी ठीक है
1: दो नौकरों की।

0: नौकर समझ रहे हैं।
1: बेटा तुम दोनों की किस्मत जाग गई है। अरे तुम फिल्म स्टार के नौकर बन गए, सोचो मत। चलो अंदर।

एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जुबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया। पेरिस में नीस में भारत इन वर्ड्स और विवाटेक 2026 का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। विवाटेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरकर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मस्नूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबे में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का ऐलान किया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल में पाकिस्तान पर सख्त नुक्ताचीनी की है और दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहिदे को फरसूदा और मौजूदा हकाइक के लिए नामुनासिब करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल के 62वें इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन की अव्वल सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा कि एक ऐसा मुल्क जो अपनी पॉलिसी के हिस्से के तौर पर दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाता है वो खैर सगाली और दोस्ती पर मुनहसर तआवुन की मुराआत का मुतालबा कर रहा है।

0: अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर सभी कार्रवाइयां रोक दी गई हैं। सोशल मीडिया पर एक बयान में अमेरिका की मरकजी कमान ने ये जानकारी दी है। इस ऐलान से एक दिन कबल सदर ट्रंप ने एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद ईरान के साथ तकरीबन चार महीने से जारी लड़ाई खत्म करना और खित्ते में कशीदगी दूर करना है। अगरचे नाकाबंदी हटा ली गई है, फिर भी अमरीकी बहरिया का साजो सामान समझौते पर अमल दरामद की निगरानी के लिए नजदीक के खित्ते में मौजूद रहेगा। उम्मीद है कि इस इकदाम से ईरान की आबी हदूद और उसके अतराफ बहरी जहाजों की आमदोरफ्त में रुकावट पर तश्वीश दूर हो जाएगी और खित्ते में अहम आबी गुजरगाहों से जाने वाले कमर्शियल ऑपरेटर्स को राहत मिलेगी। समझौते पर दस्तखत किए जाने के बाद से यह फैसला अमरीका की जानिब से किए गए ठोस फौजी इकदाम में से एक है, जिसे ट्रंप इंतजामिया ने वसी तर इलाकाई इस्तेहकाम की समत एक पेशरफ्त से ताबीर किया है। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अक्वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। मस्कूरा दिन सिकल सेल की बीमारी SCD के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाने के मकसद से हर साल मनाया जाता है। इस दिन बीमार अफराद को लाहक चैलेंजों को उजागर किया जाता है और बेहतर तहकीक फंडिंग और मुसाविना इलाज व मुआलजे की हिमायत की जाती है। मध्य प्रदेश के अपने दौरे के बाद सदर जमहूरिया अपनी आबाई रियासत उड़ीसा के दो रोजा दौरे के लिए आज दोपहर मयूरभंज जिला पहुंचेंगी। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन लद्दाख के लेह में आज से शुरू होने वाली योग के बैन अक्वामी दिन की तकरीबात में शिरकत करने के लिए वहां के तीन रोजा दौरे पर रहेंगे। ये जनाब राधाकृष्णन का मरकज के जेर इंतजाम इलाके का पहला सरकारी दौरा होगा, जो इस महीने की 21 तारीख तक जारी रहेगा। इस दौरान नायब सदर कर्लोकों गांव जाएंगे, जहां वो मकामी अपनी मदद आप ग्रुपों के साथ तबादले ख्याल करेंगे। साथ ही नायब सदर दक्षा गांवों के प्रोग्राम के तहत सरहदी इलाके में किए गए तरक्याती इकदाम का भी जायजा लेंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने चार रियासतों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। फीफा वर्ल्ड कप में आसू मेक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इस तरह मेक्सिको की टीम नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। मेक्सिको के मिडफील्डर लुइस रोमो ने खेल के 50वें मिनट में वाहिद गोल किया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल में दरियाए सिंध से मुतालिक आबी माहदे को फरसूदा करार दिया है और दहशतगर्दी को शह देने पर पाकिस्तान पर सख्त नुक्ताचीनी की है। अमरीका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमरीकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत कर रही है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। मेरे सुर मेरा तुम्हारा फिल्मी दुकानों के इस प्रोग्राम के आगाज में सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया हुआ ये दुकाना।

आमने सामने फिल्म का दुकान आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नकमनिगार थे आनंद बख्शी, मौसीकी कल्याण जी आनंद जी की थी। और ये सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में बहू बेगम फिल्म का ये दुगाना।

0: छापा मिलने के बाद अंग्रेज अफराध के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार करके दो दिनों के पूर्व दिल्ली का निशाना बना दिया। इस पर मुफ्ती सदरुद्दीन आजरदा ने अपना ये मारूफ से कहा कि क्यों कर आजरदा निकल जाए न सौदाई हो, क्यों कर आजरदा निकल जाए न सौदाई हो, कत्ल इस तरह से दो जुर्म जो कहवाई हो। सौदाई और उनका अदबी काम आज भी सरकार की इलमी व अदबी फतूहत की बड़े दरियाफ्त के लिए कोई भी हैसियत रखते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे तारीख साज प्रोग्राम, मौजूदा मौलवी इमाम बख्श सहबाई तेरी डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। प्रोग्राम जारी है मिले सुर मेरा तुम्हारा। अगली पेशकश फर्ज फिल्म का नगमा मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ। नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

नई रोशनी फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में, मौसीकी थी रवि की। और जब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में नाइट इन लंदन फिल्म का ये नगमा।

मेक्सिको ने कोरिया को 1-0 से हराया जबकि कनाडा ने कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि

है जितनी की तजारत है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की इख्तरा और मौकों को तकवियत मिलेगी। वजीर आजम ने कहा कि भारत के सफर में एक अहम दौर है जहां उमंगें नई बुलंदियों पर पहुंच रही हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एनियां में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे से पुर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाजह था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअसर साबित हो सकती है कि जब यह सब की शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जबकि उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन बरसों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। इस सफर में फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजो मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम मोदी का खैर मकदम किया। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के फ्रांस के दौरे के अख्तताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है। पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवा टेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरकर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबे में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का ऐलान किया। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल में पाकिस्तान पर सख्त नुक्ताचीनी की है और दरियाए सिंध से मुतालिक आबी मुआहिदे को फरसूदा और मौजूदा हकाइक के लिए नामुनासिब करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल के 62वें इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन की अव्वल सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कहा कि एक ऐसा मुल्क जो अपनी पॉलिसी के हिस्से के तौर पर दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी फैलाता है वो खैर सगाली और दोस्ती पर मुनासिर ताउन की मुराद का मुतालबा कर रहा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के इल्जाम और पाकिस्तान और इस्लामी ताउन की तंजीम OIC की जानिब से जम्मू कश्मीर का तस्करा किए जाने को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया है और जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा था, अटूट हिस्सा है और रहेगा। अक्वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक काउंसिल के 62वें इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन की अव्वल सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान पर अपने दाखिली चैलेंजों से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगंडे का इस्तेमाल करने और दहशतगर्दी के लिए मदद जारी रखने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वाहिद मामला जो तस्फिया तलब है वो भारतीय इलाकों पर पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे और इन इलाकों को वापस करने का है। मोहतरमा अनुपमा सिंह ने मजीद इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अपने कब्जे वाले इलाके के हालात वाकयात से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है जहां हालिया हफ्तों में एहतजाज, मुजाहरों और इंतशार में तेजी आई है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में रावलकोट के सानहे सैकड़ों आम शहरियों की हलाकत और वहशियाना कार्रवाई एक ऐसे निजाम का नतीजा है जो जबरन कब्जे और जाबराना कार्रवाई के जरिए बरकरार रखे गए ढांचे पर बनाया गया है। मोहतरमा अनुपमा सिंह ने कहा कि कई दहाइयों से जारी फौज की जानिब से जमीन हड़पने के वाकयात, आबादी की नौवियत को दानिस्ता तौर पर बदलने और लोगों को बुनियादी आजादी से महरूम रखने के वाकयात के तनाजुर में हालात इस मरहले पर पहुंच गए हैं कि जहां रोटी, बिजली, हुकूक और अजमत का बुनियादी मुतालबा करने पर भी लोगों को गोलियों और वहशियाना कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। भारत ने यह बात दोहराई कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावों से हकीकत नहीं बदली जा सकती। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

दी गई हैं। सोशल मीडिया पर एक बयान में अमरीका की मरकजी कमान ने यह जानकारी दी है। इस ऐलान से एक दिन कबल सदर ट्रंप ने एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए थे, जिसका मकसद ईरान के साथ तकरीबन चार महीने से जारी लड़ाई खत्म करना और खित्ते में कशीदगी दूर करना है। अगरचे नाकाबंदी हटा ली गई है, फिर भी अमरीकी बहरिया का साजो सामान समझौते पर अमल दरामद की निगरानी के लिए नजदीक के खित्ते में मौजूद रहेगा। उम्मीद है कि इस इकदाम से ईरान की आबी

अदाकारी और स्टाइल ने दर्शकों का दिल बहुत ही जीता था। फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाया मशहूर अभिनेता महमूद जी ने। इसके अलावा दमदार कलाकार थे प्राण, ललिता पवार और मदनपुरी। लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और मधुर गीत।

दोस्तों, फिल्म का संगीत तैयार किया था मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर और जयकिशन ने, जबकि गीतों को अपनी आवाज से सजाया था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। साथियों, लव इन टोक्यो का संगीत इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हर गीत में रोमांस और मधुरता का अनोखा संगम दिखाई देता था। फिल्म के गीतों ने 1966 में लोकप्रियता के एक नया रिकॉर्ड बनाया और आज भी रेडियो पर उतने ही पसंद किए जाते हैं इस फिल्म के गीत। तो आइए एक बार फिर से सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, लव इन टोक्यो एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीय सिनेमा को जापान की खूबसूरती से रूबरू

0: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, टीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और अब प्रस्तुत होंगे समाचार।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सिकल सेल की बीमारी को 2047 के मुकर्रा निशाने से पहले ही खत्म करने की राह पर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोबारा कराए जाने वाले नीट यूजी 2026 इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर वर्कर्स की तरफ से लगाई गई आर्मी बंदिश को बरकरार रखा है। भारत ने अक्वामी मुत्तहिदा की इंसानी हकूक कौंसिल में वादी सिंध माहदे को फरसूदा बताया है। उसने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान की मजम्मत भी की है और मेक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप का 32वां राउंड क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया है। फ्रांस के अपने दौरे में उन्होंने एवियों में G7 समिट में शिरकत की। उन्होंने G7 समिट से अलग अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक वर्ज, बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दीगर शख्सियतों से मुलाकात की। इससे पहले जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के शहर नीस में भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह किया, जिसमें भारत, फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा स्टार्टअप्स, इख्तिराकार और असासाकार एकजा हुए। स्लोवाकिया के अपने दौरे में जनाब मोदी ने जमहूरिया स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी से ब्रातिस्लावा में सदारती महल में मुलाकात की। एक खसूसी तकरीब में स्लोवाकिया के सदर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आलातरीन सरकारी एजाज से नवाजा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीब से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। मेहनत और रोजगार महकमे के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजमीन को बाजाबता अफराद कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इत्मीनान जाहिर किया है कि भारत से सिकल सेल की बीमारी 2047 के कौमी निशाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने खून की इस जीनियाती बीमारी के बारे में खासतौर पर कबायली बिरादरियों में बेदारी लाने की मजबूत कोशिशों के लिए कहा। सदर जमहूरिया आज सिकल सेल के बारे में बेदारी लाने के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में एक रियासती सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। इस मौके पर गवर्नर मंगूभाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने सभी रियासती सरकारों और अफसरान से अपील की कि वो इस बीमारी को मामूली न समझें, क्योंकि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है।
1: पूरा हो गया। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के

श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त

वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ

0: also, someone said, "Tell me, put on your hand." Now that is what they later. That is what the ayatollah said.
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के दो दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव

0: से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो और कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमें क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। एसटीपीआई पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटीपीआई को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी एसटीपीआई जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इको सिस्टम, एआई के माध्यम से सर्विसेज बनाना, सबके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कलिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त समय हुआ है दोपहर के 2:30 और ये हुए पूरे 20 सेकेंड। और ये समय है किस चीज का? जी हाँ, ये समय है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। और आज का ये जो सफर है ये आप तय करेंगे आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। और अब हम करते हैं इस कार्यक्रम का आगाज। तो आज जो कलाकार हमारे आज के हैं उनके बारे में मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि वो बीते दौर के एक बेहद सफल तो नहीं बोलूंगी लेकिन बेहद अच्छे संगीतकार रहे हैं और उनकी संगीत रचना ने बहुत अलग अलग तरह की धुनों को हमारे बीच में लेकर आए हैं उनकी वो सारी धुनें। और कहते हैं कि उनकी उतनी शोहरत उन्हें नहीं मिल पाई लेकिन जो भी उन्होंने धुनें बनाई वो अपने आप में एक बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई। तो देखिए आज हम जिनकी बात कर रहे हैं उनकी बस इतना कहूंगी कि हिंदी फिल्म संगीत के वे एक ऐसे साधक हैं जिन्होंने कभी नाम और शोहरत का शोर नहीं मचाया लेकिन अपनी धुनों से संगीत प्रेमियों के दिलों में एक खास जगह बना ली। सन 1929 में इनका जन्म कहां हुआ था? गोवा में। और इनका नाम आपको बता दूं, दत्ताराम वाडकर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार दत्ताराम की जो मूलतः एक कुशल तबला वादक थे। संगीत के प्रति इनकी लगन न उन्हें मुंबई ले आई और आगे चलकर न वो शंकर जयकिशन के साथ ही बहुत अलग अलग संगीतकारों के असिस्टेंट के तौर पर भी उन्होंने काम किया। और उन्होंने नौशाद, सी रामचंद्र, एसी बर्मन, रोशन और इस तरह के अनेक दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। और लेकिन अभी जो मैं आपके लिए उनका पहला गाना लेकर आई हूं वो फिल्म का नाम है दिल्ली दूर नहीं। और आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना। और वैसे मुझे बता सकते हैं कि आप इनकी कौन कौन से गानों को पसंद करते हैं और आपके जहन में कौन से गाने आ रहे हैं? तो आइए सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का ये पहला गाना।

जी आप सुन रहे थे फिल्म नशीली हवा का ये गाना और हम बात कर रहे हैं संगीतकार दत्ताराम की। और देखिए हमारे साथ हमारी कौन कौन सी मित्र जुड़ चुकी हैं, तो आइए जरा इधर भी एक नजर मारते हैं। ये है, हाँ देखिए ये है दत्ताराम वाडकर जी के बारे में जानकारी और ये चमन हमारा अपना है। ये गीत बहुत लोकप्रिय है, हम लोगों को बहुत पसंद आया ये गाना, शुक्रिया। ये कौन लिख रहे हैं, लिख रहे हैं चिरमिरी कुलारिया कुरासिया कालरी से, इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद।

0: के शान बनूंगा, देश का ऊंचा नाम करूंगा।
1: शाबाश, मीठे मीठे बातों से बचना जरा।

करण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल, राजदीप सिंह, हाँ आप लोगों की मेल पर शुमार कर चुकी हूँ साहब। तो बस हमारे बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हम बहुत बहुत उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब हम बात करते हैं दत्ता राम जी की एक ऐसी सिग्नेचर अदा की जिसको कहा जाता था दत्ता ठेका। जी हाँ, दत्ता ठेका, मतलब उनके संगीत में ना कुछ ऐसी ताल होती थी, कुछ इस तरह की बात होती थी कि उसके लिए उनका नाम ही मशहूर हो गया था कि ये ठेका जो लग रहा है इस गाने में, जी जो हमें लय ताल नजर आ रही है, मतलब दत्ता राम जी का ही संगीत है। जी हाँ, इतना मशहूर हुआ था। तो लय और ताल पर उनकी अद्भुत पकड़ थी, संगीत प्रेमियों के बीच उनका मशहूर दत्ता ठेका आज भी याद किया जाता है। तबले की विशिष्ट शैली उनकी पहचान बन गई थी, बाद में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में जब उन्होंने अपनी पहचान बनाई तो इस दत्ता ठेका ने उनको एक अलग ही विशिष्ट पहचान दिलाई, जिनमें सादगी भी थी, मिठास भी था और भारतीय मिट्टी की महक भी। तो आइए, एक ऐसी फिल्म का मैं गाना आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें आपको दत्ता ठेका बकायदा नजर आएगा। फिल्म है परवरिश और गाना कौन सा है, आइए सुनते हैं।

दोस्तों, आपको पहले भी तो बताया था कि दत्ता राम जी ने बहुत सारे संगीतकारों को बतौर सहायक उनके साथ काम किया है, उसमें से एक थे सुनील चौधरी जी। तो आइए सुनते हैं फिल्म मधुमती का ये गाना।

में फिल्म है अजी बस शुक्रिया और इस फिल्म में संगीतकार रोशन का संगीत था और इनके असिस्टेंट थे हमारे आज के कलाकार जया कौर तत्ताराम। और ये था हमारा आज का कार्यक्रम जो हमने पूरी तरह समर्पित किया था हमारे आज के कलाकार तत्ताराम जी को। और आपने ये सफर तय किया मेरे साथ यानी आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। और बस आपको इतना बता दें कि पुराने गीतों के प्रेमियों के लिए दत्ताराम वाडकर का नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाएगा। 3 जून 2007 को वे इस दुनिया से विदा हो गए लेकिन

सामीन आदाब, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सपहर के 3 बजे ही हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप हबीब रहमान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सिकल सेल की बीमारी को 2047 के मुकर्रर निशाने से पहले ही खत्म करने की राह पर है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में वादी सिंध मुआहदे को फरसूदा बताया है। उसने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान की मजम्मत भी की है और मैक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप के 32वें राउंड को क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया है। फ्रांस के अपने दौरे में उन्होंने एविनॉन में G7 समिट में शिरकत की। उन्होंने G7 समिट से अलग अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, बरतानिया के वजीर आजम कीरी स्टारमर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दीगर शख्सियतों से मुलाकात की। इससे पहले जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमानुअल मैखों ने फ्रांस के शहर नीस में भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह किया, जिसमें भारत, फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा, स्टार्टअप्स, इख्तराकार और असासाकार यकजा हुए। स्लोवाकिया के अपने दौरे में जनाब मोदी ने जमहूरिया स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी से ब्रातिस्लावा में सदारती महल में मुलाकात की। एक खसूसी तकरीब में स्लोवाकिया के सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रूपये मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीब से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। मेहनत और रोजगार महकमे के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाज़ाब्ता अफरादी क़ुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% ख़वातीन हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एतमाद जाहिर किया है कि भारत से सिकल सेल की बीमारी 2047 के कौमी निशाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने खून की इस जैनियाती बीमारी के बारे में खास तौर पर कबायली बिरादरियों में बेदारी लाने की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। सदर जमहूरिया आज सिकल सेल के बारे में बेदारी लाने के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में एक रियासती सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। इस मौके पर गवर्नर मंगू भाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने सभी रियासती सरकारों और अफसरान से अपील की कि वो इस बीमारी को मामूली न समझें, क्योंकि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। सदर जमहूरिया ने रियासती सरकार की तारीफ की कि उसने सिकल सेल,

0: उसने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान की मजम्मत भी की है और मैक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप के 32वें राउंड में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: में भी 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्रेडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे खिदमत फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद, तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब।

सामने सुन रहे मेरे साथी, आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मैं आप सुन रहे हैं मीडियम में विकतारी 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फिरडेश पर। पेश खिदमत है मारूफ अदाकारा नाजरा से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी मरियम काजमी ने।

0: नादराबा आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत हम खुशामदीद कहेंगे और हम आपसे गुफ्तगू करेंगे उस फिल्म से शुरू करेंगे जो आपकी पहली फिल्म थी आम।
1: हाँ क्या याद दिला दिया आपने मुझे, मैं तो भूल भी गई हूँ बहुत सारी बातें। और शुरू भी आपने एक ऐसे गाने से किया कि बिल्कुल ऐसा लगता है थोड़ी देर में मैं रो पड़ूंगी। जो भी मेरी इस वक्त आवाज सुन रहे हैं उनको ये इस बात का मैं एहसास दिला दूं कि जब ये गाना गाया जा रहा था यूसुफ साहब लिप मूवमेंट दे रहे थे उस वक्त मुझे बिल्कुल बदतमीज थी, ना करीना था, ना कुछ मालूम था कि ये सब मेरे मुझे एडमायर करने की बातें कर रहे हैं। बहुत बेवकूफ थी मैं, इनोसेंट बहुत थी, भोली थी। और फिल्मी दुनिया में आने के बाद बहुत सालों तक ऐसी बेवकूफ रही मैं। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि वो सिर्फ मेरी पहली पिक्चर नहीं थी, मेरे लिए ऐसे था जैसे जिंदगी में पहला कदम एक इंसान रख रहा है। मुझे सब कुछ और बहुत कुछ एक साथ सीखना पड़ा। और तारीफ तो उस शख्स को जाना चाहिए जिनका नाम महबूब खान था, है और रहेगा इंशाल्लाह। माय गॉड व्हाट अ मैन। मैं सिर्फ एक ही वाकया मेरे सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि वो कितना बड़ा आदमी था, इससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पिक्चर खत्म होने लगी थी थोड़ा सा ही काम बाकी था और उन्होंने मुझे बहुत ही खुफिया स्टाइल से रखा हुआ था, बिल्कुल गाड़ी में घर जाना और गाड़ी में ही आना और कोई देखे नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा मालूम नहीं मेरे पिक्चर को कितने साल लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, 16 mm में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, फिर इसको ग्रो अप करना है, कहीं कोई किसी ने अगर आपको देख लिया और जाके बोल दिया अरे वो लड़की में कुछ नहीं रखा है, कैसे महबूब साहब ने ले लिया है वो तो, और वो भी नरगिस जी की जगह, तो उन्होंने बहुत
0: पर्दे में
1: रखा मुझे। और जब पिक्चर खत्म होने पे आई तो मैंने कहा महबूब साहब मैं कुछ नर्वस हो रही हूँ और प्रेस वालों ने अभी तक ना मुझे देखा है ना भाला है और मुझे खौफ इस बात का है कि अगर उन्होंने किसी जगह मुझे पकड़ के ये पूछ लिया कि एक्टिंग क्या है तो मैं क्या बोलूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, आप जो मुझे बताते जा रहे हैं बताते जा रहे थे या जो कुछ भी आप कहते थे या कहते हैं वो मैं करती हूँ। मैंने कहा महबूब साहब अगर उन्होंने पूछा कि एक्टिंग क्या है तो मैं क्या बोलूं, तो उन्होंने माथा पटका अपना धड़ से और कहने लगे पहले तो मुझे ये तो मालूम होने दो कि डायरेक्शन क्या है। खुदा की कसम इतना अजीम, इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा बैनर महबूब खान, और वो ये कह रहे हैं कि मेरी माँ पहले मुझे ये तो मालूम होने दो कि डायरेक्शन क्या है। मैं उनकी तरफ देखती रही, मैंने कहा ये महबूब खान बोल रहे हैं ऐसे, मैंने कहा ह्यूमिलिटी की इंतहा हो गई।
0: यकीनन
1: फिर थोड़ी देर के बाद ऐसे दूर देखते देखते देखते अरे उन्होंने कहा अरे हाँ ये एक चीज मैं तुमसे कह सकता हूँ और वो ये है एक्टिंग के बारे में कि ये तो समंदर है, इसमें जितना जाओगे उतना पाओगे, बस इतना ही कह दिया।

0: लेकिन उस जमाने में आप इतनी सुपरस्टार बन गई थी, उसके बाद की फिल्मों के बारे में बताइए। फिर आपने, आपसे गलती कहा हुई कि आपने कैसी फिल्में साइन करना शुरू कर दिया?
1: मेरी गलती नहीं थी इतनी, गलतियां तो बहुत थी। मैंने, मुझे प्यार हो गया था एक शायर से जो बाद में पाकिस्तान चले गए, वहां अब नहीं है वो, नक्शत साहब से। और बहुत दिनों के बाद इस बात का एहसास मुझे हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में किसी भी कलाकार को, खास करके जो फिल्म में काम करती है या जो स्टेज पर काम करती है, नॉट सो मच स्टेज, जब औरत शादी कर लेती है ना फिल्मों में, चाहे कितनी भी अजीम क्यों ना हो, वो भाभी बन जाती है ऑडियंस की आंखों में। हमारे जो ऑडियंसेस हैं वो बहुत जहाँ

0: वो ग्लैमर चला जाता है। आप किसी भी आर्टिस्ट को आजमा लीजिए, देख लीजिए।
1: निहान के बाद आपने कौन सी फिल्म की?
0: नगमा।
1: नगमा
0: जो इतनी चली इतनी चली इतनी चली के पिक्चर हाउस में से पिक्चर को इसलिए उतारना पड़ा कि किसी और की बुकिंग थी, जिसमें वो गाने ने तो तबाही मचाई। बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करा रहा है कि जिस जालिम ने तड़पाया उसी पर मुझको प्यार आया।

0: वो बहुत चली, वो नक्षत्र साहब की पुलिस की हुई थी, डायरेक्ट की हुई थी, और पता नहीं कैसे वो पिक्चर चली। हालांकि हाँ, उनकी मेरी शादी को हम लोगों ने बहुत दिनों तक खुफिया रखा, बहुत पर्दा करवाते थे मुझसे। ये समझ में नहीं आया मुझे, घर पे तो सख्त पर्दा करवाते थे और स्क्रीन के लिए मुझे अजीब अजीब कॉस्ट्यूम भी पहनाते थे। मैं वो बात, मरियम जी मैं वो बात दोहराना नहीं चाहती हूँ, मेरे को हाल आ जाएगा, मैं रो पड़ूंगी और ये प्रोग्राम खत्म, खराब हो जाएगा। प्लीज
1: ये बताइए, श्री 420 फिल्म आपने साइन की राज कपूर जी की, वो नेगेटिव

एस्टेब्लिश्ड हीरोइन है, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल नेगेटिव रोल है, ये वैम्प का रोल है और मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता हूँ और मैं पैसे भी बहुत कम दूंगा। मैंने कहा मैं स्क्रिप्ट सुनना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपके साथ काम करना चाहती और ये नेगेटिव रोल है, मुझे मालूम है इसमें सिगरेट भी पीना पड़ेगा, मालूम भी क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी वर्सेटिलिटी प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं ये भी कर सकती हूँ। वो मेरी गलती थी क्योंकि उसको मैंने इतना अच्छा निभाया, मैंने क्या निभाया, उस आदमी ने करवाया मुझसे, मैं कुछ भी नहीं करती थी उसमें, सिर्फ नकल करती थी उनकी। वो मुझे बताते थे कि वो और इतना लंबा वो मेरे हाथ में देती होल्डर दे दिया, उसको कैसे पकड़ना है, यू कैसे करना और यू कैसे करना और कैसे भूलना और भवे कैसे उठानी है और डांस कैसे करना है। ओ, ओ, ओ, मैंने कुछ नहीं किया उसमें, मैं सिर्फ राज साहब की नकल करती थी।

0: नागरी जी, फिर उसके बाद से आपका कुछ ये फिल्म इंडस्ट्री का है कि ठप्पा लग जाता है, डैम का ठप्पा लग गया।
1: बिल्कुल, मैं हल्फिया कहती हूँ, शी 420 के बाद 1.5 साल मैंने कोई पिक्चर साइड नहीं की। ये नहीं है कि ऑफर्स नहीं आते थे, दिन में 3-4 ऑफर्स आते थे और हर आदमी ये कहता था कि आपको वही कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको वही सिगरेट होल्डर पकड़ना पड़ेगा, वही उसी स्टाइल में आपको सिगरेट पीनी पड़ेगी। और मैं माथे को मारा करती थी, मैं ये कहती थी मैंने क्या गलती की,

0: अपनी पॉकेट मार फिल्म की, उसके बाद से फिर गैप आ गया आपके करियर में।
1: दरअसल क्या हुआ, मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे एमेबिया की शिकायत हुई, एमेबिक डिसेंट्री की, और ये बहुत आम है बम्बई में। एक छोटी सी बच्ची है यहाँ हमारे बगल में रहती है 15 साल की, उसको हो गया है। मैंने कहा शुक्र करो कि अभी तक वो एमेबिया जो मेरा बाप लगता है वो अभी आपके लिवर तक

0: वो कोई और औरत मेरी जगह होती तो शायद अब तक 400 फिल्मों में करती। मैंने इतनी फिल्मों में काम नहीं किया लेकिन आई हैव डन वेरी ग्रेट फिल्म्स, आई हैव डन वेरी गुड फिल्म्स, मीनिंगफुल फिल्म्स, एंड आई हैव गिवन पीपल से दैट आई एम अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड आई हैव ऑलवेज ट्राइड वेरी हार्ड टू वर्क वेरी डिलीजेंटली एंड By the grace of God, Alhamdulillah, Ya Rabbil Alameen. Look, I'm not a star. I'm an artist.
1: ये तो difference है.
0: हाँ.
1: एक होता है star, एक होता है artist.
0: हाँ. मगर वो star जो है, वो कायम नहीं रहता है. जब तक उसकी जवानी होती है, उसका glamour होता है, वहाँ तक वो last करता है. मैं उस category में ना थी, ना हूँ, ना कभी होंगी मैं.
1: नादरा भाई ये बताइए, कभी आपको पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ?
0: हाँ माशाल्लाह, और बड़ी खुशी हुई मैं, हालांकि सिर्फ 5 दिन बाहर रही और कराची में ही रही, मुझे तो मौका भी नहीं मिला और न जरूरत महसूस की मैंने लाहौर देखने की है ये वो वगैरह देखने की। मैं इत्तेफाक से एक ऐसे घर में जाके रही जहाँ बहुत सख्त पर्दा करने वाले लोग थे और मुझे इतना अच्छा लगा उनके साथ रहने में। मुझे ये पर्दे में रहना, इसमें एक नफासत जो है, इसमें जो शर्म है, इसमें निस्वानियत है और इसमें औरत इतनी खूबसूरत लगती है जब शर्माती है, इतनी हसीन लगती है, मुझे वो बेपर्दा औरतें हर की सच्ची नहीं लगती है। और मैं बाखुदा कहते कि जब मुझे कोई कॉस्ट्यूम ऐसा कोई आदमी दे देता है जिसमें मुझे ऐसा लगता है मैं अधनंगी खड़ी हूँ, मुझे बा खुदा मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे कपड़े फाड़े। एक इतनी खूबसूरत बात है ये। आप लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि सिर्फ ये बुर्का पहनना और ये सब कुछ, ये सिर्फ एक पर्दा नहीं है, एक आंख में जो एक पर्दा और आंख की जो शर्म है जो खुद ब खुद आ जाती है और जो जबरदस्ती आदमी नहीं ला सकता है, उससे ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं है।
1: ये बताइए कि जब आप वहां के लोगों से मिली, जितने दिन भी रही, तो आपको कैसा लगा?
0: मैं बाहर निकली नहीं, वो 5 दिन जो मैं वहां रही, एक तो तीमारदारी उन्होंने मेरी इतनी की और इसलिए नहीं की कि मैं नादरा थी,

तो मैं वहां रही, एक तो तीमारदारी उन्होंने मेरी इतनी की, और इसलिए नहीं की कि मैं नादरा थी। ये हमारी है, ये हमारे से मिलने आई है, ये हमारे पे मेहरबानी कर रही है। ओ मेरे नाक में दम कर दिया उन्होंने प्यार कर करके। मैं वहां से बिगड़

0: जगदीश के साथ ही आज का आखिरी मौसीकी का प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 पर चाहते हैं अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कोनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रूपये मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत सिकल सेल की बीमारी को 2047 के मुकर्रर निशाने से पहले ही खत्म करने की राह पर है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल में वादी सिंध मुआहदे को फरसूदा बताया है। उसने दहशतगर्दी को पनाह देने पर पाकिस्तान की मजम्मत भी की है। और मैक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर फीफा आलमी कप के 32वें राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और स्लोवाकिया का अपना 5 रोजा

दौरा मुकम्मल कर लिया है। फ्रांस के अपने दौरे में उन्होंने एवियान में G7 समिट में शिरकत की। उन्होंने G7 समिट से अलग अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, बरतानिया के वजीर आजम केयर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और दीगर शख्सियतों से मुलाकात की। इससे पहले जनाब मोदी और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के शहर नीस में भारत इनोवेट्स तकरीब का इफ्तिताह किया, जिसमें भारत, फ्रांस और दीगर मुल्कों के सरकर्दा स्टार्टअप, इख्तराकार और असासाकार यकजा हुए। स्लोवाकिया के अपने दौरे में जनाब मोदी ने जमहूरिया स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी से ब्रातिस्लावा में सदारती महल में मुलाकात की। एक खसूसी तकरीब में स्लोवाकिया के सदर ने वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रूपये मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीब से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। मेहनत और रोजगार महकमे के वजीर डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाब्ता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। सभी जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने एतमाद जाहिर किया है कि भारत से सिकल सेल की बीमारी 2047 के कौमी निशाने से पहले ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने खून की इस जीनियाती बीमारी के बारे में खासतौर पर कबायली बरादरियों में बेदारी लाने की मरबूत कोशिशों के लिए कहा। सभी जमहूरिया आज सिकल सेल के बारे में बेदारी लाने के दिन के मौके पर मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में एक रियासती सतह के प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। इस मौके पर गवर्नर मंगू भाई पटेल और वजीर आला मोहन यादव भी मौजूद थे। सभी जमहूरिया ने सभी रियासती सरकारों और अफसरान से अपील की कि वो इस बीमारी को मामूली न समझें, क्योंकि ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। सभी जमहूरिया ने रियासती सरकार की तारीफ की कि उसने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के कौमी मिशन के तहत कामयाबियां हासिल की। सभी जमहूरिया ने प्रोग्राम के दौरान एक खसूसी नुमाइश भी देखी, जो 2047 के इस मिशन के तहत कायम की गई है। नुमाइश में सिकल सेल की बीमारी की रोकथाम, तशखीस और इलाज से मुतालिक मुख्तलिफ इकदाम को नुमाया किया गया है। इस नुमाइश में कबायली इलाकों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के काम को भी उजागर किया गया। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने कौमी अहलियत व दाखिला अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक सरकारी व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है। यह इम्तिहान इतवार को होना है। एनटीए ने वजाहत की है कि इस सरकारी व्हाट्सएप पर अपने पैगाम इसके तस्दीक शुदा अकाउंट नंबर +9178289802 87 पर भेजे जा सकते हैं। एजेंसी ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो एनटीए की तरफ से भेजे गए किसी भी मैसेज पर भरोसा करने से पहले ब्लू वेरिफिकेशन टिक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम की तस्दीक कर लें। एजेंसी ने यह वजाहत भी की है कि जिन उम्मीदवारों ने 21 जून को दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं, उन्हें ये कार्ड डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एजेंसी ने कहा है कि एसएमएस, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेजेस पहले उन तलबा को भेजे जा रहे हैं जिन्होंने अपने नए एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। एजेंसी ने यह भी कहा है कि 3 मई के इम्तिहान के लिए जारी किए गए एडमिट कार्ड दोबारा कराए जाने वाले इस इम्तिहान के लिए मजाज नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से उम्मीदवारों को उनके पसंदीदा शहरों में नए मरकज अलॉट किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2026 के 21 जून को कराए जाने वाले दोबारा इम्तिहान से पहले टेलीग्राम मैसेज प्लेटफॉर्म तक रसाई पर आर्जी तौर पर बंदिश लगाने के मरकज के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि यह कदम नामुनासिब नहीं है और कानून के मुताबिक है। जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि हुकूमत ने इतलाती टेक्नोलॉजी कानून की दफा 69A पर अमल करते हुए यह कदम उठाया है और बंदिश के इस हुक्म की भरपूर वजूहात मौजूद हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है।
भारत में अकवामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल के 62वें इजलास में जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस जलसे में इजहार ख्याल करते हुए अकवामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और अलग न होने वाला हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया कि वो अपने अंदरूनी मुल्क चैलेंजों और दहशतगर्दी के तई अपने लगातार हिमायत से तवज्जो हटाने के अपने प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने कहा कि जो मामला हल नहीं हुआ है वो सिर्फ भारतीय इलाकों पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा और इन इलाकों से पाकिस्तानी फौजों की वापसी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का जिक्र करते हुए भारत ने इल्जाम आयद किया कि खित्ते में बढ़ते हुए मुजाहिरों और बेचैनी से वसी पैमाने पर फैलती हुई बेचैनी जाहिर होती है, जिसमें बुनियादी हकूक को लगातार दबाया जा रहा है और उनसे इनकार किया जा रहा है। वादी सिंध के समझौते के बारे में भारत ने कहा कि 1960 में जिस मायदे पर दस्तखत किए गए थे वो अब फरसूदा हो गया है और मौजूदा हकाइक के मुताबिक नहीं रहा है। भारत ने मजीद कहा कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करता है खैर सगाली और दोस्ती पर मबनी तआवुन के फायदों की उम्मीद नहीं कर सकता। भारत का एलएनजी टैंकर दिशा दिफाई एतबार से अहम आबनाए हुरमुज को पार करके गुजरात में दहेज बंदरगाह पहुंच गया है। इस टैंकर में कतर के रास लफान टर्मिनल से रकीक बनाई हुई 62,370 मैट्रिक टन कुदरती गैस लाई गई है। उम्मीद है कि इससे एलएनजी की दस्तियाबी में इजाफा होगा। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश करने वाले एक फर्जी वीडियो से इनकार किया है, जिसमें मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह को एक सरमायाकारी प्लेटफार्म की तौसीक करते हुए दिखाया गया है। डिजिटल तरीके से तैयार किए गए इस वीडियो में दावा किया गया है कि अगर एक बार 22,000 रूपये की रकम जमा कर दी जाए तो इससे 80,000 रूपये रोजाना की आमदनी हासिल की जा सकती है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के हकायक मालूम करने वाले यूनिट ने वजाहत की है कि यह वीडियो फर्जी है और मचनूई जहानत एआई से तैयार किया गया है। फीफा आलमी कप में आज सुबह मैक्सिको ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इस तरह मैक्सिको की टीम नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। मैक्सिको के मिडफील्डर लुइस रोमो ने खेल के 50वें मिनट में वाहिद गोल किया। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे और आखिरी एक रोजा बैन अलावा मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। यह मुकाबला कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम

0: ऑल इंडिया रेडियो दाल सिलाई की प्रोग्राम है। हरजीत कौर हाजर है तुहाडी सेवा विच सिलाई की प्रोग्राम घन के। उम्मीद करें तुसा सारा ठीक ठाक हो सो। तहला शुरू करें प्रोग्राम। आज मैं तुहाको सब महला एक वार्ता सुनने दी पई हां। साडे धरोहर लाल किला दिल्ली, वार्ताकार हैं सुदर्शन सतीजा।
1: भूमि तो भरा आपको सबको सुदर्शन सतीजा दी नमस्ते। भारत का लाल किला सिर्फ दिल्ली का ही नहीं एक पूरे भारत की शान है, ना ही एक पूरे मुल्क विच एक मनी हुई इमारत है। वैसे तो इनका असली नाम किला ए मुबारक है, लेकिन आजकल ही को सारे लाल किले के नाम तो जानते हैं। मुगल शासन के शाही परिवार के लोग हिको मुबारक किला भी आखेंदे हैं। यह लाल किला इतिहास की बड़ी बड़ी घटनावां का गवाह है, क्योंकि हमें बहुत कुछ बैठे। दिल्ली का लाल किला पुराने दिल्ली के चांदनी चौक के सामने है। आज ये भोर भर काले इलाके नाल घिरा हुआ शांत खड़ोते। सन 1627 विच जदन मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी ते बैठे हन, तां हुण टाइम मुगल साम्राज्य दी राजधानी आगरा है। लेकिन बादशाह को आगरा दी गर्मी रास ना आई, तां उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनावन दी सोची। सवाल पैदा था कि दिल्ली में किला किथे बनाया वने। बहुत सोच विचार दे बाद दिल्ली दे ताल कटोरा ते रायसेना दी पहाड़ियों ते किला बनावन दी सोचे। लेकिन बादशाह दे दू नामी कारीगर उस्ताद हमीद ते उस्ताद अहमद ने सुरक्षा को देखते हुए जमुना नदी दे किनारे किले को बनावन दी सलाह दिती, जो बादशाह को बहुत पसंद आई। तब वो आर्किटेक्ट उस्ताद हामिद तो उस्ताद आसिफ ने हिंदा नक्शा बना के इनको असली जामा पवा देता। बादशाह को लाल ते चिट्टा रंग बहुत पसंद आई, नाल ही वड्डी वड्डी इमारत बनावन का भी शौक आई। 13 मई सन 1638 विच लाल बलवा पत्थर नाल किले को बनावन का काम शुरू कर दिता। एक किला सलामगढ़ दे किले दे नाल ही बनन लग पया। 10 साल तक कारीगर ते शिल्पकार दी कई मेहनत दे बाद लाल किले दी आलिशान इमारत बन के तैयार की गई। हिंदे सामने एक शहर बसाया गया, जिना नाम शाहजहानाबाद रखा गया, जेको असे आज दिल्ली दे नाम तो जानते हैं। ये आलिशान किले दे तैयार थेवन दे टाइम बादशाह काबू विच हन। खबर मिलते ही बादशाह उत्तर चल पे कि जोशियों ते मजूमियों दे कड़े हुए मुहूर्त ते जमुना दे सामने बने लकड़ी दे पुल तो ठंडे हुए दरियाई दरवाजे ते किले विच पहुंच गए। हुणा दे स्वागत वास्ते किले विच एक बहुत वड्डा स्वागत समारोह किया गया। इस समारोह दे शानो शौकत ते सजावट देखने वाली है। सुरक्षा को देखते हुए कि किले ते कोई आक्रमणकारी चढ़ाई न कर सके, झंडा निर्माण किया गया। यही करके जमुना नदी के सामने किले की दीवार की ऊंचाई 60 फुट ते बाकी 3 पासियां दी दीवार 110 फुट उच्ची रखी गई। किले दे एक पासे ते जमुना नदी हाई है ते बाकी 3 पासे चौड़ी खंडक बनाई गई। खंडक विच पानी भरा होया।

0: हेलो
1: जी, मैं बैंक तो बोल रहे हैं।
0: हाँ जी,
1: अपना आधार नंबर दसो।
0: आधार नंबर ऐसा का याद नहीं जी नंबर।
1: तो अपना आधार नंबर भी याद नहीं?
0: एड्डा वड्डा नंबर याद करना सौखा है जी भला।
1: चलो तुसी एटीएम कोड दस दियो।
0: एटीएम
1: मैडम कुछ तो पता होना चाहिए। ये नंबर ना दसे जानते तो खाता बंद हो जाएगा, तो बैलेंस जीरो हो जाएगा।
0: बैलेंस जीरो हो जू? ठहर जाओ जी, तुसी दोनों चीजें ना जी हम देख के पता लगू। ठहर के फोन कर देंगे जी। रब्बा एक ही नवा स्यापा खड़ा हो गया हूं, पता नहीं किन्ना चिर लगू हूं दोनों चीजा मिलन ते। लगता आके चल आप गल कर लेंगे हूं। खाता बंद हो जू ते बैलेंस जीरो हो जू।
2: कितने देता नहीं दिता?
0: ना ना दिता ता नहीं हले।
2: बैंक वाले ने आधार कार्ड का नंबर ते एटीएम कोड पूछ के की लेना है? किसे नासरबाज दा फोन हो?
0: हाय हाय,
2: जा फड़ाता फोन देखता नंबर।
0: हेलो,
2: ट्रू कलर।
3: मैं बचा हो गया, करवा बैठी सी झुग्गा चौड़।
0: हाय हाय, शुक्र है रब्बा।
3: थोड़े वर्गे पढ़िया लिखा दा भी सरिया ही पिया।
0: ना दस भला मैनू की पता सी, हुण होर दफ्तर तो भी फोन आई जांदे आ।
3: ओहो, गौर ता करो भी अगला पुछदा की है।
0: गौर ता करिए जे किसे गल दा पता होवे।
3: जे गौर नहीं हुंदी तां फिर झुग्गा चौड़ हो जांदा, खाता हो जांदा घड़िच।
0: हाय हाय, अज तां ना कोई कीता पुन्नी अगे आ गया।
3: अगे तो सावधानी वरते हो,
0: देख लो लोकां दे भा दी तां लोड़ा ही आ गया, हत्था चो खोंदे फिरदे आ।
3: सुरजीत करे, कमाई तां करनी नहीं, ठगे ते लग गए लोग।
0: भला ए किवें पूरा पटू?
3: आराम दी कमाई नाल कदे पूरे नहीं पैंदे हुंदे, ए तां इकदम बंदे नूं लै के डुबदी डुबदी है।
0: बाहर है कोई?
4: सुरेंद्र सिंह जी घरे हो?
3: कौन है? आज आज आज आज आ भी सुखदेव सिंह, अज किधर? की गल है?
4: ओ यार गल काहदी है, अज तक 20,000 दा नुकसान हो गया।
3: क्यों, कहा नुकसान? ओ की गल हो गई?
4: ओ तेरी भरजाई दे खाते चो 20,000 निकल गए।
3: ऐ किवें निकल गए?
4: कढ़ावे किसे नौसरबाज ने।
3: ओहो, ए तां बहुत माड़ा हो गया। कदक दी गल है?
4: घंटे दी गल है। हुण दस की करिए?
3: कापी हैगी तेरे कोल बैंक दी?
4: हैगी है।
3: हुण आपां खाता ब्लॉक करवा दिंदे आ। फोन हेलो।
4: हाँ जी,
3: हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जी।
4: जी
3: जी, मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहा जी। जी मेरे को बलजीत कौर का खाता नंबर है 64678।
4: दोबारा लिखाओ।
3: 64678991010। ठीक है जी।
4: जी,
3: ये खाता ब्लॉक कर दियो जी, इन्हां नाल धोखा हो गया। 20,000 रुपया इन्हां दे खाते चो हुणे निकल गया।
4: ठीक है जी, खाता ब्लॉक कर दिंदे हां।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधान

0: पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता के विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देशवासियों के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए था। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले रक्षा निर्यात केवल 1,000 करोड़ रुपए का था, अब यह बढ़कर लगभग 40,000 करोड़ रुपए हो गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश की सोच में बड़ा बदलाव आया है। देश की सोच विश्वास, विकास और जन कल्याण द्वारा परिभाषित होकर बेहतर शासन मॉडल की ओर अग्रसर हो रही है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीबों तक महत्वपूर्ण संसाधनों को सीधे पहुंचाने के कार्यों को पूरा किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार के पास रोक लगाने के पर्याप्त कारण थे और कानून की प्रक्रिया का ठीक से पालन किया गया है। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल में हिमाचल के तराई क्षेत्रों, बिहार, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी, कराईकार और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में आज बिजली चमकने और ओले पड़ने की संभावना है। अश्मिता चालिया मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। सेमीफाइनल में कल उनका सामना कोरिया की पार्क गा यून से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 7:05 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम कृषि जगत का।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: महेश बहन, देखिए अगर हम मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या और अपने खान पान में बदलाव नहीं करते हैं तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं और इस गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रोक की बहुत सारी ऐसी समाचार हम सुनते हैं, जैसे बोलचाल की भाषा में हम लू लगना भी कहते हैं। ये बहुत ही घातक हो सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गर्मी के मौसम में धूप में कम से कम निकलें और अगर निकलते हैं तो पानी साथ रखें और अपने सिर को सूती कपड़े से कवर करें। इसके साथ साथ कपड़े भी ढीले ढाले पहने, सूती कपड़े पहने जिसमें से हवा आर पार जा सके। और खान पान का तो हमें इस मौसम में खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये हीट स्ट्रोक की जो हम बात कर रहे हैं वो उसी दौरान आता है जब हम धूप में अधिक होते हैं या हमारी जो एनर्जी होती है वो कम हो जाती है। इसमें चक्कर आना, उल्टी आना, कई बार तो बेहोशी जैसी समस्याएं भी सामने आ जाती हैं।
1: बिल्कुल, हीट स्ट्रोक वैसे तो ही शब्द से बहुत सारे लोग परिचित हैं, पर क्योंकि जो आधुनिक लोग हैं मतलब ज्यादा इस तरह से बोलते हैं, लेकिन जो हमारे देसी भाषा में बोले तो लू है। तो जैसी गर्मी आती है तो लू, और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि शरीर का तापमान हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पानी की प्यास ज्यादा लगती है और उसकी वजह से आपको पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है। तो आपका बॉडी का जो लिक्विड है वो निकल जाता है और इससे क्या होता है कि आपको चक्कर आता है, बुखार, ये कई तरीके की बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता है। और ये समस्या ज्यादातर बुजुर्गों और बच्चों में ज्यादा दिखाई पड़ती है, तो इसलिए ये देखा जाता है कि जितने भी घर के बुजुर्ग और बच्चे तो धूप में या मतलब दोपहर की जो बहुत तेज 12-1 बजे के बाद होती है उसमें वो कम निकले, और वो जब निकलते हैं तो कुछ ठंडा पानी पी करके या कुछ अपना लिक्विड फॉर्म लेके अपने पूरी तैयारी के साथ में या कुछ कपड़ा सर पे रख के ढक कर ऐसे जाए अगर बहुत जरूरी हो, नहीं तो जितना हो सके लू से बचे, घर में रहें और आप सावधानियों का से बरतेंगे तो आप इससे बच सकते हैं।
0: बिल्कुल, और ताजी सब्जी और फलों को अपने खान पान में शामिल कीजिए क्योंकि सब्जियों में और फलों में फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है और हमारे शरीर को डिहाइड्रेट भी करता है। तो ये तो बात रही हमारे स्वास्थ्य की, और अब करवाते हैं अपने श्रोताओं का मनोरंजन और सुनवाते हैं ब्रह्मपाल नागर की आवाज में ये किसान गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर की आवाज में ये किसान गीत। और सचमुच हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं, और वो दिन रात मेहनत करते हैं, तभी हम मौसम के अनुसार अच्छे अच्छे फल सब्जियां और अनाज का सेवन कर पाते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी हम अन्न उगा रहे हैं उसका भंडारण भी सही तरीके से हो, ये भी बहुत ही जरूरी है। इसलिए एक बातचीत हम आपको सुनवाते हैं जिसका विषय है CWC द्वारा स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम। इसमें बातचीत कर रहे हैं KM राव और इनसे बातचीत कर रही है मंजीत कौर।
1: समय मौजूद है AM राव जो कि ग्रुप जनरल मैनेजर हैं MIS, जो कि आज स्मार्ट वेयर हाउस का जो प्रोग्राम यहाँ पर भारत मंडपम में करवाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
2: तो मैं मीडिया पर्सन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम में आए और उन्होंने इसका कवरेज किया है, और ये भारत भर में और विश्व भर में सबसे बड़ा स्मार्ट वेयर हाउसिंग का इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो फूड ग्रेन और फूड सिक्योरिटी जो सिस्टम है, ये भी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, और इस नेटवर्क को और एफिशिएंट बनाने के लिए पहले भी कई कदम लिए गए थे, IT में इंटरवेंशन हुए थे, और अभी जो लेटेस्ट IT इंटरवेंशन हुआ उसमें डिको दर्पण, जिसमें पूरी पारदर्शिता डिको ऑपरेशन में, स्टोरेज में, हैंडलिंग में आती है, और उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अभी स्मार्ट वेयर हाउसिंग का जो हमने प्रोजेक्ट किया है, जिसके अंदर AI और IoT सेंसर्स लगा के हमने इस सिस्टम को और बेहतर करने का प्रयास किया है, और ये भारत भर में 215 जगह CWC ने

0: इम्प्लीमेंट किया है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है।
1: बिल्कुल सर, और ये भी कहना चाहेंगे क्योंकि सीडब्ल्यूसी और एफसीआई द्वारा ये आयोजन हुआ है, तो जैसे कि अनाज का भंडारण वगैरह होगा तो उससे कितना फायदा पहुंचेगा इस टेक्नोलॉजी से?
0: जैसे कि आपको पता है कि जो स्टोरेज में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक तो वेयरहाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आपका तो उससे जो चीजें काफी इंप्रूव होती है। दूसरा होता है एफिशिएंसी, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी। तो दोनों पैरामीटर्स के लिए सीडब्ल्यूसी और एफसीआई ने अंडर द गाइडेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैंडर्डाइज 90 पैरामीटर्स बनाया हुआ है, स्टैंडर्डाइज किया गया है, जिसमें वेयरहाउस मैनेजर उसको असेस करता है और रीजनल ऑफिस उसको वेरीफाई करता है उन 90 पैरामीटर को। प्लस ऑपरेशनल एफिशिएंसी के भी 5 पैरामीटर्स है, जिसमें ऑक्युपेंसी लेवल कितना है, स्टोरेज लॉसेस कितने हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो रही है, और आपका जो डेटर्स है, जो अमाउंट ऑफ कस्टमर से जो आना चाहिए वो कितने दिनों में आ रहा है। तो इस प्रकार के 5 क्रिटिकल पैरामीटर से किसी वेयरहाउस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को जज किया जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर से उसको जज किया जाता है कि वो कितना अच्छा रख रखा हुआ है उसमें। तो ये दोनों का कम्बिनेशन बना के एक स्टार वेयरहाउसिंग हम लोग बनाते हैं। कई वेयरहाउसेस जो है 3, 4, 5 वेयरहाउस कैटेगरी में है। डिपार्टमेंट का ये टारगेट है कि जितने भी वेयरहाउसेस है वो आने वाले सालों में 4 से 5 कैटेगरी में सब आ जाए। तो अगर 4 से 5 कैटेगरी में आ जाएंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और आपका जो टर्नओवर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और हमने पिछले सालों में देखा भी है कि प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ी है सीडब्ल्यूसी की, 30% से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, टर्नओवर भी 30% के आसपास बढ़ा है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में और भी कई पैरामीटर है, पारदर्शिता लाना, डिजिटाइजेशन होना, मैन पावर का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता, मतलब प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉइज की बढ़ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो सबसे केंद्र बिंदु है इसका, कि कस्टमर को सेटिस्फाई हम लोग कर पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है इन इनिशिएटिव्स का।
1: और कितना फायदा पहुंचेगा इस स्मार्ट वेयर हाउस सिस्टम का?
0: ये अभी हमने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, तो आने वाले सालों में हमें इसका पूरा की पूरा लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिलेगा, हमारे डिपॉजिटर्स को लाभ मिलेगा, एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा, और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इम्पैक्ट होगा। जैसे मैंने बताया कि पिछले साल लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस साल हमारा जो टर्नओवर और प्रॉफिट है वो लगभग 30% बढ़ा हुआ है। तो जब स्मार्ट वेयरहाउसिंग फुली ऑपरेशनल में आ जाएगा तो आप देखिए इसका कितना बढ़ेगा। तो ये आने वाले दिनों में हम इसका आकलन करेंगे और तो आपको डेफिनेटली बताएंगे इसके बारे में।
1: क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: संदेश ये है कि क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, तो हम ये चाहते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने वेयरहाउसेस है या पब्लिक वेयरहाउसेस है या प्राइवेट वेयरहाउसेस भी है, वो भी इन तकनीकों को यूज करे, डिपो दर्पण को यूज करे, स्मार्ट वेयरहाउसिंग की तकनीक को यूज करे, और तो ही देश में बट विदेश में भी, जैसे कई विदेश है, अफ्रीकन कंट्रीज होगी और भी कई कंट्रीज हैं जहां पर फूड ग्रेन का मैनेजमेंट होता है, वहां पर भी अगर सीडब्ल्यूसी अपना इम्प्लीमेंटेशन करे तो दुनिया भर के लोगों को जो पुअर है, नीडी है, उनको इसका लाभ मिले।
1: आकाशवाणी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, और विषय था सीडब्ल्यूसी द्वारा स्मार्ट वेयरहाउस सिस्टम, और इसकी जानकारी दे रहे थे श्री एएम राव, ग्रुप मैनेजर एमआईएस से। मंजीत कौर इनसे बातचीत कर रही थी।
3: देखिए, वेयरहाउस केंद्रीय भंडारण निगम का ये मुख्य कार्य है कि कृषि उत्पादों को, उर्वरकों को और अन्य वस्तुओं को वैज्ञानिक तरीके से भंडारित करें, जिससे कि जो भंडारित किया गया जो सामान है उसका अच्छी तरह से रखरखाव हो सके और उचित समय पर उसकी बिक्री से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सके। इसलिए वेयर हाउस के कामकाज का उचित ब्यौरा रखा जाता है, जिससे कि वेयर हाउस का उचित लाभ सबको मिल सके। और अब आपका कराते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं पहले ये संदेश।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी करेंगे, जिसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक

किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक

सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया जाता है। और अगर कृषि की बात करें तो सिंचाई का जो काम है उसके बिना कृषि में उचित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जानते हैं कि जल की जो मात्रा है उसका सही तरीके से उपयोग करना बहुत ही जरूरी है ताकि वो व्यर्थ भी ना हो और अधिक से अधिक खेतों तक पानी पहुंचे, फसलों तक पानी पहुंचे और अच्छा उत्पाद हमारे किसान भाइयों को मिल सके। इसलिए जल संरक्षण के लिए सरकार निरंतर योजनाएं बनाती रहती है। ऐसी एक योजना है अटल भूजल योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जल का संरक्षण किया जाए, वर्षा जल का संरक्षण किया जाए और सिंचाई के भी, जैसे कि हम कहते हैं टपक सिंचाई विधि या फव्वारा विधि, इस तरह की विधियों का हम इस्तेमाल करें जिससे कि पानी कम इस्तेमाल हो और हमारी पैदावार भी अच्छी हो और पानी व्यर्थ में ना बहे। तो जल का सही तरीके संरक्षण और प्रबंधन ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और हमारे अगले कलाकार भी अपने गीत के माध्यम से इसी बात को बता रहे हैं, तो सुनते हैं जल संरक्षण पर आधारित ये रागनी। और हमारे जो कलाकार हैं वो हैं योगेंद्र निमचाना।

खेत में फसल तभी लहराए, बुआई से भी पहले ये पानी चढ़ावे, बुआई से भी पहले ये पानी छावे, नहीं अंकुरण आवे नमी बिन, नहीं अंकुरण

क्यों करन लगे बेकार, मच जा हाहाकार मुझे ना।

0: तो भाइयों अभी आप सुन रहे थे रागनी, कलाकार थे योगेंद्र नेपचाना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी करेंगे, जिसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को

0: और आपको याद दिला दें कि वही कल है शनिवार और शनिवार को आपका पसंदीदार कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार प्रसारित किया जाता है, जो कि फरमाइशी गीतों का फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे श्रोता फोन के माध्यम से हमसे जुड़ते हैं और हमें अपनी फरमाइशों के बारे में बताते हैं। अधिक से अधिक श्रोता हमसे जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इससे हमें काफी प्रसन्नता होती है। तो अगर आप भी कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो कल 6:30 पर हेलो ग्राम संसार कार्यक्रम सुनना बिल्कुल न भूलें। कार्यक्रम के दौरान आपको कार्यक्रम से जुड़ने का समय और फोन नंबर सभी जानकारियां आपको विस्तार से दी जाएंगी। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम।
1: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक थे शिव नंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अभी आपने आनंद लिया कार्यक्रम कृषि जगत का। अब कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब वक्त है कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। गजल और कव्वाली दोनों ही वो एक सिफ्त है, एक वो तरीका है कि जहां आप इंसान के इमोशंस को, उसके एहसासात को बहुत अलग तरीके से बयान करते हैं। गजल के जरिए खूबसूरती और इश्क को बयान किया जाता है, वहीं कव्वाली वो सिफ्त है जिसमें आप रूहानियत को पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऐसी ही एक रूहानियत से।

इबादत के लिए किसी जगह जाकर इबादत करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंसान की जिंदगी में वो मसरूफ बहुत होता है, बहुत बिजी शेड्यूल होता है, या किसी ऐसी परेशानी में होता है कि वहां वो चीजें मौजूद नहीं होती। उस वक्त उसकी नजरें, उसका दिल, उसके जज्बात, उसके एहसास उस ईश्वर की बारगाह में छुप जाते हैं। वो सबसे बड़ी इबादत है।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने कार्यक्रम गजल और कव्वाली सुना। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी और 8:30 पर आप सुनेंगे गीत मालिका। 8:45 पर समय होगा समाचार संध्या का। कृपया प्रादेशिक समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
1: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय।

0: मुख्य समाचार। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उत्तरी जिले में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। कहा, यह थाना महिलाओं को बिना किसी भय के शिकायत दर्ज और न्याय दिलाने में मदद करेगा। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जनकल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। दिल्ली पुलिस ने बताया, ऑपरेशन साई हॉक के पांचवें चरण के अंतर्गत ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से जुड़े 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, कई संस्थानों में योग शिविर आयोजित। और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज उत्तरी जिले के सब्जी मंडी इलाके में दिल्ली पुलिस के पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। यह थाना महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने और एक सुरक्षित तथा सुलभ पुलिसिंग माहौल देने के लिए स्थापित किया गया है। उद्घाटन के बाद श्री संधू ने कहा कि यह थाना महिलाओं को बिना किसी भय के शिकायतें दर्ज कराने, न्याय पाने और सहायता प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी और सुरक्षित वातावरण देगा। उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की महिला सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख पहलों जैसे कि पिंक बूथ और सशक्ति अभियान की भी समीक्षा की। श्री संधू ने पुलिस बल को राजधानी में ऐसे और भी थाना स्थापित करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज राजधानी में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई फॉर गुड गवर्नेंस संगोष्ठी में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में श्री संधू ने कहा कि एआई शासन व्यवस्था को केवल प्लेटफॉर्म आधारित से बदलकर इंटेलिजेंस आधारित बनाने के अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि एआई प्रणालियों से सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता को प्रतिबंधित करें। उपराज्यपाल ने देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और पारदर्शिता, डेटा गोपनीयता तथा जन विश्वास आधारित संप्रभु एआई क्षमताएं विकसित करने को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताई। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जन कल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 नागरिकों ने हिस्सा लिया। इन शिविरों के माध्यम से नागरिकों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान लोग राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पेंशन, जल कनेक्शन, ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए बड़ी संख्या में शिविरों में पहुंचे। शिविर में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दर्शाती है कि शहरवासी घर के निकट उपलब्ध हो रही सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए सक्रिय रूप से आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी देना नहीं बल्कि पात्र नागरिकों तथा योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
0: दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य नागरिकों, उद्योगों, संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और निर्माण एजेंसियों को नवंबर से पहले पर्याप्त तैयारी का समय उपलब्ध कराना है ताकि दिल्ली वासियों को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि ये व्यवस्था सामान्यतः हर वर्ष 1 नवंबर से 28 फरवरी तक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के साथ लागू रहेगी। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत कई प्रावधान हैं जिसमें वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही पेट्रोल पंप पर ईंधन मिलेगा। 1 नवंबर से 28 फरवरी तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क दोगुना रहेगा। खुले में कचरा जलाने पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी जैसे प्रावधान शामिल हैं। ऋषु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार इस वर्ष राजधानी क्षेत्र में 70 लाख पेड़ पौधे लगाएगी। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इसके अंतर्गत दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने आज सचिवालय में उम्मीद फाउंडेशन की टीम से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि इस संस्थान की विशेषता है कि इसके अधिकतर स्वयंसेवक युवा हैं जिनकी पर्यावरण को लेकर समर्पण तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में कई गैर सरकारी संगठन, निवासी कल्याण संघ, संस्थानों, कॉलेजों, विद्यालयों और युवाओं को एक साथ जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को हरा भरा बनाने के संकल्प में युवा पीढ़ी की अहम भूमिका है। ऋषु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

0: समीक्षा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन साई हॉक के पांचवें चरण के अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराधों से जुड़े 911 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया संलयन और रणनीतिक संचालन के संयुक्त पुलिस आयुक्त रजनीश गुप्ता ने मीडिया को बताया कि दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू हुआ है। इस दौरान 715 छापेमारी टीमों ने दिल्ली सहित 21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में समन्वित अभियान चलाए।
1: तो ना सिर्फ हमने हॉटस्पॉट्स पर काम किया बल्कि उन आम कंप्लेंट्स पर भी काम किया और उनके एनालिसिस करके हमें लगा कि बहुत सारा जो फ्रॉड है, हालांकि उसमें अमाउंट में एफआईआर बहुतों में नहीं थी और अमाउंट चूंकि 1 लाख से कम था तो ईएसआईआर भी नहीं थी, तो उसके अंदर जब काम करने से पता लगा कि एपी के बेस्ड फाइल्स का बहुत ज्यादा व्हाट्सएप के ऊपर आना होता है और उसी की वजह से पैसा साइफन ऑफ हो रहा है। इसी की मदद से हम लोगों की जो संख्या रही इस बार अरेस्ट की वो पिछले सभी साई हॉक ऑपरेशन से ज्यादा रही और 916 के अलावा अभी भी फॉरवर्ड लिंकेजेस में हमें उम्मीद है कि हम और लोगों को भी पकड़ पाएंगे।
0: श्री गुप्ता ने बताया कि इस दौरान 105 लैपटॉप, 757 मोबाइल फोन, एक कार और लगभग 21 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभियान में नाइजीरिया के 2 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई जारी है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि मामले में 4 आरोपी राजस्थान के सीकर जिले से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी युवाओं खासकर छात्रों को वर्क फ्रॉम होम का प्रलोभन देकर भर्ती करते थे। मामले की जांच जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाया जाए। नई दिल्ली में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के बारे में श्री शाह ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जहां इस प्रणाली ने सबसे जटिल मामलों को भी सरल बनाने में सहायता की है।
2: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो और कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमें क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज मच्छर जनित बीमारियों के रोकथाम और उनके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑटो रैली को हरी झंडी दिखाई। एक रिपोर्ट।
3: प्रत्येक ऑटो रिक्शा पर मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए किए जाने वाले उपायों का संदेश प्रसारित किया जाएगा। इस अवसर पर महापौर द्वारा फॉगिंग अभियान का भी शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि ये ऑटो सभी 250 वार्डों में जाएंगे। श्री वाही ने कहा कि ये ऑटो रिक्शा फॉगिंग मशीन और जन जागरूकता सामग्री जैसे मच्छर जनित बीमारियों से बचने के तरीके बताने वाले संदेश, पैम्फलेट और बैनर प्रसारित करेगी। महापौर ने कहा कि इस रैली का आदर्श वाक्य जीतेगी दिल्ली, हारेगा डेंगू मलेरिया महज एक नारा न होकर निगम की प्रतिबद्धता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली भाजपा ने राजधानी में आज लगातार दूसरे दिन घर घर महाजन संपर्क अभियान चलाया। इस कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के सभी 256 मंडलों में किया गया। इस महाजन संपर्क अभियान में मुख्य रूप से सांसद, विधायक और पार्टी के प्रमुख प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। दिल्ली भाजपा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास, विश्वास तथा जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सुल्तानपुरी डी मंडल में घर घर जाकर क्षेत्रवासियों से संपर्क किया। वहीं सांसद कमलजीत सहरावत ने हरिनगर विधानसभा में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने गोकुलपुर विधानसभा में क्षेत्रवासियों के बीच पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लगातार प्रोत्साहन देशभर के छात्रों और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति का एक पोस्ट साझा करते हुए श्री सूद ने कहा कि उपराष्ट्रपति के इस संकल्प में दिल्ली विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज रविवार को होने वाली नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के पहले टेलीग्राम को आंशिक रूप से प्रतिबंधित करने संबंधी सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने बताया कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 7827980287 के माध्यम से भेजे जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य पथ पर पोर्टेबल शौचालय स्थापित किए हैं। परिषद ने कहा कि इनका उद्देश्य कार्यक्रम के दौरान लोगों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करना, स्वच्छता के मानकों को बनाए रखना और साफ सफाई को बढ़ावा देना है। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज दिल्ली नगर निगम मुख्यालय सिविक सेंटर के प्रांगण में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निगम ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में योग के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। वहीं नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के रूमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने बताया कि योग को ऑटोइम्यून बीमारियों और रूमटॉइड आर्थराइटिस के प्रबंधन में सहायक चिकित्सा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आगामी 21 जून को मनाया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता की औपचारिक शुरुआत हुई। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 34 देशों के करीब 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ओलंपियन भवानी देवी इस प्रतियोगिता में 24 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व कर रही हैं। राजधानी दिल्ली में दोपहर में गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा कुछ इलाकों में मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 39 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने उत्तरी जिले में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे 42 जन कल्याण शिविरों में पहले दिन कुल 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रोएक्टिव विंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज। कई संस्थानों में योग शिविर आयोजित और एशियाई तलवारबाजी प्रतियोगिता नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मी खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। मैं हूं कविता और आज मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी
2: संचित जैन।
1: मैं और संचित आपको लेकर चलेंगे आज खेल जगत के सुनहरे सफर पे, जहां हम आपको अलग अलग खेल गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। और आज जिन खेल गतिविधियों को हम शामिल करने वाले हैं उसमें है हमारे पास सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप, उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप महिलाओं का चल रहा है, उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे हॉकी के फील्ड में, उसके बाद हम आपको

0: चलते हैं संचित के पास।
1: अर्जेंटीना चैंपियन।

ऑस्ट्रेलियन ने बॉस्निया को फुटबॉल का जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 4-1 से हरा दिया। सब्स्टिट्यूट योहान मैनजिम्बी ने आकर 2 गोल मारे, वहीं रूबन बारगास ने 84वें मिनट में गोल किया। ग्रेट जाका ने आखिरी मिनट में एक पेनल्टी मारकर स्विट्जरलैंड का 4th गोल मारा। बॉस्निया की तरफ से मोहारे मोविच को 80वें मिनट में रेड कार्ड मिला डॉगसो यानी डिनायल ऑफ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी की वजह से। मैच ने 93rd मिनट में एक गोल मारा। इस जीत के चलते स्विट्जरलैंड ग्रुप बी में 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और बॉस्निया 1 अंक के साथ तीसरे स्थान पर। ग्रुप बी की अगर बात करें तो दोनों टीम्स कनाडा और कतर कल एक तनावग्रस्त मैच में शामिल हुए। कनाडा ने 6 गोल मारकर कतर की टीम को पूरी तरीके से तोड़ दिया। कनाडा के जोनाथन डेविड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक हैट्रिक मारी। कतर के हनम अहमद और असीम मडीबो को रेड कार्ड दिखाया गया। कनाडा को इस मैच में 19 कॉर्नर मिले जिन्हें यूज करते हुए उन्होंने कतर को बुरी तरीके से हरा दिया। इस जीत के चलते कनाडा अब ग्रुप बी में पहले स्थान पर आ गया है और कतर अभी 4th और आखिरी स्थान पर है।

बात करते हैं ग्रुप ए की। ग्रुप ए में मेक्सिको और साउथ कोरिया के बीच एक अहम मुकाबला देखने को मिला। होम टीम मेक्सिको ने साउथ कोरिया के गोलकीपर की गलती का फायदा उठाते हुए 50वें मिनट में गोल दाग दिया। बॉल हवा में थी और साउथ कोरिया के गोलकीपर और सेंट्रल डिफेंडर के बीच मिसकम्युनिकेशन के चलते गोलकीपर के हाथ से बॉल नीचे गिर गई और मेक्सिको के प्लेयर रोमो ने गोल कर दिया। इस जीत के चलते मेक्सिको ग्रुप ए में 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में राउंड ऑफ 32 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी बनी। वहीं साउथ कोरिया 3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। ग्रुप ए की बाकी दोनों टीम्स यानी साउथ अफ्रीका और चेकिया के बीच ही मैच हुआ जो 1-1 से ड्रॉ रहा। चेकिया के मिडफील्डर सेडिलेक ने 6 मिनट में गोल मारकर चेकिया को 1-0 से आगे कर दिया था। साउथ अफ्रीका पूरे मैच में गोल मारने की कोशिश करता रहा और 83वें मिनट में साउथ अफ्रीका को एक पेनल्टी मिली। चेकिया के प्लेयर ने पेनल्टी बॉक्स में हैंडबॉल किया जिसके चलते साउथ अफ्रीका को पेनल्टी दी गई और साउथ अफ्रीका के प्लेयर मोकेना ने गोल दागकर मैच 1-1 की बराबरी पर ले आया। इस मैच के चलते दोनों चेकिया और साउथ अफ्रीका 1-1 अंक के साथ ग्रुप ए में तीसरे और चौथे स्थान पर है। आज होने वाले मैचेस पर नजर डालें तो ग्रुप सी में एक अहम मुकाबला होगा स्कॉटलैंड और मोरक्को के बीच। स्कॉटलैंड अपना पहला मैच जीतकर 3 अंकों के साथ पहले स्थान पर है, वहीं मोरक्को 1 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। दोनों टीमें मैच जीतकर राउंड ऑफ 32 में जाने के सपने देख रही होगी। वहीं ग्रुप सी में आज ब्राजील और हेटी के बीच भी एक मैच खेला जाएगा। ब्राजील का पहला मैच मोरक्को के साथ ड्रॉ हो गया था तो वो आज हेटी को हराकर ग्रुप सी में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहेंगे। हेटी के सामने ब्राजील की कड़ी चुनौती रहेगी लेकिन वर्ल्ड कप फुटबॉल में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। देखते हैं आज के बाद ग्रुप सी किस

ग्रुप डी की बात करें तो आज यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीम्स अपना पहला मैच जीत गए थे और यूएसए ने पैराग्वे को 4-1 से हराया, वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टर्की को 2-0 से हराया था। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में जो भी टीम ये मैच जीतेगी उसकी जगह राउंड ऑफ 32 में पक्के हो जाएगी। यूएसए होम सॉइल पर खेलेगा और लोकल क्राउड्स का सपोर्ट का फायदा उठाते हुए ये मैच जीतना चाहेगा। वहीं ग्रुप डी के दूसरे मैच की बात करें तो टर्की और पैराग्वे के बीच ये मैच खेला जाएगा। दोनों टीम्स अपना पहला मैच हार गई थी और आज प्रयास करेंगे कि आज का मैच जीतकर टूर्नामेंट में आगे बढ़ा जाए। जो टीम आज का मैच हारती है उसका राउंड ऑफ 32 में क्वालिफिकेशन

0: करते हैं फुटबॉल के महाकुंभ की यानी फीफा वर्ल्ड कप की, तो हम ऐसे में क्रिकेट वर्ल्ड कप को कैसे भूल सकते हैं संचित। और अब फुटबॉल के मैदान से निकल के हमें क्रिकेट के ग्राउंड में भी तो पहुंचना है, जहां पर भारतीय जो टीम है, हमारी महिला टीम जो है, वो T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और बिल्कुल लगी हुई है कि किस तरह से हम एक बार फिर इतिहास को दोहराएं और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को भी घर ले आए। तो क्या है खबर क्रिकेट के मैदान से संचित?
1: जी बिल्कुल कविता, आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच में मैच खेला गया, जिसमें वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 7 रनों से हरा दिया। स्कॉटलैंड की तरफ से कार्टर ने 59 रन और लिस्टर ने 33 रन बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से मैथ्यूज ने शानदार बोलिंग करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 3 विकेट लिए। फ्लेचर ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए और एलेन ने 2 ओवर में 11 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वेस्टइंडीज ने स्कॉटलैंड को 146 पर आउट करके ये मैच 7 रनों से जीत लिया। पहली पारी में वेस्टइंडीज के लिए कैम्बल ने 26 बॉलों पर 36 रन बनाए और टेलर ने 19 बॉल पर 47 रन बनाए। वहीं आज की बात करें तो न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच एक बहुत ही अच्छा मैच खेला जाएगा। आज रात 11 बजे ये मैच T20 वर्ल्ड कप के मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीम अभी तक एक भी मैच नहीं जीती है और इसका मतलब ये है कि ये मैच दोनों के लिए एक मस्ट विन मैच हो चुका है। न्यूजीलैंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस है, अपना पहला मैच वेस्टइंडीज से और दूसरा मैच श्रीलंका से हार गया था। आइए चलते हैं कविता की तरफ।
0: जी हाँ बिल्कुल, और क्रिकेट की खबरों का जो रोमांच है वो अभी जारी है, क्योंकि अभी तो बात हमारे पुरुषों की बाकी है। यहाँ पर इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो खेल रहे हैं अपना वनडे सीरीज। पहले दो मैच में धमाकेदार जीत से उत्साहित भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ कल होने वाले तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी, जिसमें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर सभी की नजरें होंगी। इंडिया अफगानिस्तान का तीसरा वनडे मैच चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों ही टीमें पूरी तरह से तैयार हैं। मैच में पिछले अगर बात करें तो पिच की, वहां पर जिस तरह से स्टेडियम है वहां पर स्पिनर्स को हमेशा मदद मिलती है। हालांकि शुरुआत में कुछ ओवर जो है वो थोड़ा सा जो तेज गेंदबाज हैं उनके भी फेवर में जाता है, लेकिन वक्त के साथ यहां पर स्पिनर्स का दबदबा बन जाता है। वहीं अगर मौसम की बात करें संचित, तो शनिवार को चेन्नई का मौसम खराब रहने वाला है, जो मैच पर असर डाल सकता है। एक और बात है यहां पर कि एक रिहैबिलिटेशन को पूरा करने के बाद इस मैच में हर्षित राणा जो है वो टीम में वापस आए हैं और ये तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की जगह ले सकते हैं, जिन्होंने इस श्रृंखला में अभी तक दोनों मैच खेले हैं। इससे भारत के जो चोटिल खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार रेड्डी, उनकी जो अनुपस्थिति है उसमें निचले क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज का जो विकल्प है वो मिल गया है। इससे टीम का जो प्रबंधन है वो ब्रिटेन दौरे से पहले उनकी जो फॉर्म और फिटनेस है उसका आकलन करने का भी यहां पर एक मौका जो है वो मिल जाएगा। जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो उन्होंने इस श्रृंखला में एकमात्र टेस्ट मैच और पहले दो वनडे में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा अक्सर हम अफगानिस्तान को लटफेर के लिए जानते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं उनकी जो टीम है। हालांकि फिर भी यहां पर जो आखिरी वनडे मैच है उसमें जीत के साथ श्रृंखला का समापन करने के लिए थोड़ा ज्यादा ही दम लगाएगी, लेकिन देखना यही होगा कि क्या इंडिया की टीम उन्हें जीतने देगी। फिलहाल अभी तो अच्छा प्रदर्शन इंडिया का है और देखना है कि ये मैच कैसा रह सकता है। तो यहां पर हम क्रिकेट की खबरों को विराम लगाएंगे और आपको लेकर चलेंगे हम अभी यहां पर तलवारबाजी की जगत में, जहां पर हमारे जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप जो है वो खेल रहे हैं। इसका जो आगाज है वो आज से भारत मंडपम में 24 जून तक चलेगा। इस रोमांचक प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों और 400 से अधिक जो एथलीट हैं वो भाग ले रहे हैं। भारतीय दल में भी बहुत सारे खिलाड़ी शामिल हैं और इनकी जो अगुवाई है, भारत का जो नेतृत्व है दल का, वो एकमात्र फेंसिंग ओलंपियन CA भवानी देवी कर रही हैं। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए चलते हैं अपने सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी के पास, जो इस रिपोर्ट के साथ तैयार हैं।
2: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आज से एशियन सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ हो गया है। पहली बार भारत इस प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। 19 से 24 जून तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 30 से अधिक देशों के 400 से ज्यादा खिलाड़ी और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। आज इस आयोजन का रंगारंग उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस चैंपियनशिप में जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे मजबूत देश

0: स्थानों के तलवारबाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में पुरुषों और महिलाओं के फाइल एपी और सेबर मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। आगे बढ़े इससे पहले आपको सुनवाते हैं भारतीय तलवारबाजी टीम के कोच ज्ञानेंद्र कुमार को, जो बता रहे हैं फेंसिंग क्या है और कैसे खेला जाता है, साथ ही भारत के लिए पहला दिन कैसा रहा।
1: धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबका आकाशवाणी का धन्यवाद जो कि मुझे बुलाया इस मंच पे। जो एशियन चैंपियनशिप है इंडिया में पहली बार हो रहा है और ये एक पूरे कंट्री को देखने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि फेंसिंग होती क्या है। तो मोस्टली जो एशियन कंट्री है फेंसिंग में बहुत आगे, मतलब जैसे यहाँ पे 70% ओलंपिक मेडलिस्ट एशियन कंट्री के हैं, जैसे चाइना, जापान, कोरिया और हांगकांग है, ये सब ओलंपिक मेडलिस्ट कंट्रियां हैं। तो एशियन में बहुत टॉप कॉम्पिटिशन है और इंडिया जो स्पोर्ट फेंसिंग का जो अभी बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, काफी पहले पीछे मगर धीरे धीरे आगे क्वालिफाई कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मिला इंडिया में और कराने का, सबको देखने का, समझने का। और इसमें मोस्टली मैं बताऊं टोटल 3 इवेंट होते हैं और एक होता है फाइल, जिसका टारगेट एरिया होता है हमारे जो वेस्ट साइज है पूरा बनियान जितना है, तो उसके वो टारगेट होते हैं, आपको फ्रंट और बैक दोनों होता है। और एक इवेंट होता है ईपी, जो कि इसका फुल बॉडी टारगेट एरिया होता है, उसमें आप टो टू हेड कहीं भी आप हिट करते हैं तो आपको पॉइंट मिलता है। और सेम एक थर्ड इवेंट होता है जो सेबर होता है, जो कि आपका कमर से ऊपर जितना भी होता है उसमें आपका हेड भी इंक्लूड होता है, आर्म्स भी इंक्लूड होता है, वो इवेंट होता है। ये तीनों इंडिविजुअल इवेंट भी खेले जाते हैं और तीनों टीम इवेंट खेले जाते हैं। जैसे इंडिविजुअल में तो पर कंट्री 4-4 प्लेयर होते हैं, अपना अपना पूल खेलते हैं, पूल के बाद फिर नॉकआउट जो क्वालिफाई करता है नॉकआउट खेलता है और जो जीतता रहता है आगे बढ़ता जाता है, जो हारता आउट हो जाता है। उसके बाद फिर ये जब इंडिविजुअल खत्म होता है तो फिर टीम इवेंट भी होते हैं। टीम इवेंट में टोटल 4 फेंसर होते हैं, उसमें एक रिजर्व होता है और जो कि हम रिप्लेस करते रहते हैं, अगर कोई खराब खेलता तो चेंज करते हैं। उसमें टोटल 3 फेंसर खेलते हैं और वो 45 टच का मैच होता है। उसमें जैसे रिले की तरह होता है, जैसे कि एक दूसरे से 5 पॉइंट का एक आदमी खेलता है और 3 मिनट, फिर जितना स्कोर होता है उसी आगे से फिर आगे बढ़ता रहता है। फर्स्ट पहले 45 खत्म करता है और विन करता है। ऐसे टीम इवेंट होते हैं। पूल में 5 टच होते हैं, एक पूल में मैक्सिमम 7 फेंसर और मिनिमम 5 फेंसर होते हैं। फिर उसके व्याप पे जितने पूल कंप्लीट होने के बाद फिर नॉकआउट की जो सीडिंग होती है, जो पूल की रैंकिंग हिसाब से फर्स्ट की लास्ट से फिर सेकंड की सेकंड लास्ट से, ऐसे पूरे नॉकआउट सिस्टम बनता है। जो आगे जीतता रहता है वो आगे बढ़ता जाता है। तलवार में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या? हाँ, तलवारों में भी काफी डिफरेंस है। जैसे कि फॉइल का होता है और उसका जो प्रेशर होता है ओनली थ्रस्टिंग वेपन, मतलब आप सिर्फ कोचने वाला होता है कि आगे से टिप से पॉइंट आप हिट करेंगे तभी वो 500 ग्राम का प्रेशर चाहिए। और उसका जो शेप होता है वो भी बाकी उससे पतला होता है थोड़ा। जैसे आप लेंथ होती है, लेंथ तो लगभग ईपी और फॉइल के बराबर होती है। ब्लेड जो ब्लेड का होता है एरिया लंबाई होती है 90 सेंटीमीटर की होती है। और सेम ऐसे ईपी का है, उसका 750 ग्राम का प्रेशर चाहिए। जैसे फॉइल में 500 ग्राम का प्रेशर चाहिए, उसमें ईपी में 750 ग्राम का प्रेशर से हिट करेंगे तभी आपका पॉइंट रजिस्टर होगा। और सेबर है जो कट एंड थ्रस्ट वेपन, जिसकी आप उससे, मगर उसमें प्रेशर नहीं होता, आप बस जिसे आप कट करके मार भी सकते हैं। तलवार जैसे तलवारबाजी होती है, मारते हैं एक दूसरे को, कहीं भी टच हो गया तो भी पॉइंट मिलता है, ये सिस्टम होता है। आज कंपटीशन खेले गए लड़कों और लड़कियों के,
2: कोई उम्मीद नजर आज नहीं आई, जिसको मैंने देखा वो हार गए, क्या रहा आज?
1: ये सर अभी तो जो फेंसिंग है इंडिया में डेवलप फेज में, अभी अच्छा कर रहे हैं। पहले जैसे था, आज से कुछ साल पहले था, तो अभी हमारे तो फुल क्वालिफाई भी नहीं करते थे, पर धीरे धीरे जैसे फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और हमारी जो गवर्नमेंट है काफी इन्वेस्ट कर रही है, काफी प्लेयरों को ध्यान दे रही है, तो वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनको भी पता चल रहा है कि हमारी गलतियां कर, उसको सीख लेके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुके हुए हैं, जैसे पहले पूल से आउट होते थे मगर अभी अब नॉकआउट में भी पहुंच रहे, फिर नॉकआउट से धीरे धीरे 2-3 बाउट में जीत भी रहे हैं, आगे तक आ रहे हैं, 16 तक आ रहे हैं, 32 तक आ रहे हैं। अभी जैसे आज तो फॉइल गर्ल्स का और सेबर बॉयज का हुआ, जो कि 64 के मैच सेबर बॉयज जीते हैं और फिर जाके 32 में हारे। पहले तो ऐसे टीम पूल से आउट होते थे मगर अभी ग्रो कर रहे हैं।
2: यहाँ कुछ मेडल मिलेगा, चाहे मैं ईपी की बात कर लें, फॉइल की बात कर लें, साइबर की बात कर, कहीं लग रहा हूँ।
1: हाँ सर, उम्मीद है काफी। देखिए अभी से ईपी के लड़के भी काफी अच्छा कर रहे हैं, उनके भी चांसेस हैं और टीम्स में भी हैं, और हमारी जो लास्ट ओलंपिक खेली हुई भवानी देवी, मिस भवानी देवी साइबर में, उनकी भी काफी मतलब दावेदारी है कि वो भी मेडल आ सकता है। ऐसा नहीं कि मेडल की उम्मीद है ही नहीं, मेडल की उम्मीद है अभी, अब देखते हैं अभी कौन से इवेंट में आने का चांस है।
0: पहली बार भारत में आयोजित फेंसिंग के इस तरह के बड़े आयोजन से युवा तलवारबाज भी बेहद उत्साहित हैं। आइए आपको ऐसी ही एक फेंसर से मिलवाते हैं जो बिहार के मोतिहारी से आती है।
3: मेरा नाम केसर राजा है, मैं यहाँ पे मैचेस देखने आई हुई थी क्योंकि कंपटीशन हो रहा है और इंडिया होस्ट कर रहा है, इस करके हम लोग बस मजे करने आए थे कंपटीशन देख के सीखने के लिए। पर यहाँ पे हमें ओलंपिक मेडलिस्ट दिखे तो और एक्साइटमेंट बढ़ गई। अच्छा लग रहा है देख के कि इंडिया बहुत डेवलप हो रहा है और इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने एशियन चैंपियनशिप को पूरे अच्छे से कंडक्ट कराया, बिना किसी कमी के, बिना किसी गलतियों के। हम लोग बाहर खेलने जाते हैं अदर कंट्रीज में तो वहाँ से भी बहुत अच्छा कराया है यहाँ पे, तो इसके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है।
2: कितना एक्साइटमेंट है यहाँ को देखने के लिए।

0: बहुत एक्साइटमेंट है, पूरा माहौल बहुत एनर्जेटिक है, सारे फेंसर्स बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ खेल रहे हैं, कुछ हार भी रहे हैं बट कोई बात नहीं, अगली बार वो अच्छा करेंगे।
1: आपके कौन पसंदीदा एथलीट फेंसर आए हैं जिसको आप देखना चाहते हैं?
0: एक तो सिब्बर के हैं, ओसांगो, इंडिया के मेरे पर्सनल फेवरेट फेंसर है करण सिंह गुज्जर, तो ये दोनों।
1: अपने बारे में थोड़ा बताइए।
0: मैं तो बिहार में ट्रेनिंग करती थी, स्कूल से ज्वाइन किया था, स्कूल में एक सर आए थे बस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो वहाँ से ज्वाइन किया था। मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से कोई भी नहीं, मैं इकलौती लड़की हूँ, और उसके बाद फिर मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मेरे मेडल्स आए, तो मुझे खेलो इंडिया स्कीम में फिर इंडक्शन हुआ मेरा, और फिर मैं ASI ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया। अभी मैं करंटली आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग कर रही हूँ।
1: बिहार में कहाँ से है और किस स्कूल में पढ़ी है, कैसे आप यहाँ तक पहुँची?
0: मैं बिहार में मोतिहारी से हूँ, और मैं पहले कैम्ब्रिज इंटरनेशनल अकेडमी में पढ़ती थी, तो मैंने वहाँ से फेंसिंग स्टार्ट की थी, फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया था, जीवन इंटरनेशनल स्कूल, तो मैंने वहाँ से खेला, और जीवन इंटरनेशनल स्कूल से मैंने स्कूल नेशनल्स में गोल्ड मेडल सिक्योर किया और सिल्वर मेडल सिक्योर किया था स्कूल नेशनल्स में। और फिर अभी हाल ही में मैं एशियन चैंपियनशिप खेलने गई हुई थी इंडोनेशिया जकार्ता, तो मैं अभी वहाँ से खेल करके आई हूँ।
1: भारत की ओर से अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का मजबूत दल मैदान में उतरा है, घरेलू दर्शकों को भारतीय खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन और पदकों की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता आगामी 2026 एशियाई खेलों की तैयारियों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। माना जा रहा है इस तरह के आयोजन से भारत में फेंसिंग खेल को नई पहचान मिलेगी। आज पहले दिन भारत की महिला खिलाड़ियों ने फाइनल और पुरुषों ने सेबर इवेंट में भाग लिया। हालांकि आज का दिन भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा और राउंड अप 32 से आगे भारतीय फेंसर नहीं बढ़ पाए। मिलते हैं राउंड अप 32 में हार कर बाहर होने वाली ऐसी ही एक तलवारबाज से।
2: हेलो आकाशवाणी लिसनर्स, मेरा नाम कनुप्रिया चावला है, मैं हरियाणा से हूँ और मेरी एज 18 ईयर है। मेरा ये तीसरा सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप है और पहले के मुकाबले अभी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट तो मेरे को फील हुआ। हालांकि मेरा रैंक 20th आया, लेकिन मेरे को खेल के काफी अच्छा लगा।
1: क्या हुआ आज की इवेंट के बारे में जरा बताइए, राउंड ऑफ 32 तक पहुंची, वहां से बाहर हुई?
2: सबसे पहले तो हमारा पूल टेबल था जिसमें मैं 4 बाउट्स जीती थी और 2 हारी थी, उसकी वजह से मेरा रैंक 19 आया और उसी के कारण मेरा पहला बाउट इंडिया के साथ ही हो गया था और मैं वो जीती 59 से। उसके बाद मेरा फिलीपींस के साथ था, वो काफी स्मार्ट फेंसर थी, काफी अच्छे से उसने खेला, उसकी टेक्निक्स बहुत अच्छी थी और काफी फास्ट थी। हालांकि मेरा स्कोर उसके साथ 15-6 था, लेकिन मुझे उससे खेल के काफी एक्सपीरियंस मिला और मैंने मेरी गलतियों से सीखा और मैं कोशिश करूंगी कि अगली बार जो मैंने अब की बार सीखा है उससे मैं और अच्छा खेलूं।
1: कॉम्पिटिशन लेवल कैसा
2: है? हाई लेवल है क्योंकि एशियन चैंपियनशिप है और एशिया की काफी लड़कियां जो यहाँ खेल रही है, ओलंपियंस है, उनकी टीम ओलंपिक्स खेली हुई है, ओलंपिक मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, तो लेवल काफी हाई है। कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाएं।
1: नई दिल्ली में जारी एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप पर आधारित रिपोर्ट में आज बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ भारत मंडपम से आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।

तलवार बाजों के कारनामे तो अभी देखने बाकी हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं, निश्चित तौर पर इसमें हम कुछ अच्छे तलवारबाज हमें मिले जो आगे चल के भारत का जो प्रतिनिधि है वो प्रतिनिधित्व जो है वो कर पाए आने वाले और भी टूर्नामेंट में। चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधा हम हॉकी के टर्फ की ओर, जहां पर FIH हॉकी प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को एक तरफा मुकाबले में 3-1 से हरा दिया। मनदीप सिंह ने 7वें मिनट में और शिलानंद लाकड़ा ने 13वें मिनट में, नीलकांत शर्मा ने 35वें मिनट में गोलों की बदौलत भारत ने शानदार जीत हासिल की है। इस मुकाबले में भारतीय टीम का डिफेंस भी काफी मजबूत नजर आया। मिडफील्डर हार्दिक सिंह और मिडफील्ड से खेल को संभालने के उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं मनप्रीत सिंह भारत की ओर से सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने दिलीप तिर्की के 412 मैचों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 413 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले मनप्रीत अब पुरुषों की ऑल टाइम इंटरनेशनल कैप सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी की लिस्ट में बेल्जियम के जॉन डोमैन और नीदरलैंड के ट्यून डी मेजर, ऑस्ट्रेलिया के एडी ओकिनडेन और ग्रेट ब्रिटेन के बैरी मिडिल्टन के बाद 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। भारत ने पोजीशन कंट्रोल करके मैच की अच्छी शुरुआत की और जर्मनी पर दबाव बनाए रखा। इसका फायदा 7वें मिनट में मिला जब मनदीप ने गोल के सामने तेज टर्न से गोल करके भारत को 1-0 की जो बढ़त है वो दिला दी। पहले क्वार्टर को खत्म होने से ठीक पहले लाकड़ा ने भी अपना जो हुनर है वो दिखाया। उसके बाद दूसरे क्वार्टर में जर्मनी ने वापसी करने के इरादे से अपना खेल बदला जरूर, लेकिन भारतीय खिलाड़ी के सामने ये सारे ही खिलाड़ी

0: कुछ कम नजर आते रहे। भारत ने दूसरे हाफ में भी गोल करने की कोशिश की और टीम को सफलता 35वें मिनट में मिली, जब नीलकांत शर्मा ने जर्मन डिफेंडर्स को छकाते हुए शानदार 16 रन बनाया और गेंद को गोल में डालकर भारत की बढ़त 3-0 कर दी। इसके बाद दोनों टीमों ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए और बराबर मौके बनाए। जर्मनी को आखिरकार तीसरे क्वार्टर में सिर्फ 20 सेकेंड बाकी रहते एक गोल करने का मौका मिला, जिसका फायदा उठाते हुए राफेल हार्टकॉफ ने 45 मिनट में गोल करके स्कोर को 3-1 कर दिया। लेकिन आखिरी क्वार्टर में जर्मनी की इस रफ्तार के बाद भी जो भारतीय टीम है उनके हाथों से जर्मनी की टीम जो है वो जीत नहीं छीन पाई और जीत का जो सहरा सजा वो सजा भारतीय टीम के नाम। अपना अगला मुकाबला भारतीय टीम अब खेलेगी और देखते हैं कि उस मुकाबले में किस तरह से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो प्रदर्शन करते हैं। वही बात करते हैं अब महिला हॉकी की भी। FIH महिला नेशंस कप में पहला सेमीफाइनल मुकाबला भारत और चिली के बीच 20 जून को खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मैच का जो महत्व है और टीम का जो फॉर्म है ये दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जीतने वाली टीम को FIH प्रो लीग में प्रमोशन मिलेगा। भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है और अपने पिछले तीनों पूल मैच अमेरिका, जापान, उरुग्वे के खिलाफ जीतकर अजय रही है। दूसरी ओर चिली की टीम ने भी पूल बी में दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उरुग्वे के खिलाफ पिछले रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम 1-0 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 3-2 से जीती थी, जिससे दीपिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 पेनल्टी कॉर्नर दागे थे। हेड टू हेड की अगर बात करें तो पिछले मुकाबले में आंकड़े पूरी तरह से भारत के पक्ष में हैं। पिछले 6 भिड़ंत में से भारत ने 5 जीत हासिल की है जबकि एक मुकाबला ड्रॉ रहा। इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी मुकाबला FIH नेशंस कप का 2022 में हुआ था, जहां भारत ने चिली को 3-1 से हराया था। तो मुख्य जो पॉइंट है और जो मुख्य खिलाड़ी है वो है स्टार ड्रैग फ्लिकर अटैकर दीपिका, जिन्होंने उरुग्वे के खिलाफ मैच में शानदार लय दिखाई, और कप्तान सलीमा टेटे जो मिडफील्ड को संभालते हुए काउंटर अटैक का जो नेतृत्व है उसे संभालेंगी। और चिली की टीम अपने मजबूत डिफेंस और शुरुआती हमलों पर निर्भर करती है, इसलिए भारतीय डिफेंस को भी शुरुआत से ही सतर्क रहना होगा। चलते हैं हम अपने सहयोगी संचित के पास अन्य खबरों के लिए।
1: जी आइए सुनते हैं मकाओ ओपन सुपर 300 में क्या रहा। अश्विता चालिहा ने शुक्रवार को कोरिया की किम मिनसन पर शानदार जीत दर्ज करते हुए मकाओ ओपन सुपर 300 में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए महिला एकल सेमीफाइनल में जगह बनाई। अश्विता ने किम को 21-16, 21-18 से सिर्फ 37 मिनट में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उनका मुकाबला कोरिया की ही एक अन्य खिलाड़ी पार्क गायुन से होगा। अश्विता और किम के बीच पहला गेम 14-14 तक बराबरी का रहा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने लगातार 4 अंक जीतकर बड़ी बढ़त बना ली और फिर से बरकरार रखा। दूसरे गेम में किम ने पहल की और मध्यांतर तक अश्विता पर 11-5 की बढ़त बना ली, लेकिन बाएं हाथ की भारतीय खिलाड़ी ने दबाव बनाए रखा और 16-18 के स्कोर पर लगातार 5 अंक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ अश्विता चालिहा अब सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और आकाशवाणी की तरफ से हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं।
0: और शुभकामनाएं हम यहां पर देंगे यहां पर नीरज चोपड़ा को भी, जो कि आज दोहा डायमंड लीग में एक बार फिर से मैदान पर उतर रही हैं और चोट की वजह से एक लंबे समय तक प्रतियोगिताओं से दूर रहे थे और अब वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश ये है कि जो उनकी लय है वो प्रभावित ना हो। तो यहां पर प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा जो उनका मुकाबला होगा वो होगा श्रीलंका के स्टार रुमेश थरंग से, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले 90 मीटर का आंकड़ा पार किया था। नीरज चोपड़ा अपनी वापसी पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
2: इट्स ऑलवेज फील अमेजिंग टू बैक इन कॉम्पिटिशन सीजन एंड इन दोहा स्पेशली, एंड लिटिल बिट नर्वस आफ्टर स्पीकिंग फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल आफ्टर लॉन्ग टाइम। सो आई हैड सम इंजरी लास्ट ईयर बिफोर टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप, वी वर कल आउट एंड आई ऑल्सो कम्पीट इन टोक्यो, बट दैट वॉज नॉट I don't think so. That was good decision because I already know that I have some problem. But that was last competition, so I decided to compete there. And then we work a lot, and then I sit together with my team and my physio, and then we work on every part. And we just decide. We start throwing 1.5 months ago, and we take our time. I talk to Doha, and I ask them if. It's possible if I will let you know in very short period, like one week ago, and then they said yes, and then we decide after my last session, okay, let's compete in Doha. I was in Mecklingen, it's a Swiss Olympic training center there, so I really like that place. It's in mountain and very quiet, so you can focus.

0: focus on your things and on your technique. So I really like that place.
1: तो अब देखना होगा क्योंकि आज देर रात नीरज चोपड़ा जो है वो अपने मुकाबले खेलेंगे. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट नीरज चोपड़ा. चलिए अब चलते हैं शूटिंग की तरफ, जहां पर शूटिंग जगत से आ रही है बहुत ही शानदार खबरें, क्योंकि भारत जो है आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप में खेल रहा है, जहां पहला दिन तो शानदार रहा. उसमें 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किया. भारतीय निशानेबाजों ने प्रतियोगिता की शुरूआत बेहतरीन अंदाज में की और पदक तालिका में एक मजबूत स्थिति जो है वो अपनी दर्ज करवा ली. प्रतियोगिता के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया. खासकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का दबदबा साफ दिखा, जहां पर सेजल कांबले ने जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 1 स्वर्ण पदक दिलाया और उनकी सटीकता और शांत खेल ने उन्हें शीर्ष स्थान तक पहुंचाया और भारत के लिए पहले दिन की शुरूआत शानदार तरीके से की. मेडल जीतने के बाद सेजल ने क्या कहा, लीजिए सुनिए.
2: Feeling grateful for all the hard work I've been through and all the sacrifices. And well, I'm most grateful to my coaches, my parents, and my friends and my institute. Yeah, it's like we have seen each other's worst and each other's best, and we have trained together for so long, and it feels so good to win together.
1: इसी के साथ यहां पर भारत के ही हिमांशी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, कांस्य पदक जीतकर देश को खुशी दिलाई. इसके बाद अगर बात करें हम आज के मुकाबलों में भी, तो आज का दिन भी भारतीय शूटिंग के लिए खुशी का दिन लेकर आया. 25 मीटर रैपिड पिस्टल में समीर ने गोल्ड जीता, तो वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में महिला जूनियर में प्राची गायकवाड ने सिल्वर मेडल जीता. अगर अंक तालिका पर नजर डाले तो भारत इस वक्त 3 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज जीतकर टोटल 7 पदक के साथ टॉप पर है. समीर ने क्या कहा मेडल जीतने के बाद, आइए सुनते हैं.
3: इट्स फील ग्रेट टू बी अ जूनियर वर्ल्ड चैंपियन इन 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप. आई मिस द गोल्ड, आई वॉज सेकेंड, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू क्लेम द गोल्ड, बी द वर्ल्ड चैंपियन.
1: यहाँ पर वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं. चलिए अब वर्ल्ड चैंपियन से निकलकर वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की तरफ चलते हैं, जहां पर स्टेज 2 के जो मुकाबले हैं उसमें आज 5 मैच जो है वो खेले जाने थे. 5 मैचों में मीनाक्षी, स्नेह, निखिल, प्राची और दीपक का मैच होना था. इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे जो 4 बॉक्सर्स हैं यहां पर स्नेह को छोड़कर, निखिल, प्राची और दीपक, उनमें से सभी का जो मेडल है वो पक्का हो चुका है. और इसके साथ ही अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जहां पर हमारी जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं मनिका बत्रा, उनको घरेलू इवेंट्स में उनकी जो गैर मौजूदगी थी उसकी वजह से उन्हें रिजर्व में रखा गया है. उन्हें 7 सितंबर से 4 अक्टूबर तक यहां पर जो एशियन गेम्स होंगे उनमें उनकी जगह नहीं है. फिलहाल जो टीम में है उनमें काफी सारे नाम हैं और इस वक्त समय की कमी है, तो हम आपको अपडेट जो है वो अगले कार्यक्रम में जरूर देंगे. इसी के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, मुझे कविता शर्मा
4: और संजय जैन
1: अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ आप सभी से लेते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी से अनुमति. नमस्कार, गुड नाइट.
5: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 8:30 हो चुके हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गीत मालिका का। तो आइए सुनते हैं इस माला का ये पहला मोती जो है फिल्म अग्निपथ से, और इस गीत को गाया है सोनू निगम ने।

कुछ गीत लिखने वालों ने सिर्फ गीत नहीं लिख दिए हैं, वो दिल के जज्बे, वो इस हद तक कंफ्यूज हो जाता है कि वो ये बात कहे या ना कहे, या इस मौके पर वो खुश हो या रोए, या वो किस तरह से रिएक्ट करे। ऐसे वक्त में जो शायर होता है, जो गीतकार होता है, जो गीत लिखता है, वो भी उस कर्ब से, उस दर्द से गुजरता है, और उस दर्द को या उस खुशी को जो वो बयान करता है, तो हम सभी के दिलों पर चढ़ जाता है, हमारे दिलों दिमाग पर वो असर डाल देता है कि आप अपनी कैफियत को, अपनी उस सिचुएशन को उससे जोड़कर देखने लगते हैं। हर एक लफ्ज, हर एक शेर आपकी बयान हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ ये गीत था, और अगला गीत भी कुछ कुछ ऐसा ही है। फिल्म है तमाशा, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक ने, और मुझे ये गीत बहुत बहुत बहुत पसंद है। उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगा, और मुझे लगता है कि शायद शायद ये इस कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अभी आपने गीत मालिका कार्यक्रम सुना। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। ठीक 9 बजे समय होगा इवनिंग न्यूज का और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में खबरें।

ठीक 10 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। और ठीक 10:10 पर आप सुनेंगे माटी के रंग। इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं श्वेता सुष्मिता झा से मैथिली गीत। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए, अब से कुछ ही देर में समाचार संध्या सुनेंगे आप। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित, बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत

0: रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रूपये से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हमारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके

0: सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: फॉरेन पॉलिसी,
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: रिमेन्स अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ स्ट्रगल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण की प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
6: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, तो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
5: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
7: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़क का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
5: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए ASCAP 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें ASCAP.edcin.co.in पर।
1: ये ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है। यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Aeon in women's singles semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today disbursed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function.

मुशायरा शब के 10:30 से 11:45 तक आज आप सुनेंगे फरमाइश फिल्म नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। दौरान प्रोग्राम शब के 11 बजे खबर बड़े सगीर से का बुलेटिन नश्र किया जाएगा।

11:45 मिनट पर कवालिया नश्र की जाएंगी। आज के हमारे फनकार होंगे गुलाम हुसैन खान और हमनवा। आलमी खबरें शब के 12 बजे आप सुनेंगे। 12:10 पर क्लास की मौसीकी के बज में आज आप सितार पर बजाया हुआ राग जोग सुन सकेंगे। फनकार होंगे उस्ताद इमारत हुसैन खान। आखिरी शब प्रोग्राम के तहत चंद सदाबहार फिल्मी नगमे हम पेश करेंगे। शब के 12:30 पर 12:50 पर खबरें नश्र की जाएंगी और इसके साथ ही रात के 1 बजे हमारी आज की तीसरी और आखिरी मजलिस की नशरात इख्तिताम पजीर होंगी। सामीन, ये थी झलक आज की तीसरी मजलिस में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशे फनकार सिलसिले के तहत चंद गैर फिल्मी गजलें। प्रोग्राम के आगाज में अभी आप समाप्त फरमा रहे हैं पयाम सईदी की यह खूबसूरत गजल। गजल सरा है चंद अंदाज़।

0: चंदाइयों के दौरान खवातीन ने बड़ी तादाद में कानूनी पेशा इख्तियार किया है। भारत ने पिछले 12 साल में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले जिक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए उसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकेनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेइंतहा हैरत होती है जब उसका ही राक्षस उसे जकड़ लेता है। ये बातें अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कही। उन्होंने ये बातें उस वक्त कहीं जब पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने अक्वामे मुत्तहिदा हाई कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान और ओआईसी के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दों को पनाह देने ट्रेनिंग देने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने की बात को बड़े फखर से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर बमने इल्जाम को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था है और रहेगा। वाहिद हल तलब मसला पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैर कानूनी कब्जा और उनकी वापसी है। मोहतरमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास आबी मुआहदे का जिक्र करते हुए इसे फरसुदा करार दिया। उन्होंने कहा कि सिंध तास आबी मुआहदे पर हमारा मौकिफ सबको मालूम है। ढाइयों पुराना मुआहदा अप्रैल 2025 में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था जिसमें 26 आम शहरी हलाक हुए थे। इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इस लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी हो गई थी। इससे पहले आज जनूबी लबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। कल रात इसराइल की फौज ने जनूबी और मशरकी लबनान पर हमले किए थे। हिजबुल्ला ने शदीद लड़ाई की खबर दी थी। लबनान की वजारत सेहत ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 21 अफराद हलाक हुए हैं जबकि इसराइल ने कहा है कि उसके 4 फौजी हलाक हुए हैं। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रूपये के बकदर तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा वर्षों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने इख्तरा और सनअतकारी में कायदाना रोल अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके निफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के कायम पर जोर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। और लबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बरह रास्त अमन मुजाकरात मुलतवी हो गए हैं। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर रजामंद हो गए। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मुशायरा।
1: आज के मुशायरे में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारी इस मुशायरे में जो शोरा हिस्सा ले रहे हैं उनके नाम हैं अबू जर नवैद करकपुरी, अहमद अलवी साहब, सादिक लखनवी और नाचीज अजरा नकवी। तो आइए इस मुशायरे का आगाज करते हैं। और सबसे पहले आज मैं ज़हमत सुखन दूंगी हमारे नौजवान शायर अबू जर नवैद करतपुरी साहब को, खुशगो खुशगुलू शायर अबू जर नवैद करतपुरी।
2: गजल का मतलब हाजिर करता हूँ।

0: बहुत शुक्रिया। क्या आपने समा बांधा है। अभी आप सुन रहे थे हमारे खुशगुलू और खुशगो शायर अबू जर नवैद करतपुरी को, और आइए अब मुशायरे को एक और सिम्त ले चलते हैं, यानी तंजो मिजाह की तरफ। अब मैं दरख्वास्त करूंगी जनाब अहमद अलवी साहब से कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें।
1: अते समात फरमा रहे हैं और एक सेहरा पढ़ूंगा मैं आज, तो कता समात फरमाए कि बंद आंखों से किसी पर भी भरोसा न करो।
2: वाह।
1: बंद आंखों से किसी पर भी भरोसा न करो, हर कोई शहर में है काम दिखाने वाला।
2: वाह।
1: बंद आंखों से किसी पर भी भरोसा न करो, हर कोई शहर में है काम दिखाने वाला।
2: वाह।
1: पल में हो जाती है उंगली से अंगूठी गायब।
2: बहुत अच्छा।
1: पल में हो जाती है
2: उंगली
1: से अंगूठी गायब, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने
2: वाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: बंद आंखों से किसी पर भी भरोसा न करो, हर कोई शहर में है काम दिखाने वाला।
0: क्या बात है।
1: पल में हो जाती है उंगली से अंगूठी गायब, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला।
2: बहुत
0: अच्छा,
2: बहुत अच्छा।
1: सेहरा पढ़ूंगा मैं कि ज़ईफ दूल्हों पे लगता है क्या भला सेहरा।
0: बहुत अच्छा।
1: ज़ईफ दूल्हों पे लगता है क्या भला सेहरा, मेरे बने को मुबारक हो दूसरा सेहरा। रुखे तबाह पे ये बेमिसाल लगता है, रुखे तबाह पे ये बेमिसाल लगता है, खंडर से चेहरे पे सेहरा कमाल लगता है। खंडर से चेहरे पे सेहरा कमाल लगता है, अजीब लुत्फ है जन्नत का अब्देसानी में, अजीब लुत्फ है जन्नत का अब्देसानी में, ट्विस्ट आता है बूढ़ों की जिंदगानी ट्विस्ट आता है बूढ़ों की जिंदगानी में, और कदीम मकबरे भी आलीशान लगते हैं, कदीम मकबरे भी आलीशान लगते हैं, हसीन सेहरे में बूढ़े जवान लगते हैं।
2: बहुत अच्छा।
1: खिजा में जैसे कि मुरझाई कली खिलती है, नई दुल्हन से बुढ़ापे को सनद मिलती है। नई दुल्हन से बुढ़ापे को सनद मिलती है, मकां पे जैसे पलस्तर नया चढ़ाते हैं, मकां पे जैसे पलस्तर नया चढ़ाते हैं, अधेड़ दूल्हे दुल्हन नौजवान लाते हैं। नई दुल्हन है नया साल है नया चूल्हा, नई दुल्हन है नया साल है नया चूल्हा, मेरी दुआ है बने आप हर बरस दूल्हा। जमी का शम्मा सुरैया सबा हो या शबनम, रही है साथ हमेशा बरामदी बेगम। कभी है चीन की दुल्हन कभी है जापानी, रही नशेरे से महरूम इनकी पेशानी। अंधेरी रात ज़ईफ़ी में सुहानी कर दी, हर एक अहलिया दो दिन में पुरानी कर दी।
2: बहुत अच्छे।
1: के अहलियाओं में तौहीद के नहीं खायल, गई जो ज़ोहरा रुकैया पे हो गए मायल। के बीवियों में तायुन नहीं किया हद का, खुला है बाब अभी तीसरी कियामत का। वली में हमको खिलाते रहे हमेशा आप, लगे ना अक़्दे मुसलसल में कभी फुल स्टाप। हो आप 80 के और 16 साल की बेगम, खुदा करे के लिखे तीसरा भी सेहरा हम।
0: क्या बात है। ये थे जनाब अहमद अलवी।

0: कभी चाहत के होंठों से किसी जलते हुए माथे को चूमा है।
1: बहुत अच्छा।
0: मैं तुमसे पूछती हूँ कि तुमने माँ की बाहों की हलावत, खानदानों की शराफत, प्यार की राहत नहीं पाई? जरा सोचो, ये सारी जादू नगरी मेहरबान दुनिया तुम्हारी है। अब एक गजल के चंद अशआर पेश करती हूँ। निशान मंजिल नजर से ओझल, सितारे रहनुमा कहाँ है? जो झिल मिलाता था धुंध में भी, यकीन का वो दिया कहाँ है? बस एक सादा सी बात, जिससे ये दिल अभी आशना कहाँ है? खुद अपने अंदर तलाश कर ले, सुकून इसके सिवा कहाँ है? और ये शेर खास तौर पे तवज्जो की तालिब हूँ कि अभी तो तशकीक के अंधेरे में अक्ल व दानिश भटक रहे हैं। जो कल्ब को आईना बना दे, अभी वो सजदा किया कहाँ है? और अभी तो लफ्जों का खेल ही है, ये शायरी ये गजल सराई, अभी तो लफ्जों का खेल ही है, ये शायरी ये गजल सराई, सुखन को जो मोतबर बना दे अभी वो लहजा मिला कहाँ है? अभी तो लफ्जों का खेल ही है, ये शायरी ये गजल सराई, सुखन को जो मोतबर बना दे अभी वो लहजा मिला कहाँ है? थे बेगरज दोस्ती के रिश्ते था सादा सच्चा सा रब्ते बाहम, है बस मरासिम की दुनियादारी वो सिलसिला अब रहा कहाँ है? और आखिरी शेर है, खबर कोई खैर की सुनाए मसर्रतों की नवेद लाए, सुलगती धरती पुकारती है कहाँ है बादे सबा?
1: क्या कहना।
0: अब अगर इजाजत हो मैं अपना एक और गजल छोटी सी है, बल्कि मैं आप कहें तो मैं एक नज्म भी पेश करती हूँ। ये बड़ी अजीब नज्म है, ये ईद पर मैंने लिखी थी। मैं सऊदी अरब में थी, वहाँ हमारे बहुत से कामगार लोग रहते हैं जो अकेले बरसा बरस रहते हैं, तो ये नज्म मैं पेश करना चाहती हूँ कि ईद की सुबह अकेली है मेरे कमरे में। बड़ी दिलगीर है, रंजीदा है, अब यहाँ सुबह के 6 बजते हैं और दूर वहाँ, अब यहाँ सुबह के 6 बजते हैं बहुत दूर वहाँ, दूर बहुत मेरे इस शहर में, अब वक्त भला क्या होगा, अब तो शायद मेरे घर आंगन में चहचहाते हुए खुशियों के परिंदे उतर आए होंगे, झिल मिलाने लगे रंगीन दिलावेश से मंजर मेरी नम आंखों में, नन्नी बेटी के दुपट्टे में लगी बेल की झिलमिल में वहाँ ईद की सुबह चमकती होगी, मेरा बेटा नई पोशाक पहनकर बड़े अंदाज से निकला होगा, जानता हूँ मेरी बीवी की हथेली पे बहुत रचती है, सुर्ख मेहंदी से सजे हाथों में चूड़ियाँ उसने धनक रंग की पहनी होंगी, और शीर खुरमा का पतीला अभी तैयार किया होगा मेरी अम्मा ने, और ईदी के लिए अब्बू ने जेब से पर्स निकाला होगा ईदगाहों में वही पहली

0: सी रौनक होगी जैसी होती थी मेरे बचपन में, अभी कुछ देर में इन सब से मेरी फोन पे बातें होंगी।
1: वाह वाह।
0: अभी कुछ देर में इन सब से मेरी फोन पे बातें होंगी, फोन आवाज से, लहजों की हलावत से, मोहब्बत भरे पैगामों से मेरी तन्हाई का दरमा होगा।
1: वाह।
0: फिर दुआ करके यही नींद की आगोश में खो जाऊंगा, फिर दुआ करके यही नींद की आगोश में खो जाऊंगा। यूं ही आते रहें घर आंगन में, शहर की गलियों में बाजारों में, यूं ही आती रहें घर आंगन में, शहर की गलियों में बाजारों में, ईद की रौनकें हर साल यूं ही रहमते रमजान के बाद, दूर या पास रहें सभी आबाद रहें, सबके दिल शाद रहें। तो चलते चलते मैं अज़रा नक़वी एक और गजल पेश करती हूँ कि न तोड़ अपनी अना का हिसार खामोशी, न तोड़ अपनी अना का हिसार खामोशी, अभी नहीं है फजा साजगार खामोशी। हमें पता है कि हम जीत कर भी हारेंगे, हमें पता है कि हम जीत कर भी हारेंगे, तो फिर न कैसे करें इख्तियार खामोशी।
2: अच्छा, बहुत अच्छा।
0: तो फिर न कैसे करें इख्तियार, तमाम तमाम खोखले लफ्जों से मावरा हो जा,
1: तमाम खोखले लफ्जों से
0: मावरा हो जा, कुछ और खुद को बना बाविकार खामोशी, कुछ और खुद को बना बाविकार खामोशी, हर एक का मुंह न तकाकर उदास आंखों से, नहीं किसी का कोई एतबार
1: खामोशी,
0: नहीं किसी का कोई एतबार खामोशी। बहुत ही शोर है दुनिया के कारखाने में, कहाँ से मांग के लाए उधार
2: खामोशी,
0: कहाँ से मांग के लाए उधार
2: खामोशी।
3: सामईन, अभी आप आज के मुशायरे की इस खूबसूरत महफिल से लुत्फंदोज हो रहे थे। शोहरत थे जनाब मोहम्मद अबू जर, जनाब अहमद अलवी और जनाब सादिक। मुशायरे की निदामत कर रही थी मोहतरमा अज़रा नक़वी। सामीन, अभी आप स्टूडियो मुशायरा समाप्त फरमा रहे थे, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशरियात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और DD फ्री डिश पर दस्तियाब हैं। शब के 10:30 हो चुके हैं। ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम तामले इरशाद का, मेजबान मोहम्मद इमरान का। प्यार भरा आदाब कबूल कीजिए।

आइए दोस्तों सुनते हैं मजरू सुल्तान तारिक अली का ये नगमा, जिसकी तर्ज बनाई है मदन मोहन ने फिल्म चिराग से, आवाज मोहम्मद रफी की, पसंद आप दोस्तों की। चिराग फिल्म का इस नगमे को पसंद किया है मंगल जनागल, श्रीमती रोशन जनागल और अंकुल जनागल। आप हैं चक 5 एमडी पटोरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, और जयराम सिंगांकर, दिशांत कुमार सिंगांकर और अर्पिता जी, आप हैं वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से।

गांव कल्याण मलका जिला बठिंडा पंजाब से अमित पाल सिंह रामगढ़िया परमिंदर और इसी नगमे को सुनने की फरमाइश क्षमता करी है। कस्बा दिलराम से इरशाद अहमद शाह शाहजहां बेगम और मरियम और जैनब की जानिब से, पटेलनगर मलवाड़ से डॉ रमेश कुमार जजोरिया गगनदीप जजोरिया और आरजू जजोरिया और पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता भगत की सुतासु। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले सुजाता हिवराले और प्रतीक हिवराले और साईनगर अरवी महाराज से नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शी मिर्गे और डॉ प्रियंका काल पांडे। जिलों की नगरी उदयपुर से राजकुमार माथुर अशरफ खान और गोपाल बाबू सिंधी। छत्तीसगढ़ से मिश्री देवी साहू और अहमदीन बनाटी मुमताज बनाटी और रियाज बनाटी आप हैं गढ़मोहल्ला मानिंगरपुर से। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी तनुजा जोशी और ध्रुवी जोशी। सलाई सुकना नेपाल से अरुण कुमार शर्मा रिमी देवी शर्मा और राहुल कुमार शर्मा। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत उत्तर प्रदेश से आसिफ अली खान मुस्कान आसिफ और शारिक अली खान। राजावत कम्प्लेक्स में सॉक एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज मधु राजावत और सुरक्षित का ईमेल हमें मिला इस नगमे के लिए। ऑक्सीजन पार्क राउंड नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने अर्चनाते गोंडाने और हिरामन शिंदे। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी रजा बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। किशोरनगर अमरावती के हिरामन शिंदे शिलादेवी शिंदे और मुंशक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मन छिपा कपिल छिपा पूजा परिहार। उस्मान शेख फौजी सारा बानो और करिश्मा शेख का भी ईमेल हमें मिला है आप हैं जिला लातूर हिपसोगा से। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक कमल पाठक गव्या मल्होत्रा और पुणे जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत अरुणा भगत और सुलोचना भगत। नया नगर सुपौल बिहार से रंजन श्वेता रंजन रजनीश कुमार और अनंत कुमार। कृष्णाकरण हांसे से सुभाष योगी राजू मिगलानी बब्बू डब्बू का ईमेल हमें मिला इस नगमे को आप पसंद करते हैं और सुनने की फरमाइश हम तक आई। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पुहारकर नर्मदा पुहारकर और कुमारी सुजाता पुहारकर। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फुलवाले इकबाल अहमद और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी आशना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

देवर देवर शारदा देवर पंकज का इंद्रमी मिला इस नगमे के लिए आपने गोकुल धाम राजकोट से और इस नगमे को सुनना चाहे अकोला महाराष्ट्र से गजानन कुंभार पद्मावती कुंभार और कुमार दले श्रीराम से अशोक दले सविता दले और अंकित दले और नवादा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत अर्जुन भारती और पालीसीपुति भुवनेश्वरी देवी हरियाणा सरदाना मेरठ से अनिल जैन श्याम जैन और मास्टर जीवन जैन महाराज कीर्तन पूरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी और मीनाक्षी गोस्वामी तख्तपुर छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार साहू अंतरा देवी और प्रभा देवी महल मैसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर जहानाज तल जहानाज और फरह जहानाज की पसंद गुलबर्गा से मोहम्मद रुकमुद्दीन मंठाल आसिफ इकबाल अशबीर बनाटी और रात कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दीप रमेकर हर्ष रमेकर और अक्षर रमेकर किशोरनगर अमरावती से हीरामन शिंदे शिलादेवी शिंदे और सिरधार गुंडा ने भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा और जिन्होंने ये नगमा पसंद किया है आप हैं नीलू मेघ नीलम डॉक्टर वंदना कुमार बिट्टू कुमार राजधानी रायपुर से तो आप दोस्तों की पसंद आपकी नजर

बनाने की सहूलत की तारीखी संजमील की निशानदेही करता है। ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है, जो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। ये देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर ओडिशा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरत हाल के पेश नजर मयूरभंज जिले की डंडा बोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से रायरंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सैटेलाइट सेंटर और रायरंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का अफ्तिताह किया। इस पहल से शिमाली ओडिशा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मयारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी साल 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली साल में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए के बकदर थी, वो अंदरूनी मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाजारी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस ए एस चंद्रूकर पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। अदालत उस्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी के एक अफसोसनाक हादसे में मुआवजे के केस में सामने आया है, जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साल बेटे को खो दिया। भारत ने अकवामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए उसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेइंतहा हैरत होती है जब उसका ही राक्षस उसे जकड़ लेता है। ये बातें अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मिशन मुस्तकिल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कही। उन्होंने ये बातें उस वक्त कही जब पाकिस्तान और इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने अक्वामे मुत्तहिदा हाई कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। मुतमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान और ओआईसी के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक को इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दों को पनाह देने, ट्रेनिंग देने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने की बात को बड़े फखर से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्जाम को यकसर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। वाहिद हल तलब मसला पाकिस्तान का भारतीय इलाकों पर गैरकानूनी कब्जा और उनकी वापसी है। मुतरमा सिंह ने पाकिस्तान के साथ सिंध ताश आबी मुआहदे का जिक्र करते हुए इसे फरसूदा करार दिया। उन्होंने कहा कि सिंध ताश आबी मुआहदे पर हमारा मौकिफ सबको मालूम है। दहाइयों पुराना यह मुआहिदा अप्रैल 2025 में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुअत्तल कर दिया गया था, जिसमें 26 आम शहरी हलाक हुए थे। इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इन दोनों की लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी कर दी गई थी। ये जंगबंदी आज मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिजुल अमल हो गई है। अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि अमरीका और कतर के मुज़ाकरातकारों ने ईरान की मदद से ये समझौता तय किया था। अहदेदार ने कहा कि आज सुबह सवेरे लड़ाई के बाद अब इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी हो गई है। दूसरी जानब इसराइल और हिजबुल्लाह ने फौरी तौर पर जंगबंदी के निफाज की तस्दीक नहीं की है।
इसे

0: ने आज जनूबी लबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। ईरान के अहदेदारों ने इस बात पर जोर देते हुए कि अमन बातचीत शुरू होने से पहले लबनान में जंग खत्म होनी चाहिए, स्विट्जरलैंड का अपना मुजवजा सफर नहीं किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी अपना दौरा मुलतवी कर दिया। कल रात इसराइल की फौज ने जनूबी और मशरकी लबनान पर हवाई हमले किए थे। हिजबुल्ला ने शदीद लड़ाई की खबर दी थी। लबनान की वजारत सेहत ने बताया कि इन हमलों में कम अज कम 21 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि इसराइल ने कहा है कि उसके 4 फौजी हलाक हुए हैं। इसराइल हिजबुल्ला जंगबंदी के सबब लबनान और इसराइल के लाखों बेघर अफराद को फौरी तौर पर जरूरी इमदाद फराहम करने में मदद मिलेगी। अबनाए हुरमुज की निगरानी पर मामूल ईरान की नई अथॉरिटी ने आज एक नोटिस जारी करके बहरी जहाजों से अपना इंदराज कराने के लिए कहा है। हालांकि इस वक्त तक बगैर इंदराज कराए वहां से गुजरने की इजाजत है। अथॉरिटी ने इंदिया दिया है कि ईरान हुरमुज से गुजरने वाले जहाजों से रकम वसूल करना शुरू कर सकता है। यह नोटिस इस्लामी जमहूरिया ईरान की एक नई एजेंसी पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी ने जारी किया है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए के बकदर तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा वर्षों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तरा और सनअतकारी में कायदाना रोल अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है, उसने इसके नफाज के लिए एक इंजिबाती इदारे के कायम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। और लबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के बाद अमरीका और ईरान के बीच बराह रास्त अमन बातचीत का नया दौर मुलतवी हो गया है। बाद में इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर रजामंद हो गए। इसके साथ ही बर्रे सगीर की खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: डीडी वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम अपने तमाम सामाइन का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। पेश है प्रोग्राम तामिल इशरत के बाकी नगमे।

बात फिल्म का भी नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार शैलेंद्र तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। पसंद क्या था आप सभी दोस्तों ने इस नगमे को? फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र सिंह डूडी, चमनपुर उदयपुर से समीरा खानम, फरीदा शबनम और ईसा बानो, शास्त्रनगर बीड़शहर से किशन सबकाल, आशा सबकाल और सहराज सबकाल, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोड़के, नंदा बोड़के और उत्तम जमदारे, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति आप हैं, बहादुर गंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल आजाद, पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सुल्तान अंसारी और आसमान आज अंसारी, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी और अनवर मास्टर, बड़ी रवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवे दर्द और उनके लिए खाना, आतिश रेडियो लिस्नर क्लब बिशनपुर गिरिडीह झारखंड से इम्तियाज इमाम आतिश, तारा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, करणवीर हाउस भोजो कैचिया ओला भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा और करणवीर करण, उत्तम सिंह जंगेल, मॉरिस जंगेल और अनिल कुमार कोलकाता भिलाई से गांव कलमंडी खुर्द जिला झाड़वाड़ा राजस्थान से, अरूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी और सागर पवार, उत्तर प्रदेश बांदा से फहीम मंसूरी, फातिमा मंसूरी और अहमदपुर केगांव खंडवा से कैलाश फुलमाली, दीपक फुलमाली और वैदिक फुलमाली, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिर नामजान, सैना नवाज और हसन नवाज, रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद करीम जख्मी, नाजमा बेगम नाज, बेबी फातिमा गाजी, एसएम जावेद शगुफ तांजुम आप गुमला झारखंड से और पुरानी बुलाई तीन चौदह छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर मशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हामिदुल सिद्दीकी, जीशान अहमद सिद्दीकी और मलकापुर जिला बुलडाना महाराष्ट्र से नारायण इंगे, राजकुमार खर्चे और कंचन खर्चे और प्रेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बरजिंदर विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा। आइए दोस्तों आप सुनते हैं मेरे सनम फिल्म का ये नगमा, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा जिसकी तर्ज बनाई ओपी नैयर ने, आवाज मोहम्मद रफी की, पसंद आप दोस्तों की। जेजे कॉलोनी मदनपुर खादर नई दिल्ली से सहना बेगम, अजहर और रिश्वत अहमद, आनंद राज सागर, तरुणलता सागर आप हैं, चंदखेड़ा अहमदाबाद से, नेहरू चौक पैटर्न से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता यादव और सोनल प्रसाद यादव, छत्रपति सावाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार गोड़खे, वैशाली अनिल और पराजिता, मेरठकंड से दिग्दर्शन और कविता गौड़, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी और रियाज रिफाकत, माल टेकरी परावती से प्रसाद ठेकरे, वर्षा ठेकरे और शरदा ठेकरे, बाटिंडा रोड मंडवली मंडी डबवली से राजेंद्र नारंग, अर्जुन नारंग और मोहित नारंग, और राजनगर कांति निकेतन से कुशेश्वर कांति गुप्ता और रुद्र गुप्ता, श्यामनगर यवतमाल से राम मनोहर, सरला मनोहर और बेबी प्रियांशी, बाबू सिंह दीमान, बरजिंदर कौर और रवनीत विशु आप हैं मुक्तसर पंजाब से,

विराट मेरे नेपाल से रेणु शर्मा, प्रियंका कुमारी और वंदा कुमारी शर्मा। खांची पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निमी और इसी नगमे को सुनना चाहें। बुराना मारा से राजू माटे, गजानंद माटे और संजय माटे। जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसा कोटेचा और आशीष कोटेचा। ज्ञानेश्वर मंदिर हल्ली जिला नांदेड़ से मास्टर एस के पाटिल शिवा, मीना रानी पाटिल और प्रियंका अजय पाटिल, अनुपम कुमारी अपूर्व सिंह और राकेश कुमार जमशेदपुर से, और बाजार मोड़ मुंगेसरपुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, अमिर निशा और साबित मोहम्मद। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग का भी ईमेल हमें मिल चुका है इस नगमे के लिए। मेन बाजार कुंडलवाड़ी मारा से गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर, प्रदीप यमेकर और प्रवीण हिंगो ने, योगिता हिंगो ने, हागो ने, माफ कीजिएगा, प्रवीण हागो ने, योगिता हागो ने और कुमारी पुरियाली हागो ने। आप हैं कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से। आप दोस्तों का शुक्रिया, आपकी पसंद, आपकी नजर।

तालमेल शायद प्रोग्राम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी का ये लिखा नगमा जिसकी तर्ज बनाई हेमंत कुमार हेमंत भोज

लेनी, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म है बिन बादल बरसात और इंतजार इस नगमे का आप दोस्तों को। छत्तीसगढ़ पलाड़ी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा, एडवोकेट नासिर शेख, नाजा नासिर, साजिद शाहिद आप हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से श्रीमती सलोनी चौरसिया, सुबोध चौरसिया और शिवानी चौरसिया, सबा उत्तर प्रदेश से और कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और कृपी चौहान। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी। पटिया पटियाली रोड गंजुनवाड़ा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम और बेबी अरीबा हबीबा। फुलंग निजामाबाद तेलंगाना से मोहित रूमानी, मोहम्मद फसी और डॉक्टर मोहम्मद जमीर। और कृष्णा गोड़ के प्रशांत शिंदे वृद्धा चौक पंढरपुर सिटी से। और ये नाम है अमीर खुसरू रोड गंजुनवाड़ा से डॉक्टर दबीर हसैन, बेगम शबनम अनवार और भुवन प्रकाश गौतम की जानिब से। कृष्ण की नगरी मथुरा से लुबना अंसारी, सबा अंसारी और पुशरा अंसारी। उदय नगर से पूरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान का ईमेल हमें मिला। और आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौर, तन्मय पूर्वी गौर और सुरेश आशीष गौर। चिरमरी कुर्सिया कलाड़ी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह और ऋषभ सिंह भी सुनना चाहते हैं इस नगमे को। और जनाब बागवा मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवा, इकबाल अहमद बागवा और अखलाक अहमद बागवा।

ये दोस्तों आप सुनते हैं प्रोकाशन में तिलक महमूद की आवाज में ये नगमा, जिसकी तर्ज बनाई है सरदार मलिक ने, और सुनना चाहे आप सभी दोस्तों ने इसे प्यारे से नगमे को। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश शर्मा, करणगंज खंडवा से कौशल बी पवार, हसन अभी पवार और हिना सईद खोकर, पौरम चिली से शाहिद अली, इफत फारूकी और बेटी हिफजा अली, पहाड़गंज मुल्तान ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टीनू नायक, ताज मंजिल लक्कर बाजार खंडवा से मोहम्मद रफी पवार, बेनजीर कौसर और मोहम्मद हसन पवार, नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से अजीज भाई, मतीन भाई और शेख चांद फारूक फुलवाले, जिला जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार और बल्लू निषाद, रामगढ़ कैंट से ममता मोदी, डॉक्टर प्रियंका मोदी और डॉक्टर तस्नीम कौसर, भाई ये नाम तो कहीं और से आता है, चलिए खैर। वारन शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान और अंकित चौहान, रघुनगर से दिलावर खान, हसन अबानो और अली जनाब, गुजरात गांधी ग्राम से परवीन सोनी, कलावती सोनी, प्रथम सोनी, गांव डागर निम्नवास, जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर और गुरप्रीत सिंह, अकोला महाराष्ट्र से रमेश कामले दिव्यानी और गणेश कामले का ईमेल हमें मिला इस नगमे के लिए, और इस नगमे को पसंद किया है आपने भी। आप हैं कुल नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, नंदना दयानंद गायकवाड़ और ओंकार गायकवाड़, मॉडल डॉट कन्नार से सुदीन नूतन, किरण ठाकुर और शशि बाला, जेल रोड झांसी से आशा यादव और प्रभा यादव भी सुनना चाहते हैं इसी नगमे को, और अल्तमश है समीना मुदस्सिर जुमानगर खंडवा से, वाकई नगर श्रीरामपुर से मनोज जेठवा और हर्षा जेठवा, सुनिए दोस्तों अपनी पसंद का ये नगमा फिल्म ठोकर से।

ये सामने अब सुनते हैं हमारी याद आएगी इस फिल्म का ये नगमा मुबारक बेगम का गाया हुआ, जिसकी तर्ज बनाई है केदार शर्मा ने और नगमन माफ कीजिएगा नगमा ने गाया है केदार शर्मा और तर्ज बनाई है सन्नीहल भटकर ने। सुनना चाहे आप सभी दोस्तों ने इस नगमे को तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा, भाटापाड़ा के बचकमल मोतीलाल यादव और डॉक्टर वसंत बिरगू, जुमली तलैया गिरिडीह से सैयद शमा परवीन, सुफियान इमाम और अर्शी सुल्तान, पी अच्छा नवाबगंज कानपुर से है ये पीयू दिया चौरसिया, पंकज चौरसिया और श्रीमती सुजाता चौरसिया, शबनम और आपके शोहर अकरम ये कह रहे हैं अच्छा शुभनाम अकरम और फरजाना की जानिब से ये ईमेल टिकरी मध्य प्रदेश से आपने सलाम के साथ ये ईमेल किया है तो आपको वालेकुम सलाम। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिक्रिस्टो, रोजी डिक्रिस्टो, विलिस डिक्रिस्टो, गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी और इसी नगमे को पसंद किया, राजेश वर्मा, मंजू वर्मा और निशांत वर्मा ने लाल कुर्ती रोड की कैंट से, गांधीबाग अकोला से रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर, धनंजय कटंकर और यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, जवान नगर दुर्ग से आरसी कांवड़े, करुणा और विपुल कांवड़े का भी ईमेल हमें मिला है इसी नगमे को आप पसंद करते हैं, और बाबाकुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संकृति चौहान और उत्कर्ष चौहान, जगदीश चौरी, पूजा और पायल जौरी, कंदला बंदर कच्छ से, रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता और हिना का ईमेल हमें मिला और जनाब ये ईमेल है सुब्रत चौधरी कोलकाता से आप हमें ईमेल करते हैं, और मोहल्ला पठान कुरावली से बेगम समीरा खान, शेख मोहम्मद अजीम और भाई कामरान खान, खान मंजिल गंज डुंडवारा से आगा खान आगा, बेगम निदा खान और बेबी अमल खान। आप दोस्तों का शुक्रिया, सुनिए अपनी पसंद पर यह नगमा।

तमिल तो आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तमिल नशात, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस वक्त हमारी नशात मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर दस्तयाब है। वक्त हो चुका है कवालियों का, तो लीजिए सुनिए गुलाम हुसैन खान और साथियों से कवाली।

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर की मौसिकी से सजा ये नगमा, फिल्म चार दिन से आवाज सुर सुरैया की थी। मुझे सुनिए मुकेश का गाया हुआ ये प्यारा सा नगमा, फिल्म है बलहार। इस नगमे को कलम बंद किया है कैफ इरफानी ने और तर्ज बनाई है रोशन ने।

है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रूपये से बढ़कर गुज़श्ता माली साल में रिकॉर्ड 1,78,00,000 रूपये से ज्यादा हो गई है। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रूपये थी, वह अंदरूने मुल्क तैयार करदा भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रूपये हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाजारी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन अल्युमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और ए एस चंद्रकर पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमदोरफ्त के हक की गारंटी का ये एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आजादी समेत दीगर बुनियादी हकूक शामिल हैं। अदालत उज़्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी की एक अफसोसनाक हादसे में मुआवजे के केस में सामने आया है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खातून वकीलों के लिए ऐसे हालात पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया है जिनकी बदौलत वह अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां मुअसर महफूज और मसावी बुनियादों पर अंजाम दे सकें। अदालत ने एक अर्जदाश्त में उठाए गए इन अमूर पर तवज्जो मरकूज की है जिनमें पूरे मुल्क की ज्यादातर अदालतों ट्राइब्यूनल्स और कमीशन्स में नाकाफी सहूलतों वाले बार रूम्स और दीगर बुनियादी सहूलतें फराहम न होने की बात कही गई है। अदालत उज़्मा ने मरकज सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और दीगर मुतल्लिका फरीकों को भी इस नोटिस जारी करके उनसे अपने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान ख़वातीन की बड़ी तादाद ने कानूनी पेशा अख्तियार किया है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्जाम लगाते हुए उसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रेंकिस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त में इंतहा हैरत होती है जब उसका ही राक्षस उसे जकड़ लेता है। ये बातें अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कही। उन्होंने ये बातें उस वक्त कही जब पाकिस्तान और इस्लामी तआवुन तंजीम ओआईसी ने अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमिश्नर की सालाना रिपोर्ट पर गुफ्तगू के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान और ओआईसी के जरिए दिए गए हवाले का जवाब देने के लिए इस हक का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके मौजूदा वजीर दिफा सरकारी पॉलिसी के तौर पर दहशतगर्दों को पनाह देने, ट्रेनिंग देने, उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने की बात को बड़े फख्र से बयान करते हैं। मोहतरमा सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी इल्जाम को यह अक्सर मुस्तरद करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा था, है और रहेगा। इसराइल और हिजबुल्ला जंगबंदी पर रजामंद हो गए हैं। इससे पहले इस लड़ाई के सबब स्विट्जरलैंड में ईरान और अमरीका के दरमियान जारी बातचीत मुलतवी हो गई थी। यह जंगबंदी कल मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से नाफिल अमल होगी। अमरीका के एक सीनियर अहदेदार ने कहा कि अमरीका और कतर के मुजाकरातकारों ने ईरान की मदद से यह समझौता तय किया था। अहदेदार ने कहा कि आज सुबह सवेरे लड़ाई के बाद अब इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंगबंदी हो गई है। दूसरी जानब इसराइल और हिजबुल्ला ने फौरी तौर पर जंगबंदी की नफाज की तस्दीक नहीं की है। इससे पहले आज जनूबी लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुजाकरात मुअत्तल कर दिए गए थे। ईरान के अहदेदारों ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अमन बातचीत शुरू होने से पहले लेबनान में जंग खत्म होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड का अपना मुजवजा सफर नहीं किया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी अपना दौरा मुलतवी कर दिया। इसराइल की फौज ने जनूबी और मशरकी लेबनान पर हमले किए थे। हिजबुल्ला ने शदीद लड़ाई की खबर दी थी। लेबनान की वजारत सेहत ने बताया कि इन हमलों में कम से कम 21 अफराद हलाक हुए हैं जबकि इसराइल ने कहा कि उसके 4 फौजी हलाक हुए हैं। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चालिया आज चीन में जारी मकाऊ ओपन के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जनूबी कोरिया की किम मिन सुन को सीधे गेम में 21-16, 21-18 से हराकर आखिरी 4 में अपनी जगह बना ली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रूपये मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा वर्षों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की

0: فروغ دینے اقتراع اور انٹرپرینرشپ میں قائدانہ رول ادا کریں گے. بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے انہیں تربیت فراہم کرنے اور انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجنے کا الزام لگاتے ہوئے اقوام متحدہ میں اس کی سخت نکتہ چینی کی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: جی آکاشوانی ہے شب کا ایک بجا چاہتا ہے. اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. 9:30 پر ہم اپنی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک دیجیے ہمیں اجازت. خدا حافظ. شب بخیر. جے ہند.
2: نمسکار. آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں روی کپور. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि का वितरण किया. योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है. श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है.
3: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके. और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ.
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है.
3: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है. करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं. 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है. यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है.
2: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे. यह परियोजना बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए. नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के विषय में बातचीत की. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए. न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है. न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है. न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है. नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया नेक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है. मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए. उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के नेक्सी के प्रयासों का स्वागत किया. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई

भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया के किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। मध्यरात्रि के 1:10 हुए हैं। गीत सुनहरे, गोल्डन एरा के पुराने गीत आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कीर्ति। सबसे पहला गीत फिल्म आनंद से, जिसमें आवाज है मन्ना डे की, बोल योगेश की है और संगीत से पिरोया है सुनील चौधरी ने।

किशोर कुमार की आवाज में आपको सुनवाएंगे फिल्म है कटी पतंग। ये भले ही शाम नहीं रात का सफर है, लेकिन इस गीत के जरिए आप जानेंगे कि शाम कितनी मस्तानी है। जी हाँ, समझ ही गए होंगे कौन सा गीत आपको सुनवाने वाले हैं हम। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

0: मौसम भीगा भीगा है, हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है। ये मौसम भीगा भीगा है।
1: फिल्म धरती से आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत। हर्षद जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था। अब आपको दीवानेपन की ओर लेकर चलते हैं, जो कि आप सुनेंगे गीत महबूब की मेहंदी से। फिल्म किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है संगीत।

खूबसूरत गीत इंडीवर का लिखा हुआ था। कल्याण जी, आनंद जी ने संगीत दिया था और मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे पूरे वर्कशन से ये गीत। अगला गीत आ रहा है लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों में फिल्म है एक दूजे के लिए। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

दोस्तों, आपका दिल है या शीशा, ये आपको तय करना है। लेकिन जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है।

नाम बताओ। बारिश में ये भीग रहा था, बिन परमिट के छींक रहा था। छींक रहा था, ऐसी हल्की हरकत की है ऐसे देश का वासी होकर जिस देश में गंगा बहती है।

बताओ, इसकी हरकत मरम बताओ, हम करें मरम्मत। सड़क पे चलते चलते दिल के पे गिर पड़ा था और मुझसे दो कदम पर ये संतरे खड़ा था। इसने नहीं बचाया, मुझको नहीं उठाया, रस्सी से बांध करिए दरबार में ले आया। हीरों की इस धरती पर अब ऐसे लोग भी रहते हैं। इस देश का फ्यूचर क्या होगा, हिस्ट्री में क्या कुछ कहते हैं। हीरे तो बस एक छिलके पर और छिलका भी एक केले का। इस देश में ऐसा वीर भी है ना दमड़ी का ना ढेले का। किसी भी कितनी फिसलन पर छह बार ले जाओ, गिराओ इसको। इस केले पर ये फिसला है, वो केला ढूंढ खिलाओ इसको।

सुनाई देता है, ये शायर है सर, दुआ देता है या दुहाई देता है, सभी काम उल्टे हैं इसके हुजूर। रात को जागता है, सुबह सोता है, गम अगर इसका अपना हो तो हंसता है, दूसरे का मिले तो बहुत रोता है, समझे? यही है वो हजरत, बोलते कुछ नहीं, शोर करते हैं ये, सोचते हम हैं, बोल करते हैं ये, कोई कानून ये मानते ही नहीं, जितना रोको इन्हें, बोल करते हैं ये, खुद तो करते नहीं, सब कराते हैं ये,

करके चलाते हैं ये। इनका साया भी रहने न दो पास में, दफन कर दो इन्हें, जाओ इतिहास में।

मैं आपको सुनाने जा रही हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म कुदरत से किशोर कुमार की आवाज है। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था आदि बर्मन ने। हमें सुनते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना।

0: इसी तरह अगर कोई प्यार का इजहार कर दे तो मना कौन कर सकता है। और इसी तरह आप सुन रहे थे ये गीत, और इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत और सुनते रहिए हमारे अन्य कार्यक्रम यार लाइव न्यूज 24x7 पर।
1: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस।

0: मध्य रात्रि के 2 बजने वाले हैं। अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। इससे पहले वे FATF में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का समर्थन करता रहा है। ऐसे में यह नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क से निपटने और गैर कानूनी वित्तीय प्रणालियों को खत्म करने के प्रयासों को और मजबूत करती है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरलम और माही में भी

यह आकाशवाणी दिल्ली का एआईआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 2:10 हुए हैं। मैं हूं आपके साथ कीर्ति और नॉन स्टॉप फिल्मी गीतों का कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं, गीत बहार। जी हां, इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह आपके लिए गानों की जो लिस्ट है वो तैयार है और बैक टू बैक गीत आप तक आने वाले हैं। तो इस सफर में मैं और आप एक दूसरे का साथ निभाएंगे 3 बजे तक। तो साथ रहिएगा और एंजॉय करिए इन गीतों को।

इसी के साथ हम चलते हैं और गीत बहार का कार्यक्रम यही समाप्त करने की अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दो दिन की पश्चिम बंगाल यात्रा पर जाएंगे। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वे हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे, कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित तीन युद्धपोत दुर्गागिरी अभय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवरब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना बीएचईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि अशांत वैश्विक परिवेश में भारत को अपने राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता व्यवस्था की नीति को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहिए। नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका फोरम 2026 को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका की बढ़ती साझेदारी के बारे में बात की। भारत के वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ का अगला उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के जाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे जो जुलाई 2025 से इस पद पर कार्यरत हैं। श्री अग्रवाल वर्तमान में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इससे पहले भी वे एफएटीएफ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। यह फैसला 17 से 19 जून तक हुई एफएटीएफ की बैठक के दौरान लिया गया। विदेश मंत्रालय ने संस्कृति सचिव विवेक अग्रवाल के वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ के उपाध्यक्ष चुने जाने को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। लंदन के पास बेडफोर्डशायर इलाके में दो ट्रेनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लंदन के टाइम्स अखबार ने बताया है कि बेडफोर्ड अस्पताल के कर्मचारियों को लगभग 50 घायलों के बारे में सूचित किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि दोनों ट्रेनों की टक्कर में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे गीत और गजल का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 4 बजने को है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। कलाकार हैं अंजना सुधाकर और मोलाडी वसावी।
1: लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 4:20 और 13 सेकेंड। श्रोताओं, आइए सुनते हैं निराद ब्रह्म कार्यक्रम में चरणिया लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति। वायलिन पर संगत कर रहे हैं जी राघवेंद्र प्रसाद, जबकि मृदंगम पर संगत की है R. नारायणन ने।

श्रोताओं, याद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने चारण्या लक्ष्मी कुमारन की प्रस्तुति सुनी। वायलिन पर जी राघवेंद्र प्रसाद जबकि मृदंगम पर आर नारायणन ने संगत की थी। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसवीं तिथि, तदनुसार 20 जून 2026 सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप देशभक्ति संगीत का आनंद ले सकते हैं।

5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का, जिसके अंतर्गत आज आप रोहित प्रसन्ना द्वारा बजाए बांसुरी पर राग नट भैरव सुनेंगे। 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का, जबकि अंग्रेजी में समाचार आप 6:05 पर सुन सकते हैं।

छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 का वक्त होगा कार्यक्रम चिंतन का। 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरित मानस।